मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन। कुछ ऐसे पल होते हैं जब आत्मा मनुष्यों के बीच विचरती है और ईश्वर का प्रवास यानी कि बाहर निकलने की सांसें हमारे अस्तित्व की जलराशि पर चारों ओर विद्यमान रहता है। कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब वो अलग हट जाता है और मनुष्य अपने व्यक्तिगत अहम की सबलता और निर्बलता पर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पहले वाली स्थिति यह है कि जब थोड़ा सा भी

कोशिश करें तो बड़े बड़े परिणाम आ जाते हैं और भाग्य को बदल डालते हैं। दूसरे वो काल स्थल है जब बहुत काम करने पर भी छोटा सा ही रिजल्ट निकलता है। ये सच है कि बाद वाला पहले वाले को तैयार कर सकता है। शायद ये यज्ञ का थोड़ा सा धुआं जो ईश्वर की उदारता को वर्षों से बुलाकर नीचे ला रहा है वही काम आता है दोस्तों। वो व्यक्ति या राष्ट्र परेशान ही रहता है जो जब दैवी क्षण आए तब सोता रहे और उसका उपयोग ना करे, इसलिए कि दीपक को स्वागत के लिए दुरुस्त नहीं रखा गया और पुकार के लिए कान बंद हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए तीन बार लानत है जो बलवान और तैयार होते हुए भी शक्ति को यूं ही गंवा देते हैं और उस पल का गलत उपयोग कर देते हैं। उनके लिए ये नुकसान पूरा नहीं हो सकता या एक महाविनाश हो सकता है। ऊपर वाले की घड़ी में तुम अपनी आत्मा को ढंग से लगाओ, मिथ्याचार बंद करो, अहंकार करने की आवश्यकता ही नहीं। सच्चाई दोस्तों यही है, आप कर सकते हैं अहंकार कि मेरे पास दुनिया की तमाम सुविधाएं हैं, काफी सारा धन है, ठीक है किसी को मत बताइए, लेकिन मन ही मन अपने को तो पता ही होता है ना। सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं, लेकिन मानने में पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। स्वभाव का सारा कपट जो कभी ऊपर वाले के नेत्रों और आदर्श के प्रकाश के विपरीत आपका बचाव था, अब वही कवच अंतराल में बदल गया है और आघात को आमंत्रित कर रहा है। यदि तुम उस क्षण जीत भी जाओ तो भी तुम्हारे लिए ये बुरा ही होगा, क्योंकि आघात बाद में आएगा और जीत के बीच में तुम्हें नीचे पटक दिया जाएगा। लेकिन शुद्ध होकर तुम सारा भय अलग कर सकते हो, क्योंकि वो घड़ी प्रायः भयंकर ही होती है, पर जो उसके उद्देश्य की सत्यता पर खड़ा रहेगा वही उस पर टिक पाएगा। यदि वो गिर भी गया तो फिर से उठ जाएगा। यदि ऐसा भी लगे कि वो हवा के पंखों पर उड़ रहा है तब भी लौट तो आएगा ही। तुम अपने कान में सांसारिक विवेक को बहुत पास से फुसफुसाने ही मत दो, क्योंकि ये घड़ी अप्रत्याशित है। उस सांस की शक्ति को तुम अपने तुच्छ उपकरणों से मत मापो, बस विश्वास करो और आगे बढ़ो। सबसे ऊपर तुम अपनी आत्मा को चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही अहंकार से अलग रखो, तब तुम्हारे पास आगे एक आग चलेगी और तूफान मददगार होगा और महानता के जिस ऊंचे से ऊंचे शिखर को जीता जाना चाहिए उस पर आपका झंडा फहराएगा।

एक बार एक राजा ने इतना ज्यादा सुरक्षित महल बनवाया कि उसमें किसी भी दुश्मन के घुस सकने की कोई आशंका ही ना रहे। उस राजा ने पूरी दुनिया को जीतना चाहा था, तो जाहिर सी बात है उसके बड़े सारे दुश्मन भी थे। अब क्योंकि पूरी दुनिया में दुश्मन हो गए थे तो स्वाभाविक है भय डर भी बढ़ गया था। डर बढ़ा तो सुरक्षा की जरूरत पड़ गई, इसलिए उसने ये मजबूत जबरदस्त अभेद्य महल बनवाया। इस महल में एक ही दरवाजा था, खिड़कियां भी नहीं थी, कहीं कोई हवा भी न घुस जाए, कहीं कोई जगह न रह जाए जिससे कोई भी दुश्मन कभी भीतर आने की सोच भी सके। इस बड़े सारे महल में एक ही दरवाजा था और इस दरवाजे पर हजारों नंगी तलवारों का पहरा भी लगा दिया गया। अब पड़ोस के राजा उस बहुत ही सुरक्षित महल को देखने आए, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह, बहुत आनंदित हुआ, मैं भी ऐसा ही महल बहुत जल्द बनवाता हूं। यह बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें तो कोई खतरा लगता ही नहीं। जब पड़ोस का राजा विदा ले रहा था तो मेजबान राजा से उसने कहा, आपने सचमुच बड़ा कमाल का काम किया है, कोई राजा कभी इतना सुरक्षित महल कभी नहीं बनवा पाएगा। तभी सड़क किनारे एक बूढ़ा फकीर जोर जोर से हंसने लग गया। राजा ने पूछा, अबे पागल, तू हंस क्यों रहा है बे? फकीर ने कहा, हुजूर, एक भूल रह गई इस महल में, और तो सब ठीक है मगर एक ही दरवाजा है, यही गलती हो गई। भाई, इससे भी तो दुश्मन भीतर जा सकता है ना, इसलिए आप भीतर जाएं और इस दरवाजे को भी बंद करा दें, चिनवा दें, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो पाएंगे, फिर कभी कोई दुश्मन घुस ही नहीं सकेगा कहीं से भी। राजा ने कहा, बे पागल, अगर मैं इस दरवाजे को भी चिनवा दूं और भीतर हो जाऊं तो ये महल नहीं मेरी कब्र बन जाएगा। फकीर ने कहा,

कब्र तो ये बन ही गया है, सिर्फ एक दरवाजा ही तो बचा है। एक दरवाजा है, दुश्मन नहीं तो कम से कम मौत तो इस एक दरवाजे से भीतर आ ही जाएगी। आप ऐसा करें कि भीतर हो जाएं, फिर मौत भी नहीं आ पाएगी। सम्राट ने कहा, जाने का सवाल ही नहीं, मौत के आने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। फिर फकीर ने कहा, तो फिर ठीक से समझ लीजिए, जितने ज्यादा दरवाजे थे इस महल में, उतना ही जीवन था आपके पास। जितने दरवाजे कम हुए, उतना जीवन कम हो गया। अब एक दरवाजा बचा है, तो थोड़ा सा ही जीवन बचा हो गया। इसको भी बंद कर दीजिए, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा कि एक भूल रह गई है इसमें, और वो जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों, जितनी हम सुरक्षा ढूंढते हैं, उतनी ही असुरक्षा का अनुभव करते हैं। असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी का जो अनुभव है, वो सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी की खोज से ही पैदा होता है। ये एक दुष्ट चक्र है। असुरक्षा से बचने की जो आकांक्षा है, वही असुरक्षा पैदा कर देती है। इसलिए असुरक्षा से राजी हो जाओ, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, मान लो कि आप असुरक्षित हैं। अचानक ही पाओगे कि असुरक्षा गायब हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर जाएं और मुसीबत को बुलावा दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है, सावधान रहें, लेकिन हर समय डरे रहने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ख्याल रखिएगा।

कई बार सवाल उठता है दोस्तों मन में कि वास्तविक प्रेम है क्या चीज। परेशानी तो यह है कि हम कोई डेफिनेशन चाहते हैं इसकी, कोई परिभाषा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको कुछ शब्द मिल जाएं, लेकिन मसला तो ये

है कि जब आप बहुत डरे हुए होते हैं तब तक प्रेम कैसे पैदा हो सकता है? मतलब जब आप डरे हुए हैं तो प्रेम कहां से आएगा? आप देख रहे हैं कि हम कितनी आसानी से शब्दों में उलझ जाते हैं। यदि मैं आपको बता दूं कि वास्तविक प्रेम है क्या, तो इसका आपके लिए कोई मायने नहीं होगा। आप सुनकर एक कान से दूसरे से निकाल देंगे। क्या ज्यादा जरूरी बात यह नहीं है कि वास्तविक प्रेम क्या है? ओरिजिनल प्रेम, इसका पता लगाने के बजाय हम इसका पता लगाएं कि हम प्रेम करते भी हैं या नहीं। हमारे अंदर प्रेम करने की कैपेसिटी, हमारे अंदर प्रेम करने की क्षमता है भी या नहीं। क्या हमें किसी फूल के प्रति, किसी जीव के लिए, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने दोस्तों के लिए कुछ ऐसा एहसास होता है? बहुत बढ़िया। क्या हमें इस धरती से प्रेम है? इसे जाने बिना ही हम सच्चे प्रेम की बातें करने लगते हैं। वाह, जिस प्रेम के बारे में हम इस तरह की बातें करते हैं वो झूठ भी तो हो सकता है। वो प्रेम नकली है, सिर्फ एक ही तरह की भ्रांति हो सकती है ये। जब तक मुझे डर है तब तक मैं प्रेम कैसे कर सकता हूं? सोचिए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं दोस्तों कि भय से मुक्त हो पाना सबसे कठिन काम है। ये सारी दुनिया चल ही रही है डर पर। हम हर समय डरे रहते हैं, सड़क पर गिर जाएंगे, ईएमआई बाउंस हो जाएगी, बैंक में चोरी हो जाएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे परिवार की तबीयत खराब हो जाएगी। हर समय हम डरे ही रहते हैं, डर पर ही चल रही है ये दुनिया। कभी हम खुल के, खुश होकर प्यार कर ही नहीं पाते बिना डर के। आप किसी भी डिक्शनरी में, शब्दकोश में भी देख लीजिए, वास्तविक का क्या मतलब है और प्रेम का क्या मतलब है। देखिए, कठिनाई ये है कि हम हमेशा इसी बात की शिक्षा देते रहते हैं कि हम क्या सोचें, लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि हम किस तरह सोचें। और सबसे बड़ा मुश्किल मामला ये है कि क्या सोचा जाना चाहिए से लेकर किस तरह से सोचा जाना चाहिए में घुसना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या जाएं, इन दोनों चीजों का डिफरेंस, अंतर ही नहीं समझ में आता। तो दोस्तों, क्या सोचा जाना चाहिए से छूटकर कैसे सोचा जाना चाहिए पर ध्यान लगाइए। सारी समस्या वहीं से समाधान हो जाएगा। डरना बंद करिए और कैसे सोचें इस पर जोर लगाइए। अपना ख्याल रखिएगा।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन।
1: एक बार कोरिया देश में एक नदी के किनारे संध्या के समय दो जैन भिक्षु यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षु था और दूसरा उसका जवान साथी। जैसे ही वो दोनों नदी पार करने के लिए तट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक युवती भी वहां खड़ी है। शायद उसे भी नदी पार करनी थी, लेकिन वो घबरा रही थी। शाम ढलने को थी, सूरज उतरने लगा था और चारों तरफ अंधेरा पसरने लगा था। एक पल के लिए जो बूढ़ा भिक्षु था, उसके मन में ख्याल आया कि लड़की को अपने हाथ का सहारा देकर नदी पार करा दे। लेकिन भिक्षु स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते थे। उसके मन में विस्फोट हो गया, जैसे वर्षों से दबी हुई सारी वासना रंगीन चित्र बनकर उसके पूरे दिल पर फैल गई। भिक्षु ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, वो मुश्किल में पड़ गया। वो तेजी से चलने लगा, घबरा गया। उसके सांसें तेज चलने लगी। स्त्री की कल्पना ने ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। बुजुर्ग भिक्षु जैसे किसी भंवर में फंस गया था। किसी तरह से कांपते हुए उसने नदी पार कर ली। फिर सोचा कि अगर मेरा ये हाल है तो जवान भिक्षु का क्या हाल हुआ होगा। वो तो और भी डावाडोल हो गया होगा। कहीं वो मोह में ना पड़ जाए, इसलिए उसे तत्काल सावधान कर देता हूं। लेकिन पीछे मुड़कर देखा, तब तक तो काफी देर हो चुकी थी। जवान भिक्षु उस लड़की को अपने कंधे पर बिठाए लिए चला आ रहा था। ये तो हद ही हो गई, उसने सोचा। कहां हाथ के स्पर्श मात्र के ख्याल से ही मेरी हालत खराब हो गई, और ये तो कंधे पर बिठा के लिया चला आ रहा है। अनर्थ ही हो गया। नदी पार कर लेने के बाद युवा भिक्षु ने लड़की को कंधे से उतार दिया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। 2 मील चलने के बाद दोनों आश्रम के द्वार पर जा पहुंचे। रास्ते भर बूढ़ा भिक्षु ने युवा सहयोगी से कुछ नहीं कहा, पर उसके अंदर बहुत ही गुस्सा उबल रहा था। गुस्से की वजह शायद ईर्ष्या भी थी। बुजुर्ग लोग प्रायः नौजवानों के प्रति ईर्ष्या भाव से भर जाते हैं। रात के भोजन के समय उसने युवा भिक्षु से कहा, सुनो, मैं गुरुजी से कहे बिना रह नहीं सकता। आज नदी पार करते वक्त तुमने उस लड़की को अपने कंधे पर क्यों बिठाया? युवा भिक्षु ने सहजता से कहा, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैंने लड़की को कंधे पर उठाया और उसे नदी किनारे उतार भी आया, लेकिन आप उसे अभी भी ढोए जा रहे हैं क्या? आपने तो उसे स्पर्श भी नहीं किया, लेकिन अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हैं आप। इससे तो अच्छा होता कि आप उसे उठा ही लेते। कंधे पर बिना लिए भी ढोना हो सकता है, कंधे पर लेकर भी मन खाली हो सकता है। ध्यान रहे, आचरण नहीं, भाव जरूरी है।

दोस्तों भक्ति में दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपकी तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। कभी आपने एक चीज को दो तरीकों से देखा है? कभी कोई इंसान आपको पहली नजर में बहुत ही रूड लगा हो, कितना बदतमीज है, और बाद में वही इंसान आपको बहुत केयरिंग लगा हो कि यार इसको तो मैंने गलत समझा था, ये तो बहुत केयरिंग है, बहुत जेनुअन है। हुआ है ना? मेरे साथ भी हुआ है। कभी कोई सिचुएशन पहले बहुत बुरी लगती है और फिर कुछ वक्त बाद हम सोचते हैं, अरे इसमें तो कुछ अच्छा था। तो सवाल है कि बदला क्या? सिचुएशन बदली, इंसान बदला, या सिर्फ आपका देखने का तरीका बदला? और इसी सवाल से जुड़ी है आज की हमारी ये बातें इधर की उधर की। एक जर्मन वर्ड, गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है चीजों को देखने का एक खास तरीका। आपने वो तस्वीर तो जरूर देखी होगी जिसमें कभी एक औरत बहुत ही ओल्ड लगती है और कभी एक बहुत ही जवान सी खूबसूरत औरत दिखती है। अब जरा सोच के देखिए, आप वो ओल्ड सी लेडी को देख रहे हैं और फिर थोड़ी ही देर बाद अचानक वही चेहरा एकदम बदल जाता है और सामने होती है एक खूबसूरत सी जवान औरत। फिर आप उस जवान औरत को देखते रहते हैं और कुछ देर बाद लो जी फिर से वो ओल्ड लेडी वापस। सबसे अजीब बात, दोनों औरतें एक ही तस्वीर में हैं, लेकिन आप दोनों को एक साथ देख ही नहीं पाते क्योंकि दोनों को बनाने वाली लकीरें वही हैं। तस्वीर नहीं बदली, आपका नजरिया बदला। और यहीं से बात थोड़ी और गहरी होती है, क्योंकि दोस्तों क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसा नहीं होता कि एक ही इंसान, एक ही रिश्ता, एक ही घटना, लेकिन वक्त के साथ उसका मतलब बदल जाता है। कल जिस बात पर हम गुस्सा थे, आज उसी बात पर हम मुस्कुरा देते हैं और कई बार तो हंस देते हैं कि ओ गॉड मैं इस बात पे गुस्सा थी। कल जो हार लग रही थी वो आज बहुत बड़ी सीख लगती है कि अच्छा हुआ ये हुआ, ये हुआ तभी आज मैं ये जानती हूँ, ये समझती हूँ। तो शायद जिंदगी हमेशा बदलती है दोस्तों, कभी कभी बस हमारा जिस्टाल्ट बदल जाता है। अब जरा अपने दिमाग के अंदर चलिए। हाँ, टिकट की जरूरत नहीं है, आप ही का है, बस आंखें खुली रखिए और अपने विचारों को देखिए। एक थॉट आता है, कल क्या करना है, फिर दूसरा, उसने मुझसे ये क्यों कहा, फिर तीसरा, फोन चार्ज पे लगाया था या नहीं, और फिर रात को खाने में क्या बनेगा। दिमाग भी ना अपनी ही रेडियो स्टेशन चलाता रहता है, अपनी ही चैनल्स बदलता रहता है, एक विचार जाता है और दूसरा आ जाता है। लेकिन कभी आपने ध्यान से नोटिस किया है, दो विचारों के बीच जो छोटा सा खाली सा पल होता है वो कहाँ गया, उसे किसने गप कर लिया? हम उस खाली जगह को देखते ही नहीं है, हम बस एक विचार से दूसरे विचार और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पर जंप करते रहते हैं। इस बात को समझने के लिए एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक छोटा बच्चा था जो सड़क के किनारे खड़ा था बहुत देर से। एक दुकानदार ने उसे देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ, सड़क पार करनी है, चलो मैं करा देता हूं। बच्चा बोला, हाँ मुझे उस पार जाना है, लेकिन मैं खाली जगह का इंतजार कर रहा हूँ। दुकानदार हैरान हो गया, खाली जगह? बच्चा बोला, जब खाली जगह मेरे सामने से गुजरेगी तब मैं पार जाऊंगा। अब हम क्या देखते हैं, कार आ रही है, बस आ रही है, ट्रक आ रही है, लेकिन खाली जगह को कौन देखता है। लेकिन बच्चे ने एक अजीब सी लेकिन बहुत खूबसूरत बात पकड़ ली, खाली जगह, जी हाँ खाली जगह भी होती है। और दोस्तों
हमारे दिमाग में भी कई खाली जगहें हैं। हर दो विचारों के बीच बहुत ही छोटी सी, बहुत ही शांत सी एक जगह है, लेकिन हम है कि उसे देखते ही नहीं, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, उसमें जाते ही नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ दो विचारों पर है। और यहीं से शुरू होती है ध्यान की एक खूबसूरत समझ। आपको अपने विचारों से लड़ना नहीं है, डिशुम डिशुम नहीं करना, उन्हें रोकना भी नहीं है, उन्हें उन्हें कोई स्टॉपर भी नहीं लगाना है, बस उन्हें देखना है। जैसे सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते हुए देखते हैं, कभी कार गई, कभी बस गई, कभी ट्रक गई, और थॉट आया और थॉट गया, बस बीच में वो जो खाली जगह है ना, उसको देखिए, और धीरे धीरे आपको वो खाली जगह दिखने लगेगी। एक विचार के बाद थोड़ी सी खामोशी, फिर दूसरा विचार, फिर एक और छोटी सी खामोशी, और जब आपका ध्यान उन खाली जगहों पर जाने लगता है, तब आपके विचार थोड़ा दूर होने लगते हैं। पहले हम थॉट से थॉट तक जा रहे थे, और अब हम साइलेंस से साइलेंस तक जाते हैं। यही असली ध्यान की शुरुआत है। आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरे कहने पर कीजिए। रात को सिर्फ 2 मिनट शांत बैठिए और दो विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। एक विचार आने दीजिए और उसे जाने दीजिए, दूसरा आया और उसे भी जाने दीजिए, और फिर देखिए उन दोनों के बीच क्या कोई जगह है, क्या कोई एक स्पेस है जो सिर्फ आपके लिए है। शायद पहली बार आपको अपने ही अंदर वो एक खामोशी सुनाई दे, जिसे हम रोज इतने शोर में बिल्कुल खो देते हैं। तो दोस्तों, आज की ये बातें इधर की उधर की कहानी बहुत छोटी सी है। एक ही तस्वीर में दो तस्वीरें हो सकती हैं, एक ही सिचुएशन में दो सच हो सकते हैं, एक ही दिमाग में हजारों विचारों के बीच एक छोटी सी खामोशी हो सकती है, बस नजरिया बदलने की देर है। जिस्टाल्ट बदलता है, और कभी कभी नजरिया बदलते ही पूरी दुनिया अलग दिखने लगती है। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे आज की ये बातें इधर की उधर की छोटी सी कहानी, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। अगली बार जब आपका दिमाग बहुत कुछ कह रहा हो ना, थोड़ा सा रुकिए, शायद उन्हीं बातों के बीच छुपी है खामोशी जो कह रही है, थोड़ा सा मेरे साथ भी वक्त गुजारो। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: डॉक्टर ने मरीज से कहा, देखो भैया मैंने तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया है। मरीज ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब आपकी दवा ने तो चमत्कार का काम किया। डॉक्टर बोला, मुझे कुछ इनाम तो दे दो अब। मरीज ने बोला, सर मैं क्या इनाम दूं, मैं तो कब्र खोदने वाला हूँ। बोली, आपकी कब्र खोद दूं।

और अब बात इधर की उधर की में वक्त आ गया है एक खास कहानी का। हर कहानी अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन लेकिन दोस्तों कुछ कहानियां इसलिए भी और स्पेशल बन जाती हैं क्योंकि उन्हें कहने वाला दिल से उनसे जुड़ा होता है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जो लेकर आए हैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, एक किस्सा, एक एहसास, एक याद, एक कहानी, बिल्कुल अपनी आवाज में। तो चलिए खामोशी से सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। नमस्कार तनुषा जी, या मैं आपको तनु जी कहूँगी, और रेडियो SN, और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। और आज मैं जिस टॉपिक पे बारे में बात करना चाहती हूँ वो है बेजुबान चीज़ों की जुबान, ये इसका शीर्षक है, मैंने दिया है। तो चलिए सुनते हैं। मुझे लगता है कि हमारे हर घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो देखने में बिल्कुल साधारण होती है, लेकिन अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो उनमें हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे किस्से छुपे होते हैं। वो बोल नहीं सकती फिर भी कुछ ना कुछ तो कहती हैं। मेरे पास भी ऐसे दो चीज़ें हैं जिनकी कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ। पहली है मेरी एक पुरानी म्यूज़िक नोटबुक। ये नोटबुक मेरे पास मेरे बचपन से है, जब मैं लगभग 10-11 साल की थी तब से लेकर आज तक, और ये किसी न किसी रूप में हमेशा मेरे साथ रही है। इसके पन्नों पर कहीं भजन्स है, कहीं मराठी भावगीत है, कहीं फिल्मी गीते हैं, और कहीं कहीं ऐसे गीत भी है जिन्हें मैंने शायद बहुत पहले सुना था और लगा था कि ये गीत मुझे याद रखना है, तो मैंने उसे इस नोटबुक में लिख दिया था, लेकिन कभी गाया ही नहीं होगा। इसमें कई सारे गीत मेरे मंजली दीदी ने अपने हाथों से लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने लिखने से इनकार किया होगा। यू नो एडवांटेजेस ऑफ बीइंग द यंगेस्ट वन, छोटी सी बहन। और आज जब मैं इसके पुराने पन्ने पलटती हूँ तो मुझे सिर्फ गीत दिखाई नहीं देते, मुझे अपना एक पुराना रूप दिखाई देता है। वो लड़की जिसके पास बहुत सारे सपने थे, जिसे संगीत अच्छा लगता था, जो शायद ये नहीं जानती थी कि आने वाले वर्षों में उसकी ज़िंदगी उसे कहाँ कहाँ लेकर जाएगी, और एक दिन वो रेडियो SN पर अपने म्यूजिक नोटबुक के बारे में बात करेगी। कुछ पन्नों पर लिखावट बहुत छोटी है, कहीं शब्द काटे गए हैं, कहीं कुछ दोबारा लिखा है, और मुझे लगता है ये सिर्फ एक नोटबुक नहीं है, ये समय की हैंडराइटिंग है। इसमें एक कन्नड़ा भजन भी है जो मेरे चचेरे भाई का प्रिय भजन था, और उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए लिखा था, और वो भजन भी मुझे सिखाया था उन्होंने, जिसका नाम था निन्न नोड़ी धन्य ना देनो। बहुत ही सुंदर भजन है। आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो पन्ना आज भी मेरे पास है, और यही तो इन चीज़ों की खासियत है। इंसान चले जाते हैं, आवाज़ें बदल जाती हैं, समय आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक छोटा सा पन्ना किसी को हमारे पास बहुत लंबे समय तक रोक सकता है। तो चलिए अब दूसरे चीज़ के बारे में बात करते हैं, और मेरे पास दो चीज़ें हैं, दो रेसिपी बुक्स। कहने को तो इनमें सिर्फ रेसिपीज़ ही हैं। एक है सुप्रसिद्ध शेफ़ एंड ऑथर श्रीमती तरला दलाल जी की लिखित, इसमें उत्तर भारतीय, कॉन्टिनेंटल, चाट, सभी व्यंजन है। ये बुक ना मुझे मेरे बड़ी दीदी और जीजा जी ने गिफ्ट करी थी जब मैंने ज्वाइन किया था तब, और उन्होंने अपने हाथों से एक प्यारा सा मैसेज भी लिखा था, टू माय डियरेस्ट लिटिल सिस्टर एन्जॉय योर कलिनरी जर्नी।
और आज भी उस बुक को मैं रेफर करती हूँ व्हेनेवर आई वांट टू कुक समथिंग डिफरेंट। इस बुक के कुछ पन्नों पर मेरे बच्चों ने ड्राइंग भी करी है, यू नो, एस्पेशली जिन पन्नों पर केक के रेसिपीज हैं उन पन्नों पर केक है, बलून्स ड्रॉ किया है और कैंडल्स के साथ भी है। और दूसरी जो रेसिपी बुक है जिसका नाम है रसचंद्रिका, जो मेरे माँ ने मुझे मेरे शादी में गिफ्ट किया था, जिसमें हमारे कोंकणी व्यंजन है जैसे चावल के अलग अलग प्रकार, डोसा, सांबार मसाला, पारंपरिक पूजा के व्यंजन हैं और कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी जिन्हें शायद आज की भाषा में हम DIY या होम रेमेडीज कह सकते हैं ना, वो भी। लेकिन इन दोनों किताबों में सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इनमें सिर्फ रेसिपीज नहीं है, इनमें बहुत सारी यादें हैं। किसी रेसिपी के सामने मैंने लिखा है ये बहुत अच्छा बना था, तो कहीं लिखा है अगली बार थोड़ा नमक कम करना, तो कहीं किसी इंग्रेडिएंट की मात्रा बदली हुई है और कहीं पूरा पन्ना तेल के दाग से भरा हुआ है और मुझे लगता है ये दाग भी उस रेसिपी का हिस्सा ही है। लेकिन आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि खाना बनाना सिर्फ खाना बनाना नहीं है, वो एक तरीके से यादों को जिंदा रखने का तरीका बन गया है। कभी किसी पुराने स्वाद को दोबारा बनाने के लिए भी मैं इन किताबों को खोलती हूँ। और शायद यही रीज़न है, कारण है कि मुझे लगता है हम अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें जमा करते हैं जो हमारे जीवन के टुकड़े हो जाते हैं। जैसे देखिए ना, एक पुरानी नोटबुक हो या रेसिपी बुक हो, पुराना पत्र हो, एक घड़ी हो, साड़ी हो, एक तस्वीर हो या वो छोटे छोटे स्टील के बर्तन जिसपे देने वाले का नाम खुदे हुए हैं, वो भी दूसरों के लिए वो शायद सिर्फ वस्तुएं होंगी, लेकिन हमारे लिए हमारी आवाज़ है, हमारी खुशियाँ, गलतियाँ और हमारे सीखने के दिन हैं। तो आज की दुनिया में हमारे पास हर चीज़ डिजिटल हो गई है, हजारों फोटोग्राफ्स हमारे फ़ोन में हैं, रेसिपीज़ एक क्लिक में मिल जाती है और सॉन्ग्स भी एक सेकंड में डाउनलोड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक हाथ से लिखे हुए एक पन्ने की बात ही कुछ अलग है। शायद हर घर में ऐसी कई चीज़ें होंगी जो चुपचाप हमारी कहानी कह रही है, हमें बस उनके पास थोड़ी देर बैठना है और शायद तब हमें एहसास होगा कि कुछ कहानियाँ हम लिखते हैं और कुछ चीज़ें हमारे कहानियों को संभाल कर रखती हैं। और यही है बेजुबान चीज़ों की जुबान।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया मेरा तो उस वक्त सर ही चकरा गया जब अल्ट्रा मॉडर्न युवती ने अपने पति को भुट्टा लेने के लिए भेजा और कहा कि वो हैंडल वाला पॉपकॉर्न मेरे लिए भी ले आओ।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तातिया भील 90.8 FM पे। कभी आपने किसी को खोया है और उसके बाद आपका सबसे पहला सवाल क्या था? वो अब कहाँ हैं? क्या वो हमें देख रहे हैं? क्या उन्हें हमारी याद आती है? क्या वो कभी हमारे पास लौट कर आ सकते हैं, सपनों में, यादों में, या किसी खुशबू की तरह? आज की बातें इधर की उधर की कहानी शायद इन्हीं सवालों का कोई सीधा सा जवाब ना दे, लेकिन हो सकता है आपको जवाब महसूस जरूर हो। कोशिश मेरी यही रहेगी। एक दिन मैंने हवा से पूछा, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? हवा ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे चेहरे को छूकर चल दी, आगे बढ़ गई। मैंने सोचा शायद हवा को पता नहीं, तो मैंने सूरज से पूछा, तुम उन जगहों पर भी रोशनी करते हो जहां मैं कभी नहीं पहुंच सकती, क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? सूरज भी चुप रहा, बस बादलों के बीच से निकला और धीरे से मेरी त्वचा को गर्मा गया। फिर मैंने बारिश से पूछा, तुम्हें पता है वो कहाँ है? क्या उन्हें भी कभी मेरी याद आती है? क्या वो मेरे बारे में भी तुमसे पूछते हैं? बारिश ने भी कोई जवाब नहीं दिया, बस गिरती रही, और इतनी देर तक गिरती रही कि एक पल ऐसा आया जब समझ ही नहीं आया चेहरे पर गिरती बूंदें बारिश की हैं या मेरी आंखों की। फिर मैंने रात से पूछा, क्या वो कभी वापस आते हैं? शायद सपनों में, शायद जब उनका नाम लेते हैं। और रात बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसी रात मैंने उन्हें सपने में देखा। फिर मैंने आसमान के चमकते सितारों से पूछा कि प्लीज, मैंने सबसे पूछ लिया, कोई नहीं बता रहा, बस तुम बता दो वो कहाँ हैं? सितारे चमकते रहे ऐसे जैसे उन्हें मेरी बात सुन ही नहीं रही। और मैंने धीरे से बोला, आखिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? तब शायद पहली बार मेरे दिल ने जवाब दिया। उसने कहा, उन्होंने दिया तो है। हवा ने तुम्हारे चेहरे को छुआ, एक तरह से चूमा, सूरज ने तुम्हारी त्वचा को गर्माया, बारिश ने तुम्हारे आंसुओं का साथ दिया, रात ने उन्हें तुम्हारे सपनों में भेजा, और जब तुम खुद को सबसे ज्यादा अकेला समझ रहे थे ना, सितारे तुम्हारे साथ थे। दोस्तों, कभी सोचा है? हम जवाब सुनना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी हमें जवाब महसूस करवाती है। हम पूछते हैं, वो कहाँ चले गए? शायद ये सवाल ही गलत है, क्योंकि जो लोग हमारे दिल में बस जाते हैं ना, वो कहाँ जाएंगे? उनका हाथ शायद अब भी हमारे हाथ में ही है। उनकी आवाज शायद अब फोन पर नहीं आती। उनके साथ बैठकर चाय पीना शायद अब मुमकिन नहीं। लेकिन उनकी कही हुई बातें, उनकी आदतें, उनकी वो मुस्कुराहट जो सिर्फ उन्हीं की थी, उनकी कोई छोटी सी सीख,
वो कहाँ जाती है? वो तो हमारे अंदर रह जाती है। कभी कभी हम किसी अपने को बहुत याद करते हैं और अचानक रेडियो पर उनका पसंदीदा गीत बजता है। कभी कोई खुशबू, कभी कोई जगह, कभी पुरानी सी तस्वीर, कोई डायलॉग, कोई आदत, और हम एकदम से रुक जाते हैं। दिल धीरे से कहता है, ये तो बिल्कुल उनकी याद दिला रहा है। शायद इसी को कहते हैं, किसी का हमारे पास ना होकर भी हमारे साथ होना। तो आज अगर आप किसी अपने इंसान को याद कर रहे हैं जो आपके पास आज शायद नहीं है, तो एक सवाल खुद से पूछिए, वो कहाँ गए? और फिर शायद शायद सवाल थोड़ा सा बदल जाए। पूछ के देखिए, वो मेरे अंदर कहाँ कहाँ जिंदा हैं। शायद माँ की वो डांट आज भी आपकी ही आवाज में है। शायद पापा की वो सीख आज भी आपके फैसलों में है। शायद किसी दोस्त की वो हंसी आज भी आपको बिना वजह गुदगुदा देती है। शायद शायद किसी अपने का प्यार आज भी आपको मुश्किल वक्त में संभालता है। तो क्या वो सच में चले गए, या फिर सिर्फ उन्हें देखने का नजरिया बदल गया? हवा, सूरज, बारिश, रात, सितारे, शायद इनमें से किसी के पास भी हमारे सवालों के वो जवाब नहीं हैं जो हम कानों से सुनना चाहते हैं। लेकिन शायद प्यार का जवाब आवाज में है ही नहीं, एहसास में है। और शायद मौत किसी अपने को हमसे उतना दूर भी नहीं ले जाती जितना कि हम सोचते हैं। वो बस नजर से दूर होते हैं, दिल से नहीं। तो आज जब हवा आपके चेहरे को छू कर गुजरे ना, एक पल के लिए रुक जाना, जब सूरज की हल्की सी गर्मी महसूस हो, मुस्कुराना, जब बारिश हो तो बूंदों को सिर्फ बारिश मत समझना, और रात को अगर कोई अपना सपने में आ जाए तो सुबह उठकर ये मत सोचना कि बस सपना था। हो सकता है वो आपके पास आने का जिंदगी हो सकता है वो आपके पास आने का जिंदगी का बस एक तरीका हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे आज की थोड़ी सी गहरी सी, थोड़ी सी भीगी सी बातें इधर की और उधर की। आज की आखिरी बात ये है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन हमारी जिंदगी से कभी नहीं जाते। सोच के देखिए, शायद वो आपके आसपास ही होते हैं, बस नजर नहीं आते।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: कन्या को सुकन्या कहो तो कोई एतराज नहीं, पर खबरदार वर को सुअर कहने की गलती मत कर देना।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें।
2: आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं एक ऐसी युवा से जिनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। इनका नाम है यास्मीन एरिंगटन। दुनिया में क्या कोई ऐसा इंसान होगा जिसके हिस्से में गम ना आया हो? ऐसा होना तो नामुमकिन है, क्योंकि ये मनुष्य मात्र की नियति है। सुख दुख आते ही रहते हैं, लेकिन सच ये भी है कि जो लोग भाग्यवादी बनने के बजाय कर्मवादी बनते हैं, वही बदलाव लाते हैं। यास्मीन अलेक्जेंड्रा एरिंगटन उन बिरले लोगों में से एक है जिन्होंने इस दुनिया को कुछ और बेहतर, कुछ और ज्यादा मानवीय बनाने का बीड़ा उठाया है। अमेरिकी समाज उनकी इस भूमिका को सराहा भी रहा है। विश्व की प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी CNN ने उन्हें इस साल के हीरो के सम्मान के लिए नॉमिनेट किया है। आज से करीब 30 साल पहले वॉशिंगटन DC में यास्मीन पैदा हुई थी। होश संभालते ही पता चला कि पिता टोनी ए एरिंगटन जेल में थे। उनके बाहर आने और फिर से सलाखों के पीछे चले जाने का सिलसिला चलता ही रहता था। छोटी सी यास्मीन को तो पिता की शक्ल भी याद नहीं थी। टोनी का ज्यादातर वक्त चोरी और इसी तरह के दूसरे अपराधों की सजा काटने में बीत रहा था। मगर यास्मीन भला तब क्या समझ पाती कि चोरों की संतानों को समाज किन निगाहों से देखता है। जिस उम्र में बच्चों के सुपर हीरो उनके मां बाप होते हैं, उस आयु में यास्मीन की आंखों ने ऐसा कोई ख्वाब देखा ही नहीं। मगर जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, उपेक्षा भरी और तरस खाती हुई निगाहें उन्हें परेशान करती ही चली गईं। जेल से पिता के इस रिश्ते ने उनके परिवार वालों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया। घर की हालत खराब थी तो यास्मीन की मां अपने बच्चों को लेकर अपनी मां वेरोनिका राइट के पास चली गईं। वो सब अब बिखरी हुई जिंदगी जी रहे थे। मां को पेट की गंभीर बीमारी थी, वो तड़पती रहती थी। यास्मीन सिर्फ 8 वर्ष की थी तब। पेट दर्द से राहत के लिए यास्मीन की मां ने दर्द निवारक गोलियां खानी शुरू कर दी। डॉक्टर्स ने कहा कि इसका उपचार एकमात्र ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन हुआ, लेकिन कुछ सालों में ही नई समस्याएं खड़ी हो गईं। तब यास्मीन अपने हाई स्कूल के पहले साल में थी। उनकी मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यास्मीन 15 वर्ष की थी, उन्हें लगा कि पिता होते तो सब संभाल लेते। लेकिन जो वो 4 साल की उम्र में छोड़कर उन्हें गए थे, वो पलट कर कभी नहीं आए। प्यार और स्नेह की भूखी यास्मीन की मुलाकात उन्हीं दिनों एलॉन यूनिवर्सिटी के टीनो मोनेरो से हुई। वो भी फर्स्ट ईयर के छात्र थे। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने अपने विषय में इसी यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। मगर यास्मीन के अंदर तो पिता को लेकर एक कसक बनी हुई थी कि वो मिलते तो उनसे पूछती कि उन्हें ऐसा बचपन क्यों गुजारना पड़ा। इसका संयोग भी बन गया। टोनी एरिंगटन जॉर्जिया जेल से रिहाई के बाद एलॉन यूनिवर्सिटी के ही करीबी एक रेस्टोरेंट में रसोइये का काम करने लगे। जब पिता और बेटी का आमना सामना हुआ तो मिनटों तक दोनों एक दूसरे को पहचानने की ही कोशिश करते रहे। पिता की नजरें तो 4 साल की अपनी गुड़िया की तलाश कर रही थी जो अब युवा हो चली थी, तो वहीं पिता से मिलने की खुशी में बेटी अपने सवाल ही भूल गई। यास्मीन को तो बस इस बात का इत्मीनान था कि उनके पिता सामने हैं और वो उनसे बात कर सकती है। फिर किसी पुराने जुर्म की सजा में पिता जेल भेज दिए गए, लेकिन इस बार यास्मीन उनसे नाराज नहीं हुई। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया था। वो पिता से फोन पर बातें करती रहती, बल्कि स्नातक की डिग्री लेते हुए उन्होंने ये तय किया कि पिता उस वक्त मौजूद रहेंगे ताकि वो उन्हें खुशी और गौरव के कुछ पल दे सकें। हाई स्कूल में दाखिला लेते समय कैदी पिता की संतान होने के कारण यास्मीन को जिन आर्थिक मुश्किलों से गुजरना पड़ा था, उसने उनके भीतर एक गहरी टीस पैदा कर दी थी। फिर जब ये पता चला कि उन्हीं की तरह के अमेरिका में 20 लाख किशोर नौजवान हैं जिनके माता पिता जेल में हैं, तब यास्मीन ने इस कलंक और शर्मिंदगी को ढो रहे छात्रों की मदद करने का फैसला ले लिया। अक्टूबर 2010 की बात है। उस समय यास्मीन बमुश्किल 17 साल की रही होंगी। ये वही उम्र थी जब उन्हें आगे की अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी थी और एक अच्छे करियर को चुनना था। तब उन्होंने समान स्थिति वाले विद्यार्थियों के लिए स्कॉलर चिप्स नाम की एक गैर लाभकारी संस्था शुरू की। उनकी इस पहल ने कई लोगों को आकर्षित किया। साल 2012 से अब तक यास्मीन को अनगिनत पुरस्कार मिल चुके हैं जिनमें मिली धनराशि इस संस्था में ही आती गई। स्कॉलरशिप्स के जरिए अब तक 80 से ज्यादा छात्रों को वजीफे के तौर पर करीब 4 करोड़ रुपए की सहायता हो चुकी है। एक पेशेवर मॉडल और प्रेरक वक्ता के रूप में यास्मीन अमेरिका और उसके बाहर घूम घूम कर लोगों का आह्वान करती है कि अभिभावकों के किए की सजा बच्चों को मत दीजिए, उन्हें हिकारत की नहीं सामाजिक प्रोत्साहन की जरूरत है। अब CNN की जूरी इस साल के हीरो की घोषणा करेगी। यास्मीन अगर विजेता बनी तो उन्हें इनाम में $1,00,000 की संपत्ति मिलेगी। नामित होते ही वैसे वो $50,000 की हकदार तो हो चुकी हैं। जाहिर है ये धन भी उनके बड़े मकसद के लिए होगा। बकौल यास्मीन, जीवन में अच्छे करियर के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, मगर इंसान की सार्थकता इससे कुछ ज्यादा मांगती है।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

डेट विद डेस्टिनी 2 फरवरी 2020 02/02/2020। शायद आपको कैलेंडर के दूसरे दिनों जैसा ही एक और दिन या महज एक तारीख भर लगे, लेकिन दरअसल यह एक पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम यानी ऐसे शब्द या संख्याएं जिन्हें दाएं से बाएं और बाएं से दाएं एक जैसा पढ़ा जा सकता है। थोड़ी सी माथापच्ची करेंगे तो आपको इससे पहले भी कई ऐसी तारीखें मिल जाएंगी जो पैलिंड्रोम कही जा सकती हैं। ऐसी तारीखों को लेकर लोगों में बड़ा जुनून रहता है। मीडिया अगर इस जुनून को हवा देता था तो सोशल मीडिया ने इसमें आंधी झोंक दी है। कभी 10 10 10 11 11 11 तो कभी 12 12 12। जब भी ऐसी कोई खास तारीख आने वाली होती है लोग दीवाना वार दौड़ने लगते हैं। कोई इस दिन शादी करने के लिए महीनों पहले से भागा दौड़ी में लग जाता है, तो कोई चाहता है कि उसकी औलाद जिस समय दुनिया में पहला कदम रखे उस वक्त तारीख ही नहीं बल्कि घड़ी के घंटे मिनट और सेकंड की सुइयां भी उसी का अनुसरण कर रही हो। कुदरत के निजाम में इस तरह की दखल की ख्वाहिश को पागलपन कहें या ओछापन, लेकिन यह साल दर साल होता है। इस तरह के नंबरों की कलाबाजी को साइंसदानों की भाषा में एपोफीनिया कहा जाता है। तारीखें हमारे मन में एक ऐसे ताने बाने की तरह रची बसी हैं जिसमें हर मोड़ पर डेस्टिनी एक साए की तरह मौजूद है। हमें बार बार लगता है कि एक खास तारीख से होने वाला आगाज हमें एक मुकम्मल और मन माफिक मुस्तकबिल तक पहुंचा सकता है। क्या वाकई ऐसा है? हो सकता है कि हो या नहीं भी हो सकता है, पर एक चीज तय है, तारीखें हमें अपनी गलतियों को सुधारने का, कुछ अधूरे कामों को पूरा करने का एक मौका जरूर देती हैं। अब यह तारीख हर साल की पहली तारीख भी हो सकती है और आपके इस दुनिया में कदम रखने की तारीख भी, या फिर 010101 से 12 12 12 जैसी कोई भी तारीख जो सदी में सिर्फ एक बार आती हो। हम अपनी सहूलियत से ऐसी ही कोई तारीख चुन लेते हैं, खुद से कुछ वादे करते हैं, कुछ अरसे तक उन पर अमल भी करते हैं और फिर अलग अलग वजहें या बहाने तलाश कर सिलसिले को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। फिर एक दिन हमें कोई झकझोर कर जगाता है और फिर हम अपनी पुरानी चीजों को नई शुरुआत देने के लिए एक और नई तारीख का इंतजार करने लग जाते हैं। सिर्फ एक तारीख के इंतजार में कीमती वक्त को बर्बाद कर देने वाली इस फितरत का एक अच्छा पहलू यह है कि यह हमारे इरादों को मजबूत कर देती है और ख्वाहिशों को धार दे देती है। फर्ज कीजिए आप किसी काम को लाख चाहकर भी शुरू नहीं कर पा रहे, ऐसे में एक खास तारीख किसी रहबर की तरह आपके सामने आ जाती है और आप खुद से उस तारीख को उस काम को शुरू करने का वादा करते हैं और जी जान से उस वादे को पूरा करने में जुट जाते हैं। ऐसे में 100% तो नहीं, फिर भी कम से कम 90% आसार यही होते हैं कि आप उस वादे को पूरा करेंगे। यह एक अलग बात है कि ज्यादातर मर्तबा सिलसिला बीच में ही टूट जाता है और आप इस बात को लेकर खुद को गुनहगार समझने लगते हैं कि आप वादे को निभा नहीं पाए, लेकिन यह एक ऐसा गुनाह का एहसास है जो आपने किया ही नहीं। हालात किसी भी तारीख से ज्यादा ताकतवर होते हैं। आपने खुद से एक वादा किया, उसे पूरा करके दिखाया। आपने जो वादा किया वो शुरुआत का वादा था, उसे हमेशा करते रहने का वादा नहीं किया था जिसके टूटने का अफसोस हो। गुनाह के किसी एहसास के बिना भी आप अपनी कोशिशें जारी रख सकते हैं और फिर किसी ने बेवजह तो नहीं कहा है कि वादे टूट जाते हैं लेकिन कोशिशें कामयाब होती हैं। तारीख गवाह है, हर सपने को पूरा होने के लिए बहुत सारी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षाओं से हर कोई गुजर रहा है, रुकते अटकते ही सही लेकिन सफर जारी है और जारी रहेगा, बस बढ़ते जाना है।
क्योंकि यह कोई तारीख नहीं जिसकी अहमियत और उम्र महज 24 घंटे हो, बल्कि एक उम्मीद है और उम्मीदें कभी बुझती नहीं। वो सफर की निरंतरता में लगातार हमारी राह को रोशन करते हुए उसे आसान बनाती हैं।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये तो साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

अकस्मात एक दिन शौक चर्राया, सोचा सफाई कर दूं। यूं अकस्मात करते करते सफाई रखी पिताजी की, पुरानी मेज की दराज को खींचा ही था कि लगा जैसे वक्त भी खिंचता चला आया। मैंने और खींची दराज तो देखा बचपन के पुराने हसीन दौर से अचानक पिताजी की यादगार लम्हों की याद ताजा हो गई दराज।

जिसमें न जाने क्या क्या था। सोचा सफाई कर दूं, अलमारी को भी झाड़ पोंछ कर दूं, बेकार को बाहर कर दूं, पर कर न सका एक पल भी अपने से जुदा। कुछ चीजों को सोचा था बाहर फेंक दूं, पुरानी है, एक एक करके दोबारा साफ कर कर के लगाता चला गया, सहेजता चला गया, रखता चला गया, उन यादों में खोता चला गया। जैसे खींची थी वैसे ही साफ करके, बीते पलों के साथ संजो कर बस बंद करती। पिताजी की वही पुरानी दराज़।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: लुई पास्चर।
3: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
4: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पास्चर आई वुड बी नथिंग।
3: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
5: De Marseille, dans le sud de la France.
6: Ladies and gentlemen, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान के दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मोनसिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय

0: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
1: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
2: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
0: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
2: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
0: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
3: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
4: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
3: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
4: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
3: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो,
5: अरे भेड़िया।
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
2: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो चलो चलो
3: चलो चलो चलो मुझे।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
2: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
2: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
2: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
7: लुई पाश्चर
1: सर,
7: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
1: कहिए सर।
7: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
1: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
7: ठीक है।
2: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
2: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
2: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
2: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
2: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
2: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
8: अरे आजा आजा आजा आज, ए, हाँ ए, इंजेक्शन लगा दूं?
9: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
2: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताईं।
10: सर सर ये टेलीग्राम।
9: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
10: क्या हुआ सर?
9: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
10: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
9: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
10: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
9: हाँ चार्ल्स।
2: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति

0: पद्धति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
1: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
1: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
2: देखिए आप,
1: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
1: मेरा अच्छा, बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
3: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
3: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट इनसेंसिटिव इंडिविजुअल, ही वाज अ ह्यूमनिस्ट always working towards the improvement of the human condition.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: विज्ञान गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: बाबा आमटी

बेटे जिनकी करुणा का साकार रूप है आनंदवन। आनंदवन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। यहां कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। पर इनकी मां इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की मां पढ़ी लिखी नहीं थी पर थी बहुत बुद्धिमान। मां ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से इनका परिचय कराया। मां सिखाती जो सुख लेने में है उससे ज्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। मां के द्वारा दी गई सीख ही बाबा के जीवन में पग पग पर काम आई।

बालक मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन और असहाय लोगों के कष्टों की ओर जाता। जब कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठ अपनी जमीन जायदाद को देखने निकलता, उसका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खींचता। उनकी आर्थिक कठिनाइयों तथा शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उसका दिल भर आता। छुआछूत के प्रति उसके मन में बहुत घृणा थी। किसी तरह भी उसका बाल हृदय ये मानने को तैयार नहीं था कि जन्म के कारण ही समाज में कुछ लोग छोटे और कुछ बड़े हो सकते हैं।

इसके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी प्रकृति से प्यार। पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों तथा पशु पक्षियों के प्रति उसके हृदय में अगाध प्यार था। वो दिन भर जंगलों में भील गोंडों से परिचय करता और उनसे बातचीत कर प्रसन्न होता। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, निशानेबाजी तथा स्वतंत्र जीवन मुरलीधर को विशेष रूप से आकृष्ट करता। युवावस्था में मुरलीधर पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। मुरलीधर हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। स्वतंत्रता संग्राम में वे दो बार जेल भी गए। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू ने उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा था। उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय वकालत भी की, परंतु उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं लगा।

उन्होंने सोच लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। ये कार्य था गरीब दुखियों की सेवा। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सेवा भाव से मुरलीधर के स्वप्नों को साकार करने में बहुत सहायता दी। सन 1948 में मुरलीधर वरोंस्की नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। वे सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी थे। इसी पद पर रहकर उन्हें इन लोगों की वास्तविक दशा का पता चला। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्वयं इन लोगों का कार्य नहीं करता, मुझे इनकी कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी। सिर पर मैले की टोकरी रखे जैसे ही मुरलीधर ने पांव उठाया कि उनकी नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। जहां मन भयभीत रहे वहां प्यार कैसा, और जहां प्यार नहीं वहां ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं? बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले मां उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं, अपितु मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास नहीं फटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में ही बिताना पड़ता है। लोगों को ये भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता और ये छूत का रोग है, किंतु ऐसा नहीं है। अब इसका इलाज भी संभव है। बाबा अधीर थे कि कैसे इन पुनः स्वस्थ हुए लोगों को बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्न से 250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई और स्वस्थ हुए व्यक्तियों को उस पर खेतीबाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी, और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। बाबा की झोपड़ी तो कई वर्षों बाद अब भी कुछ कुछ वैसी ही है, परंतु आसपास के भवनों को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। ये सब है बाबा की लगन और परिश्रम के साकार रूप। कुष्ठ रोगियों में किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव की उंगलियां नहीं, और कोई देख नहीं सकता, पर सभी लगे हैं अपना भविष्य बनाने में। कोई
केवल पैरों से मशीन चलाता है, तो कोई अंधा होते हुए भी फुर्ती से कुर्सी बुनता है। जो व्यक्ति जिस काम के उपयुक्त है वो उसी में लगा है। बाबा आमटे नहीं चाहते कि इन लोगों की सहायता दान से की जाए। बाबा का विश्वास है, काम से आदमी का निर्माण होता है। वे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं।

बाबा आमटे के दो पुत्र हैं, विकास और प्रकाश। दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। यहां रोगियों की चिकित्सा तो की ही जाती है, उन्हें स्नेह और सहानुभूति भी मिलती है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें फिर से स्वावलंबी बनाया जाता है।

आज आनंदवन के आसपास लहलहाते खेत हैं, फलों के बगीचे हैं, मुर्गी घर और पशु घर हैं। आसपास की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। आस पड़ोस की मंडियों में यहाँ की उगाई साग सब्जी बिकने जाती है। दूध, घी और मक्खन का व्यापार होता है। यहाँ के खेतों में उत्पन्न बीजों की नई किस्में भारत के कोने कोने में पहुंचाई जाती हैं। आनंद वन में कहीं बच्चों के लिए विद्यालय हैं, कहीं खेल के मैदान, कहीं छोटे छोटे कारखाने हैं, कहीं मनोरंजन के कार्यक्रमों के लिए सभागृह। यहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। आनंद वन सचमुच आनंद

बाबा आमटे बच्चों से अगाध स्नेह करते हैं। एक बार एक दृष्टिहीन बालक ने गुलाब का फूल छूकर देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा उसे फूलों के बगीचे में ले गए। बालक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली में कांटा चुभा। उसने हाथ पीछे खींच लिया। बाबा आमटे उसी दिन से कांटों रहित गुलाब के पौधों की खोज में लग गए और अंत में आनंद वन में वो पौधा लग गया जिस पर गुलाब तो है पर कांटे नहीं। वास्तव में बाबा का संपूर्ण जीवन ही दूसरों के मार्ग से कांटों को हटाने में और फूल खिलाने में लगा है।

बाबा के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई जिनसे असहाय व्यक्तियों को सहायता मिली। अब बाबा की कीर्ति फैलने लगी। उन्हें जगह जगह से सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1978 का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी बाबा आमटे को प्रदान किए गए। ऐसे अनेक अन्य पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। बाबा इन पुरस्कारों से प्राप्त समस्त धनराशि आश्रमों में लगा देते हैं। अपने देश में शांति तथा राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाए रखने के लिए बाबा हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। भारत जोड़ो अभियान भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाया गया है। बाबा आमटे उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: रेलगाड़ी बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन, और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे। तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
2: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
3: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
4: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
3: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
4: हाँ, अब बन गई रेल।
2: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
3: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
4: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
5: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
3: हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
5: चलो
2: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ।
5: इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
3: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
5: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
3: अच्छा
5: अच्छा, अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
4: दादाजी मैंने देखी है।
5: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
4: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
5: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
3: अरे वाह,
5: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
3: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
5: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
6: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
5: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देख आएंगे।
6: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ जाओ।
5: बैठो जल्दी करो, जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
4: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
5: हाँ हाँ उतरो बेटी।
1: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफार्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
3: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
5: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा। कुछ जाने वाले हैं।
3: अच्छा, तो ये बात है।
5: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
7: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
4: दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
5: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
3: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
5: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
3: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
5: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
3: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
7: चुक चुक चुक चुक चुक।

0: कुकुस। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: किसान भाइयों, एक बारी फिर था बहुत बहुत स्वागत करिए है तमार सबूनो रेडियो टांटिया भील 90.8 FM ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा। किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छवानी आवाज आपड़ा हंगला किसान भाइयों हरू खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी खेतीवाड़ी थी जोड़ेली घनी खरी जानकारियों ने आपड़ी तक पुगाड़वानो प्रयास करे है। किसान साथियों, इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी आपड़ किसान भाई जो है अलग अलग प्रकार नी खेती करवाना बारा मा जानकारी हासिल करी सके। अलग अलग प्रकार नी खेती करवा थी हमारा जो किसान है तीनी आय मा वृद्धि था है अने सही तरीका थी खेती किकम करवी जोवे तेना बारा मा आपू केवीके ना माध्यम थी कृषि विज्ञान केंद्र ना विशेषज्ञों ना सहयोग थी आपू इनी सब समस्याओनो समाधान करवानो प्रयास आपू करी से। ते किसान भाइयों, आशा करिए है कि हमारे किसान भाइयों ने समय समय पर एक सलाहकार नी जरूरत पड़े है हमारा खेतरों मा, केम के दिन प्रतिदिन आपड़ जो वातावरण से त्यो बदलतो जाई रो है। आपड़ी जगह भी है, जगह मा हर साल आपू खेती करिए है तो धीरे धीरे जो खेती मा आपड़ खेतरों मा अपनी जमीन में जो बदलाव आ रो है तेने हिसाब है अगर आप देखिए तो तीनों आपू एक ही तीनों रास्तों नकाली है कि वधु खातर नाख दी है तो यू वधु खातर नाखेलू भी ताजू निमल है। तो किसान भाइयों, अगर एवी समस्याएं अगर अपना किसान भाइयों आगाड़ी आवे है तो किसान भाई ने हूँ करमू जोवे। साथ ही अगर आप देखिए तो हमारा किसान भाई है क्या मुख्यतः ज्वार मुख्यतः मक्का है, कपास है, सोयाबीन है, चना है, गेहूं है, बस इन्हीं फसलों नी खेती करे है। इन्हीं अलावा भी आपड़ो किसान जो है फलों नी खेती करी सके है, फूलों नी खेती करी सके है, औषधि पौधा नी खेती करी सके है, परंतु जानकारियों ना अभाव ने कारण हमारा जो किसान है इन्हीं हंगली खेती ने नी करी सके है। एतरे आपड़ इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी आपू कोशिश करूँ कि किकम आपड़ आपू अपनी खेती ने सुधारी सकी अने अगर कम खेती भी ओहे तो तिनमा आपू कईनी कृषिनो कईनो पद्धति अपनावीन वधु थी वधु खेती करी सकी अने लाभ ली सकी। किसान भाइयों, अगर आपू देखी कि हमने जो आपड़ कृषि है ते घणी अगाड़ी नकली गई है, हाव वगर जमीन भी खेती करी जा रही है, खाली पानी में खेती करवी भी संभव है। तो किसान भाइयों, हजू भी घनी एवी चीजें हैं जैसे कि आप खाली खेतर देखें लेकिन मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, पशु पालन है, भैंस पालन है, दूध का उत्पादन है, अंडा का उत्पादन है, यह हंगला जो कारोबार है इनमें भी आपड़ो किसान उठी सके है, ऊपर आवी सके है। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं हमने आपड़ा जो जानकारी है तीना एक दूसरा थी साझा करवानी जरूरत है। तो किसान भाइयों, इना कार्यक्रम में आपू न केवल विशेषज्ञों थी आपू राय ली है पर आपड़ा किसान भाइयों ना सवाल भी आपू इना विशेषज्ञों तक पुगाड़वानो प्रयास करी है। साथ ही आपू एक सफल किसान की कहानी भी हमल हूँ तेरी कहानी ने माध्यम थी आपू ये जानकारी मिले है कि एवी रीते नहीं ते पहली रीते भी किकम थी ये खेती करी जा सके है। तो किसान भाइयों, आशा करिए हैं कि यू खेतीवाड़ी कार्यक्रम तमोन लाभकारी है अने ये भी आशा करिए हैं कि जो भी जानकारी आपून इना रेडियो टांटिया भील 90.8 FM ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम थी मले है तीनी जानकारी ने आपू अपनी तक के सीमित नहीं रखी, तीनी जानकारी ने आपू अपना पड़ोसी किसान भाइयों हाथे भी साझा करी ताकि आपू तीन थी भी कहीं हिक मिली सके अन आपड़ी हीक थी त्यो भी आपड़ा खेतरों में બદલાવ લાવી શકે. તો કિસાન ભાઈઓ, ખેતીવાડીના એના કાર્યક્રમની આપણું શરૂઆત કરીએ હે. અને આજના એના કાર્યક્રમમાં જ્યું બી આપું શીખું ત્યું આપું આપણા ખેતરમાં તેનો ઉપયોગ કરું. ખાલી સાંભળીને એની સીઝોને ભૂલવાનું નહીં હે. જો બી જાણકારી હે તેની જાણકારી પર આપણે ગૌર કરવાની જરૂરત હે. અને આપણે કિસાન ભાઈઓને તેની જાણકારી લઈને તે ખેતી કરવાનો જરૂરત હે. તો કિસાન ભાઈઓ, આપણે વધુ સમય ના લેતે હવે આજના એના કાર્યક્રમની આપણું વાંચી શરૂઆત કરીએ છે.
0: રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM, ટાઇમટિયા ભીલ, રોજ સાંજે 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન. આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં. એત્રે હમળતા રહેજો. ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM.
2: हैं और पहले जैविक खेती के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. डॉक्टर दवाज, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आज की तारीख में क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है कि जो किसान है वो जैविक खेती को अपनाए, क्या महत्व है इसका?
3: मोनालिसा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारा किसान है आज उसकी उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, उसको उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं मिल पाती है. साथ साथ में जो उपभोक्ता है वो काफी इस समय चाहता है कि उसको ऐसा भोजन मिले जिसमें किसी प्रकार के जहर का अंश ना हो, यानी कि रेजिड्यू ना हो. इसलिए जैविक खेती की जो बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही है और जैविक के जो पदार्थ हैं उनका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है, उपभोक्ता उसको लाइक करता है और साथ साथ में किसान की उत्पादन लागत कम होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, प्राकृतिक जो संसाधन वो उसका सही उपयोग होता है और साथ साथ में जो छोटे और मझोले किसान है उनको इससे ज्यादा लाभ है क्योंकि ऐसे किसानों के पास पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं अगर वो जैविक खेती करते हैं. लेकिन जैविक खेती करने के लिए उनको कुछ बातों का खास ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उसी की आज हम चर्चा करेंगे. हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई इसमें बढ़ चढ़ के अपने सवाल पूछें जिससे हम इस विषय पर अच्छी तरह से बातचीत कर सकें.
2: जी जरूर. तो विस्तार से हमारी चर्चा होगी इस कार्यक्रम में जैविक खेती और इसमें बायोगैस स्लरी के महत्व को लेकर. और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े अपने सवालों के साथ. आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर.
4: जैविक खेती में बायोगैस स्लरी का काफी महत्व होता है. बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ रूपांतरण गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है. इसे ही बायोगैस स्लरी कहते हैं. इस स्लरी को किसान खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी तरह की घास या बीज नहीं होता है, जो खेतों के लिए काफी उपयोगी रहता है. 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में 50 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक साल में डाला जाता है. उस गोबर में 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद मिल जाती है. ये खेती के लिए काफी अच्छी खाद मानी जाती है. इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस और 1% पोटाश होता है. बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद कुछ हिस्सा नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होता है. ऐसे में अगर इसका तुरंत इस्तेमाल खेत में सिंचाई नाली के जरिए किया जाए तो इसका फायदा रासायनिक खाद की तरह फसल पर तुरंत होता है और उत्पादन में 10 से 20% बढ़त हो जाती है. बात अगर जैविक खेती की करें तो जैविक खेती कृषि की वो पद्धति है जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है. भूमि का आहार जीवांश होता है. जीवांश गोबर, पौधों व जीवों के अवशेष को खाद के रूप में भूमि को प्राप्त होते हैं. जीवांश खाद के इस्तेमाल से पौधों को समस्त पोषक तत्व मिल जाते हैं. साथ ही इनके इस्तेमाल से उगाई गई फसलों पर रोगों और कीटों का प्रकोप काफी कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती. इसका परिणाम ये होता है कि फसलें पूरी तरह से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती हैं.
2: जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी. आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अगले मेहमान का और बांस की खेती के बारे में जानकारी लेते हैं. डॉक्टर अजय ठाकुर, आपसे सबसे पहले हम बांस के बारे में जानना चाहते हैं. बांस से जुड़ी हुई कई रोचक बातें हमने सुनी है, जैसे कि बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है बांस, और हमें बताएं कि इसकी खेती के क्या फायदे हैं किसानों के लिए.
5: जी हाँ, बांस के नेचुरली आपने जैसा कहा फास्टेस्ट ग्रोइंग जिसको बोलते हैं, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। और एक साल में, आपको एक रोचक तथ्य बताऊं, एक साल में अपनी पूरी लंबाई ले लेता है। अगले साल ये बढ़ता लंबा नहीं होता है, तो जितना लंबा होना है इससे हो जाता है वो। दूसरा इसका फायदा क्या है कि इसकी मोटाई भी 2 साल में पूरी हो जाती है, तो ये तैयार 2 साल तैयार होने वाला कोई भी वृक्ष यानी लकड़ी दान करने वाला पौधा नहीं है।
2: जी।
5: अगर आप कंपेयर करेंगे कि सुगर केन की जो खेती करते हैं गन्ने की, उसकी भी हम 2 साल की पैदावार लेते हैं, और गन्ने और बांस की में तुलना करें, तुलना नहीं है। आज के डेट में बायोमास को प्रोड्यूस करने वाला सबसे अच्छा पौधा है। और भारत जो है एक कास्ट में डेफिसिट कंट्री है, मतलब हम तो अभाव है। आपको शायद पता होगा कि हम 50,000 लकड़ी का आयात करते हैं, उसमें बांस भी शामिल। अब हम इतना सारा आयात करते हैं तो बांस, अगर हम ऐसा तेज बढ़ने वाला पौधा लगाते हैं,
2: बिल्कुल, तो काफी जो आयात है हमें करना पड़ता है। ऐसे में अगर किसान बांस की खेती में रुझान ले, बांस की खेती को अपनाए, तो आयात पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम किया जा सकता है। और साथ ही किसानों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि बांस के कई तरह के उपयोग हैं, और ऐसे में जो उसकी मांग है वो काफी अच्छी है बाजार में, तो बांस की खेती को अपनाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार से जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
4: पारंपरिक खेती से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो बांस की खेती आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। घटते वन क्षेत्र और लकड़ी के बढ़ते इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए भी बांस काफी मददगार साबित हो सकता है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नर्सरी में पौध मुफ्त दिए जाते हैं। इस समय बांस की करीब 136 किस्में मौजूद हैं। अगर इसकी खेती को व्यावसायिक रूप देना है तो क्षेत्र और इस्तेमाल के हिसाब से इसकी किस्मों का चयन करें, लेकिन उनमें से 10 तरह की किस्मों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। बांस की खेती में सबसे अच्छी बात ये है कि बांस की फसल 40 साल तक चलती रहती है। बांस की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती, इसे किसी भी सूखी मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में बांस के पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। बांस के पौधों पर जलवायु परिवर्तन का भी कोई खास असर नहीं पड़ता, ज्यादा ठंड और दलदल में भी पौधे ठीक से वृद्धि

0: सड़ी गोबर की खाद को भर दिया जाता है और गड्ढों की सिंचाई कर दी जाती है। बीजों को रोपाई से पहले करीब 8 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें और सतह पर बैठे बीजों की रोपाई क्यारियों में कर दें। रोपाई की बात करें तो बांस के पौधों की रोपाई खाली पड़ी जमीन या फिर खेत किनारे बाड़ की तरह की जाती है। बांस के पौधों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। इसके पौधों को सिर्फ शुरू में ही नमी की जरूरत होती है। बांस के पौधों को खरपतवार से बचाना जरूरी है, क्योंकि खरपतवार बांस की बढ़वार को पूरी तरह से रोक देती है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकालते रहे।
1: बांस की खेती पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जैविक खेती के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर डबास आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि जैविक खेती जो है वो उत्पाद की गुणवत्ता के लिहाज से हो या पर्यावरण की दृष्टि से हो या फिर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की दृष्टि से हो, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन किसानों के मन में संशय ये रहता है कि रासायनिक खेती के मुकाबले अगर जैविक खेती को अपनाते हैं तो उत्पादन कम होगा और ऐसे में उन्हें नुकसान की चिंता होती है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: ये चिंता हमारे किसानों को काफी लगी रहती है, लेकिन अगर नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान कब होता है? जब हम पौधों को सही मात्रा में पोषण नहीं दे पाते, और वो पोषण कब नहीं दे पाते हैं? जब हम सही खाद का सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमारे जितने भी किसान भाई उनके पास पशु हैं
1: जी,
2: उन पशुओं से जो गोबर मिलता है उसको हम बायोगैस सलरी के कन्वर्ट कर ले, यानी कि बायोगैस प्लांट के माध्यम से उसका खाद बनाए, तो एक तो खाद की गुणवत्ता अच्छी होगी
1: जी,
2: दूसरा उसमें किसी प्रकार के खरपतवारों के बीज नहीं होंगे, और तीसरी बात है इस खाद को खड़ी फसल में
1: जी
2: पानी के साथ दिया जा सकता है। इनके जब आपको नाइट्रोजन के तौर पे यूरिया देते हैं तो उसकी जगह अगर आप इस खाद को जैविक खेती में देते हैं तो आपके पौधों को सही मात्रा में पोषण मिलेगा
1: जी।
2: और जब पोषण सही मात्रा में मिलेगा, किस्म अच्छी है, खेत अच्छा है, तो आपकी उत्पादन कम नहीं होगा बल्कि उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन उत्पादन तभी बढ़ेगा जब आप सही मात्रा में सही समय पे सही खाद देंगे
1: जी।
2: और ये जो बायोगैस सलरी होती है इसमें खाली एक पोषक तत्व नहीं होता, खाली नाइट्रोजन, बल्कि हमारे पौधों को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो सभी के सभी पोषक तत्व इस खाद के अंदर संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। और जब पौधे को सभी के सभी पोषक तत्व मिलते हैं तो पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है, चाहे वो जड़ों की हो चाहे पत्तों की हो, और जब बढ़वार अच्छी होगी तो उत्पादन भी अच्छा आएगा। और क्योंकि किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं है तो इस प्रकार की फसल में बीमारी और कीड़े का प्रकोप भी कम होता है। और एक और खास बात है, जब इस खाद का हम प्रयोग करते हैं बायोगैस सलरी का, तो ये हमारी मिट्टी के अंदर तीन तरह से प्रभावित करती है
1: जी।
2: एक तो मिट्टी की जैविक गुणवत्ता को बढ़ाती है, मिट्टी की फिजिकल यानी कि जो भौतिक गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाती है, और साथ साथ में मिट्टी की जो रासायनिक गुणवत्ता है उसमें बढ़ावा करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हम पानी का उपयोग करते हैं तो कम पानी में भी हम अधिक पैदावार ले पाएंगे, यानी कि अगर जैविक खेती करेंगे तो हमारे पास पानी की भी बचत होगी और हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है
1: जी,
2: वो घटने की बजाय बढ़नी शुरू हो जाएगी, और फसल का उत्पादन कम होने की बजाय अधिक होगा, और साथ ही साथ जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और इस तकनीक में एक और फायदा ये होता है बायोगैस में कि हमारे किसानों को घर में खाना बनाने के लिए बहुत ही स्वच्छ और अच्छी गैस मिल जाएगी, अच्छा खाद मिल जाएगा। यानी कि किसान की दो आवश्यकता, एक तो ऊर्जा की आवश्यकता, दूसरा खाद की आवश्यकता, उन दोनों की आपूर्ति ये करता है। और यह तकनीकी हमारे छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि छोटे और मझोले किसानों के पास में पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और साथ साथ में उनके पास भूमि के जो क्षेत्रफल कम है, और इस खेती में इस खाद का अगर प्रयोग
1: छोटे किसान है उनके लिए ये काफी उपयोगी है। डॉक्टर,
2: मैं आपको बताना चाहूंगा कि लागत इस बात पर निर्भर करती है कि हम प्लांट किस आकार का लगाएंगे
1: जी,
2: और आकार इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी मात्रा में गोबर उपलब्ध है, यानी कि जो इनपुट अवेलेबल है
1: जी।
2: क्योंकि अगर हमारे पास पशुओं की संख्या ज्यादा है तो हमारे पास ज्यादा गोबर होगा तो हमें बड़ा प्लांट लगाना है, पशुओं की संख्या मध्यम है तो मध्यम प्लांट लगाना पड़ेगा, और पशुओं की संख्या कम है तो छोटा प्लांट लगाना पड़ेगा। तो जो प्लांट का आकार है वो घन फुट या घन मीटर इनमें नापा जाता है
1: जी।
2: सबसे छोटा प्लांट जो किसान के लिए उपयोगी हो सकता है वो 35 घन फुट या 1 घन मीटर का होता है, और इस प्लांट के लिए 25 किलो गोबर की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर किसी किसान के पास दो पशु हैं तो वो इस प्रकार के प्लांट को

0: लगा सकता है और इससे उसको जो खाद मिलेगा वो उसके 1.5 से 2 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। साथ साथ में जो गैस मिलेगी वो 5 आदमियों के परिवार के लिए खाना बनाने के लिए पर्याप्त रहेगी। और जितना आपके पास गोबर है उसी के आधार पे प्लांट का हम साइज बढ़ाते जाएंगे। यानी कि 50 किलो गोबर है तो 2 घन मीटर का हो जाएगा, यानी कि 70 घन फुट का
1: जी।
0: और अगर आपके पास 75 किलो गोबर है तो 105 घन फुट या 3 घन मीटर का प्लांट हो जाएगा। तो इसी आधार पे हम ये गणना करते हैं कि हमारे पास इनपुट कितना अवेलेबल है, यानी कि गोबर कितना अवेलेबल है। और मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूंगा कि इसके लिए जरूरी नहीं गोबर ही अवेलेबल हो आपके पास। अगर आपने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है तो पोल्ट्री वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है, पिगरी फार्म खोल रखा है उसका वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है। आपने कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है जिसमें आप कोई भी जो हमारे अनाज या फलों का या सब्जियों का वो कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उसका जो भी वेस्ट है वो भी काम आ सकता है। आपका अगर स्लॉटर हाउस है तो उसका वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है। जो भी सड़ने गलने वाली चीजें हैं वो सभी हमारे बायोगैस प्लांट के लिए इनपुट है।
1: जी बिल्कुल।
0: हम जब भी बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो बायोगैस प्लांट का जैसे हमारा खाना होता है या पशुओं का खाना होता है, इसी प्रकार से प्लांट का भी खाना होता है। और प्लांट का खाना है जो भी गोबर है या बायोवेस्ट हमारे पास अवेलेबल है वो उसका खाना है
1: जी।
0: तो हमें जितना भी हमारा जिस आकार का प्लांट है उसी के आधार पे उसको रेगुलर फीडिंग करनी है, यानी कि लगातार खाना खिलाना है। क्योंकि इसमें बायोगैस प्लांट में भी 2 किस्म के प्लांट होते हैं, एक तो रेगुलर फीडिंग वाले होते हैं और एक ऐसा होता है कि एक बार आपने फीडिंग कर दिया तो जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए तो उससे आपको गैस भी मिलती रहेगी, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे फिर दोबारा फीडिंग करेंगे
1: जी।
0: इस ऐसे प्लांट में सॉलिड फीडिंग ज्यादा होती है तो जहां पे हमने फसलों का अवशेष का प्रयोग करते हैं तो वहां इस किस्म के प्लांट होते हैं। लेकिन इस किस्म के प्लांट में आपको जो गैस की मात्रा मिलेगी वो लगातार बराबर नहीं मिलेगी, कभी कम मिलेगी कभी ज्यादा मिलेगी
1: जी।
0: दूसरा होता है रेगुलर फीडिंग वाले प्लांट, यानी कि जिसको रोज ही खाना चाहिए। जिन प्लांट को आप रेगुलर फीडिंग करते हैं और सही मात्रा में करते हैं तो उनसे आपको लगातार गैस मिलती है, बराबर मात्रा में मिलती है और लगातार आपको खाद भी मिलता है और बराबर मात्रा में मिलता है। और इसका जो खाद है वो बिल्कुल सड़के निकलता है तो इसके खाद के ऊपर किसी प्रकार के मक्खी या मच्छर नहीं बैठते हैं, उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है। तो इसका खाद वही हम खाद अच्छा मानेंगे जिसमें बदबू ना हो और मच्छर मक्खी ना बैठे, यानी कि खाद पूर्णतः सड़ गया है। क्योंकि जब ये खाद हमारे खेत में जाएगा तो ये खेत के लिए ज्यादा लाभदायक होगा।
1: बिल्कुल।
0: अगर कई बार कुछ किसान गलती कर देते हैं कि छोटा प्लांट बना लिया उसमें फीडिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो जब फीडिंग ज्यादा करेंगे प्लांट का आकार छोटा है तो कच्चा खाद निकलेगा
1: जी। किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: गोबर गैस बनाने के लिए अलग अलग विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। कोई लोहे का जो ऊपर कैन आती है उसको रख के बनाते हैं, कोई पूरा सीमेंटेड होता है, और भी अलग अलग विधियों से बनाया जाता है। तो आज आइए जानते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक्सपर्ट की राय कि कौन सा बायोगैस अच्छा होता है और कौन से बायोगैस विधि से हमें बनाना ज़्यादा मुनाफे में हो सकता है।
0: एक बनते थे लोहे के ड्रम वाले जिसको हम केवीआईसी मॉडल कहते हैं, और दूसरे बनते थे ईंट और सीमेंट के
1: जी।
0: वो जनता बायोगैस था। लेकिन अभी एक नया प्लांट या काफी दिनों से चल रहा है जिसको हम कहते हैं दीन बंधु मॉडल, यह भी ईंट का सीमेंट का कंक्रीट का बनता है और इस प्लांट का रखरखाव भी कम है, इसकी लागत भी कम है और साथ साथ में इससे किसान को ज्यादा लाभ मिलता है और किसान के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो आजकल भारत सरकार या अधिकतर जो सरकारें हैं या जो एजेंसियां हैं वो दीन बंधु प्लांट को ज्यादा प्रमोट कर रही हैं और ये ज्यादा उपयोगी भी है। क्योंकि सर्दी के मौसम में जो केवीआईसी मॉडल है उससे लगभग 25% गैस कम मिलती है, जबकि परिवारों को गैस की ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन जो दीनबंधु प्लांट है इसमें गैस कम नहीं मिलती है, बराबर गैस मिलती रहती है और गैस में बहुत कम फर्क पड़ता है। और दूसरी जो बात खास ये है वो है कि दीनबंधु मॉडल में रखरखाव बहुत आसान है, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है और कम लागत आती है। तो किसान के हिसाब से जितने भी जो हमारे बाराबंकी के किसान हैं वो जो लगाना चाहते हैं तो उनको दीनबंधु लगाना चाहिए, और लगाना चाहते नहीं बल्कि सभी किसानों को लगाना चाहिए। क्योंकि आपका चित्र काफी फेमस है केले की खेती के लिए, आपका चित्र काफी फेमस है कुछ सब्जियों की खेती के लिए, आपके क्षेत्र में फूलों की खेती होती है और ये सभी खेती में इसका खाद बहुत ही उपयोगी हो सकता है और आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है।
2: जी हाँ बिल्कुल, आशा करते हैं कि किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडियाबिल 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडियाबिल 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक ने बाद एक बार फिर था बहुत बहुत स्वागत करी है तमार सबुनो रेडियो टांडिया भील 90.8 FM ना इना खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान भाइयों आपू लगातार खेती बाड़ी थी जोड़ेली घनी खरी महत्वपूर्ण बातों ने ली ने आपू चर्चा करी रहा है, तो इन चर्चा ने आगे बढ़ाता जाइए जानिए हजू खेती बाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण बातों ने।
2: बायोगैस प्लांट है ये एमएनआरई मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये केंद्र सरकार से राज्य सरकार के माध्यम से सभी किसानों को सब्सिडी मिलती है। तो आप अपने जिले के जो खंड विकास अधिकारी हैं या जिला विकास अधिकारी हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी में बदलाव आता रहता है। तो अभी भी शायद सब्सिडी में कुछ बढ़ाव होने की संभावना है, तो इसका कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है। तो आपको बिल्कुल सब्सिडी मिलेगी और ये आपकी सरकार के माध्यम से मिलेगी। जो अपने जिले के अधिकारी हैं उनके आप संपर्क में रहें और उनसे संपर्क करके आप सब्सिडी के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन सब्सिडी से ज्यादा जरूरी है प्लांट, इससे आपकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आपका खर्चा बचता है, आपका पैसा बचता है, आपकी मिट्टी सुधरती है, आपके जो महिलाएं हैं उनको सुविधा कम होती है, बल्कि मैं तो कहूंगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस प्लांट का बहुत ही ज्यादा महत्व है और खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए।
3: जी जी बिल्कुल। तो विपिन जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहां पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर रबास आपने बताया था बायोगैस प्लांट के दीनबंधु मॉडल के बारे में, मैं चाहूंगी कि थोड़े विस्तार से इस मॉडल के बारे में हमें बताएं।
2: जो दीनबंधु मॉडल है ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत सिंपल है। एक तो इसको बनाने में अच्छी सुविधा है और गांव में इसका रखरखाव में फायदा है और साथ साथ में इसमें लागत भी कम आती है और बाद की मेंटेनेंस ना के बराबर है और इसकी लाइफ भी काफी लंबी होती है।
3: जी,
2: इसको बनाने के लिए केवल आपको कुशल कारीगर चाहिए और अच्छे किस्म का आपका बिल्डिंग मटेरियल आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसको एयरटाइट बनाना होता है। अगर एयरटाइट डोम नहीं बना तो आपका प्लांट फेल हो सकता है, इसलिए जो कारीगर बनाने वाला है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में जो भी आप सामग्री इस्तेमाल करेंगे, खासकर सीमेंट है, रोड़ी है, बदरपुर है, तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए और इसको सही। तो जो दीनबंधु मॉडल है ये काफी उपयोगी है और खासकर जितने भी छोटे और मझोले किसान हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि घर में ये नीचे बन जाता है अंडरग्राउंड और उसके ऊपर ये कोई भी काम कर सकते हैं, आपको अलग से जगह की आवश्यकता नहीं होती है, खाद आपको लगातार मिलता रहता है और इससे इसका रखरखाव भी आसान है और बनाना भी आसान है, लागत भी कम है और सरकार इसको काफी प्रोत्साहित कर रही है और इस समय काफी कारीगर, इसके निपुण कारीगर अवेलेबल है जो इस प्लांट को बना सकते हैं और किसान को बाहर के इनपुट पे कम निर्भर करना पड़ता है। तो ये एक प्लांट अच्छी किस्म का प्लांट हो सकता है जिसको आप बनाएं उसका लाभ उठाएं।
3: बिल्कुल। जो बायोगैस प्लांट है वो अपनी क्षमता के अनुरूप काम करे, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए?
2: बायोगैस प्लांट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि जिस आकार का आपने प्लांट बनाया है
3: जी
2: उसको उसका खाना रोज मिलना चाहिए और जब खाना रोज मिलेगा तो वो आपको गैस भी लगातार देगा, खाद भी लगातार देगा और अच्छी देगा। दूसरी बात आती है जब हम गोबर डालते हैं तो गोबर को पानी में अच्छी तरह से घोल के डालना है, यानी कि अच्छा। एक भाग गोबर का और एक भाग पानी का अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
3: अच्छा।
2: और जिन किसानों के फर्श पक्के हैं, जो पशुओं का पेशाब इकट्ठा कर सकते हैं या जो पशुओं के नहाने धोने का जो वेस्ट है वो इकट्ठा कर सकते हैं, तो आप उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो गैस का अमाउंट भी ज्यादा होगा, खाद की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और आपको अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं होगी।
3: जी।
2: दूसरी बात आती है जो प्लांट का बनाने की जगह है वो ऐसी होनी चाहिए जो किचन के पास भी हो, साथ साथ में हमारी जो पशुशाला उसके भी नजदीक हो, वो ऐसी खुली जगह हो जहाँ पे सर्दियों में धूप अवश्य आती हो और प्लांट के ऊपर धूप रहती हो
3: जी।
2: तो ये चीजें ज्यादा लाभदायक हैं और साथ साथ में आपको फीडिंग खासकर सर्दी के मौसम में आप इसमें फीडिंग दो तीन बार कर सकते हैं एक बार की बजाय, क्योंकि अगर आप एक बार करते हैं तो जो गोबर होता है, जो वो कोई भी पशु गोबर करता है तो उसका जो तापमान है वो लगभग 35 डिग्री के आसपास होता है, उससे ऊपर होता है, लेकिन क्योंकि सर्दी का मौसम है बाहर का तापमान काफी कम है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जितना ही ठंडा हो जाएगा उतना ही प्लांट की एफिशिएंसी कम होती जाएगी।
3: अच्छा।
2: अगर आप उसको दो तीन बार यूज करेंगे, सुबह का सुबह यूज कर लिया, शाम का शाम को यूज कर लिया, दोपहर को यूज कर लिया, तो जो गोबर हमारे प्लांट के अंदर जाएगा उसका तापमान सही होगा, तो आपका जो हमारे जो गैस बनाने की प्रक्रिया है वो ज्यादा सुचारू रूप चलती रहेगी, ठीक चलती रहेगी, आपको गैस बराबर मात्रा में मिलती रहेगी, आपकी ये शिकायत नहीं होगी कि सर्दी के मौसम में गैस कम बन रही है
3: जी।
2: दूसरी बात ये कि जब भी आप प्लांट बनाते हैं, प्लांट बनाने के बाद जो डोम होता है जिसको हम कहते हैं किण्वन क्रिया होती है, उस डोम को मिट्टी में जरूर दबाना है।
3: अच्छा,
2: अगर मिट्टी में नहीं दबाएंगे क्योंकि वो सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ है तो तापमान के उतार चढ़ाव से उसके अंदर क्रैकिंग आ सकती है और जब क्रैकिंग आ जाती है तो उससे गैस लीक कर जाती है और गैस लीक कर जाती है आपका प्लांट फेल हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर चार उंगल भी मिट्टी चढ़ा देंगे तो ये जो मिट्टी है तापमान के उतार चढ़ाव को रोकेगी और उसमें किसी प्रकार की क्रैकिंग नहीं होगी, तो आपकी जो प्लांट की लाइफ है वो लंबी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। एक और बात मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, खासकर कृषक महिलाओं को,
3: जी
2: वो गैस का प्रयोग करते हैं, अगर गैस बिल्कुल सही जा रही है तो उसकी लो बिल्कुल नीली होगी।
3: अच्छा।
2: लेकिन क्योंकि प्लांट में जो गैस के साथ कई बार जो पानी का भाप बन के जाता है और वो भाप आगे कन्वर्ट हो पानी में हो जाती है, तो आपकी पाइपलाइन जो गैस की पाइपलाइन है उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है।
3: अच्छा।
2: अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो पानी इकट्ठा होने से जो आपकी गैस की लो है वो पीली हो जाएगी और धुआं आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके बर्तन काले होने शुरू हो जाएंगे।
3: अच्छा।
2: तो आपको जो प्लांट की जो फिटिंग करे खासकर गैस की पाइपलाइन की, उसमें जहां वो सबसे नीची जगह है वहां पे एक वाटर रिमूवर आता छोटा सा, वो 20 या 50 रुपए का होता है, अगर वो आप लगा देंगे तो आपको केवल एक बटन दबाना है, उसके दबाने से जो भी पानी को निकल जाएगा तो ये समस्या आपके में नहीं आएगी
3: जी। बिल्कुल, इससे से जुड़ा एक सवाल है डॉक्टर डवास, कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि बायोगैस प्लांट से मिलने वाले गैस से जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें बदबू आती है, जबकि आपने बताया कि बायोगैस प्लांट अगर सही तरीके से बनाया गया हो तो बदबू नहीं आती है, तो क्या वजह हो सकती है इसकी?
2: मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि ये हमारे किसानों की जो सोच है उसमें मैं हो सकता हूँ गलत सोच रहे हैं
3: जी सर।
2: गैस में किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है, केवल अगर हमने अपने बायोगैस प्लांट से लैट्रिन को लिंक किया हुआ है।
3: अच्छा।
2: या हम कहीं से वो जाते डाल रहे हैं तो कई बार थोड़ी बहुत मात्रा में H2S गैस बनती है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, अगर वो गैस बनती है तो थोड़ी सी बदबू आ सकती है और उसका भी प्रबंध हो सकता है अगर हमारे पास हमने

0: है।
1: अच्छा,
0: साथ साथ में उसकी लो भी अच्छी आती है और इसमें जो आंच है वो भी ज्यादा होती है, तो इससे आपको शिकायत आपको रहेगी नहीं कि रोटी अच्छी नहीं बनी। रोटी अच्छी बनेगी और इसका चूल्हा भी अच्छा होता है। और इसके प्लांट से अगर आपने बहुत ज्यादा पशु रखे हैं तो गैस से आप प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस से जो आपका दूध है उसका मावा बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं। ये किस्म से जो घरेलू कुटीर उद्योग में भी काम आ सकता है।
1: जी बिल्कुल। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: और गोबर के अनुसार आप इस प्लांट बनाएंगे ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास गोबर की मात्रा ज्यादा है तो मैं आपको कहूंगा कम से कम 20 घन मीटर का प्लांट बनाएं, जिसके लिए आपको 5 क्विंटल गोबर की हर रोज आवश्यकता होगी। इससे आप इंजन भी चला सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं, और इसका जो खाद है वो लगभग 30 से 50 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। तो इस किस्म का प्लांट बनाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा फायदा रहेगा। अगर प्लांट के आकार की बात करें तो वो बना सकते हैं। और इस प्लांट के किस्म के जो प्लांट बनाएंगे उसकी जो लागत आएगी वो लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास आएगी, क्योंकि आप 20 क्यूबिक मीटर का प्लांट बना रहे हैं। और इससे गैस जो मिलेगी वो लगभग 100 आदमियों का खाना हर रोज उस गैस पे बन सकता है। तो 100 आदमियों का खाने का मतलब ये हो सकता है, अगर आपके परिवार में सदस्य कम है तो 5 आदमियों का खाना, जो बाकी जो गैस है उससे आप बिजली भी बना सकते हैं जनरेटर के थ्रू। उस गैस से आप कोई प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गैस का और दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य उत्पाद है, गैस मुख्य उत्पाद नहीं है, गैस तो सह उत्पाद है, मुख्य उत्पाद खाद है।
1: जी जी,
0: जो आपकी जैविक खेती के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है और इसका अगर प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे छोटे और मझोले किसान काफी हैं और वहाँ पे हमारे किसानों को इस किस्म की जरूरत भी है, तो उन किसानों को जरूर अपनाना।
2: जी हाँ बिल्कुल, बायोगैस से आपको फायदा ही होगा, इससे लाभ ही लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही कहीं कहीं कुछ किसानों को हमने देखा है जो बायोगैस का इस्तेमाल खाना पकाने में करते ही हैं, साथ में जो जो खाद है, जो बायोगैस बनने के बाद जो खाद बाहर निकलती है वहां पर केचुए खुद ही आ जाते हैं, वहां आपको केचुए डालने की तक जरूरत नहीं होती है। और वहां पर अगर आप वहां का जो अवशेष निकलता जाता है, जैसे हमारा गैस बन गया, गैस बनने के बाद जो खाद निकलती जाती है तो उसमें अपने आप वहां पे केचुए आ जाते हैं और केचुए खुद ही आपको जो अपना केचुआ खाद है वो उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है। खाद की जो गर्मी निकालने के लिए भी वो बहुत ही सहायक है। उसके बाद जो गैस है उसके हम खाना बना उसके साथ हम खाना बना सकते हैं और जो उसका अवशेष बच रहा है, जो ठंडी हुई घास, उसको केचुए बहुत ही चाव से खाते हैं। और जो खाद जो बनने की जो प्रक्रिया है वो भी कई गुना तक बढ़ जाती है। चर्चाओं का ये सिलसिला जारी रहेगा पर यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: ब्रेक ने बाद एक बार फिर था बहुत बहुत स्वागत करिए हैं तमार सबुनो रेडियो टांडिया भील 90.8 FM ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में किसान भाइयों आपू लगातार खेतीवाड़ी थी जोड़ेली घनी खरी महत्वपूर्ण बातों ने लीने आपू चर्चा करी रहा है तो इन चर्चा ने आगे बढ़ाता जाइए जानिए हजू खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण बातों ने
2: खेती किसान कर रहे हैं उनके खेतों के फसल के पोषक तत्व प्रबंधन में इसका क्या महत्व है।
3: आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो आजकल तीन ही खादों को ज्यादा जानते हैं, डीएपी, यूरिया और कुछ लोग पोटास, और कुछ बहुत ही कम किसान ऐसे जिंक या दूसरी चीजों को जानते हैं। और क्योंकि सघन खेती की वजह से हमारी जो मिट्टी है उनमें इन पोषक तत्वों काफी कमी हो गई है और इनके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी भी कमी हो गई है। अगर हम अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। और जब संतुलित मात्रा की बात आती है तो किसान को हम बताते हैं आपको ये करना है ये करना है, तो उसको किसान की समझ में नहीं आता कितना करें। तो किसान को जो दिखाई देता है तो यूरिया का लाभ सबसे ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए साधारणतर किसान यूरिया ज्यादा प्रयोग करते हैं और जिसकी वजह से फसलों में बीमारी और कीट का प्रकोप भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो बायोगैस सलरी है इसके अंदर पौधे को 16 से 17 जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी के सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध है। तो किसान को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है
2: जी, जी।
3: उसको केवल ये देखना है कि बेसल में यानी कि बुआई से पहले कितनी देनी है,
2: ठीक है,
3: और बुआई के बाद तो कुछ कंपनियां 1 या 2 घन मीटर के छोटे प्लांट जो हैं वो एचटीबी के भी बना रही हैं, यानी कि आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप अपने जो अपना जिला है अधिकारी उनसे संपर्क करें, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपके जिले में कौन कौन सी कंपनी के प्लांट उपलब्ध हैं तो आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पशुओं की संख्या ज्यादा है, बड़ा प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप प्लांट स्वयं बनवा सकते हैं, उसमें भी आप अपने जिले के अधिकारियों के संपर्क कर सकते हैं या अथवा किसी अन्य तकनीकी आदमी से संपर्क करके आप अपना प्लांट बनवा सकते हैं। लेकिन जो प्लांट बनवाएंगे उसकी लाइफ भी ज्यादा है, लागत कम होगी और वो आपकी आवश्यकता के अनुरूप बनेगा
2: जी, जी।
3: तो आप उसको ठीक से हैंडल भी कर पाएंगे और जब बनाएंगे तो आपको जो बनाने वाला है वो आपको सारी बातें बताएगा कि इस प्लांट में कब और कितनी मात्रा में गोबर डालना है, कैसे इसका प्रबंध करना है, तो वो आप जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आज आप एचडीपी का भी प्लांट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, तो उसके लिए जो कंपनी है वो आपको पूरा समझाएगी बताएगी तो वहां से ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि इसके जो प्लांट बनाने वाली कंपनी है वो सभी निजी कंपनियां हैं तो किसी एक कंपनी का नाम लेना यहाँ पे नहीं रहेगा। तो आप अपने जिला अधिकारियों से या अपने उनसे जो कृषि अधिकारी हैं या जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे संपर्क करके उनसे लाभ उठा सकते। तो मैं आप संजय जी को बताना चाहूंगा कि आपके अपने जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, क्योंकि आज हमारे जितने भी जिले हैं सभी में 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध है। तो जो भी कृषि विज्ञान केंद्र आपके नजदीक संपर्क में हो, नजदीक से नजदीक हो, आप उससे संपर्क कर सकते हैं या आप अपने जिला के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं या जिला के विकास विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इन सब जगह से आपको जानकारी मिल जाएगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा से भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो आप कहीं से भी जानकारी लें और आप प्लांट अवश्य लगाएं क्योंकि प्लांट आपके लिए काफी हितकर होगा, आपके लाभदायक होगा। और ये एक ऐसी तकनीक है जो वातावरण हितैषी तकनीकी है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, जिसका हमें बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। और आज सुन रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन क्रेडिट कमाने में भी इस तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है अगर हम इसका सही लाभ उठाना चाहें तो।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
4: तो बांस में कर सकते हैं, उसमें अलग अलग प्रजातियों का चुनाव करना पड़ता है। अगर उनका इलाका जो है 1000 मीटर की ऊपर की ऊंचाई का है तो उसके लिए पतले टाइप की जो बांस होती है वो होता है। और एक बांस अभी जो होता है वो थोड़े से मंडी में नीचे इलाके में 1000 या 1200 मीटर की ऊंचाई पे वहां पे मगर के नाम से प्रचलित बांस है, मोटा बांस है
2: जी।
4: और हो जाता है वो बर्फ भी सह लेने की क्षमता होती है, बहुत ही उम्दा किस्म का बांस है। साइंटिफिक नेम डेंडोकलैमस होमदेवाई बोलती है। हाल के दिनों में एक भूटान बांस के नाम से प्रसिद्ध है, डेंड्रोकैलामस सिक्किमियेंसिस, जो बहुत ही अच्छा बांस है फर्नीचर बनाने के लिए। वहां दो तीन मोटे बांस की और एक बैम्बूसा न्यूटक्स, तीन जातियों की खेती हो सकती है।
2: बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि बांस की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
4: बांस की अच्छी पैदावार करने के लिए किसानों को सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि आप सबसे सही समय पे इसको लगाएं। बरसात का जो मौसम है बांस लगाने का उपयुक्त समय होता है, और सबसे अच्छे पौधों को चुनाव करें, क्योंकि बांस में पहचानना बहुत ही मुश्किल बात है। अगर आप छोटी सीडलिंग देंगे तो इवन हमारे जैसे वैज्ञानिक ही धोखा खा जाते हैं। तो हमेशा ही उचित और बढ़िया जगह से, जो रिलायबल जगह होती है, या किसी वैज्ञानिक से संपर्क करके कि आप बांस का पौधा खरीदें या बांस के पौधे की बात जानकारी। FRI में ये पौधा बांस के बहुत सारी 16 से ज्यादा प्रजाति उपलब्ध है और किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक तो पहले प्रजाति का चुनाव है, दूसरा कहते हैं गड्ढा इसका 2x2x2 फीट, उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांस जो है सरफेस फीडर ही होता है। इसकी जड़ बहुत गहरी नहीं जाती लेकिन फैलती है, तो अगर शुरू में इसको बहुत अच्छा मिले तो तीसरे साल से ही बांस बहुत ही अच्छी मोटे किस्म का बांस निकलना शुरू हो जाता है, जिसको आप चौथे साल के एंड में या पांचवें साल के एंड में काट सकते अलग अलग उपयोग के लिए।
2: जी बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, इसके साथ ही हमें ये बताएं कि जो बांस है उनके अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए पोषक तत्व का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, रोग व कीट का खतरा जो है वो कितना हो सकता है बांस के खेतों में?
4: जी हाँ, पोषक तत्व का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से इसमें जरूरी है। अगर कोई जैविक माध्यम से और जो हम नॉर्मल किसान रासायनिक खाद के साथ करते हैं, दोनों ही बताते हैं। बांस के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि गड्ढा एकदम समय पे बना लें, गर्मियों में बना लें तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बरसात में बना लें। साइज वही 2x2 फीट के गड्ढा बनाएं, और हर गड्ढे में आधा बाल्टी गोबर, गोबर मतलब कंपोस्ट की खाद डालें, और 100 ग्राम खली डालें, और 25 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम DAP, अगर DAP नहीं है, सिंगल सुपर फास्फेट है तो भी लगभग 120 ग्राम के आसपास डालें, और 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। बांस को पोटास की जरूरत बहुत ज्यादा होती है
2: जी।
4: ये पहले साल के लगाने के समय में ही डालें, फिर अगले साल के जो मौसम आएगा आपका, जब बारिशें होती हैं थोड़ी सी फरवरी वाले में, तो फिर बांस में एक निराई गुराई करके उसमें आप कम से कम किलो भर जो हम केचुआ खाद बोलते हैं, और 100 ग्राम के आसपास खली, और 25 ग्राम यूरिया, ये तीन को मिक्स करके उसके चारों तरफ डाल दें। फिर यही चीज अगले बरसात में जो है, यानी हम 25 ग्राम यूरिया बोलते हैं बांस में खाद, हम नाइट्रोजन कम डालते हैं, और आधा बाल्टी जो कंपोस्ट खाद है, और 100 ग्राम खली, और 100 ग्राम DAP या 120 ग्राम SSP, और 125 से लेके 150 ग्राम तक म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। एक्चुअली बहता हुआ जो नाला होता है, बांस में पानी रुकना नहीं चाहिए, पर बहता हुआ पानी बांस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैरायटी आपको हमने देखा है 6-7 वैरायटी बहुत अच्छा कर रहा है। आप अभी लगाइए बैम्बूसा टुल्डा और बैम्बूसा पॉलीमार्फा पंजाब में इसका, क्योंकि ये फर्नीचर के लिए और स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ मात्रा में बैम्बूसा बालखोआ लगाएं, हम अभी पंजाब में 3-4 किसानों को लगवा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा ग्रोथ उसका आ रहा है
2: जी।
4: तो आप तीन वैरायटी जो हमारे FRI में अवेलेबल है और भरोसेमंद भी है, मतलब हमने इसको अच्छे से सेलेक्ट करके इसकी अच्छी नर्सरी जी। बांस में आपको एक समस्या बताता हूँ कि बांस आपको पानी बहुत चाहिए, लेकिन 15 दिन से ज्यादा अगर पानी रुकता है तो बांस का ग्रोथ कम हो जाता है, क्योंकि बांस की जो जड़ें हैं वो जमीन के बहुत गहरी नहीं जाती। तो उसके क्रम में हम ये कहते हैं कि जहां जहां जल भराव है उसके मेड़ पे, मतलब जो बांध जैसा है
2: जी,
4: वो लगाएं, या फिर कई जगह हम लोग बोलते हैं कि JCV से बांध बना दें, जिससे कि बांस की कुछ जड़ें ऊपर की तरफ हो और वो सांस ले सके।
2: तो
4: अगर वो 2 से 3 महीने पानी वहां रुकता है तब हम उसको कहते हैं कि वहां बांस लगा, मरेगा तो नहीं लेकिन उसके उत्पादन में बहुत कमी आ जाए।
2: जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर ठाकुर, बताएं हमें कि रोग और कीट का प्रकोप कैसा हो सकता है बांस के खेतों में, जिसके लिए किसानों को सचेत रहना चाहिए?
4: जी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर बांस के पत्तों को देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत होता है। बांस सिलिका से भरा होता है और इस सिलिका से भरे होने के कारण इसके प्रमुख रूप से बहुत ही कम जिंदा बांस में बहुत ही कम कीट और बहुत ही कम रोग आते हैं।
2: जी
4: जो भी इसमें रोग आता है वो सेकेंडरी होता है, मतलब कोई उसमें डैमेज हो गया तो वो बाद में आता है। तो अगर कोई प्रचलित अभी हमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है लेकिन हाँ जब खेती बाड़ी में इसका प्रचलन बढ़ेगा तो कुछ नए तरह के रोग आ सकते हैं। नॉर्मली हम दो चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, चूंकि आपने कहा था तो हम जब शुरुआत में लगाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कवकनाशी कोई ना कोई लगा दें। हम सबसे जो हमारी प्रेफरेंस है वो है कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम पेवेस्टीन या बहुत सारे नामों से मार्केट में आता है। इसको हम लोग कहते हैं कि जब हम 2 ग्राम प्रति इसको, तो चूंकि पाउडर फॉर्म में अगर होता है, अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो उतना ml प्रति लीटर के दर से करीब 5 लीटर का बना के, यानी 10 ml प्रति लीटर का बना के हम एक गड्ढे में डालते हैं और ये पहले साल में बस
2: जी।
4: और दूसरा इसमें होता है दीमक का प्रकोप, क्योंकि बांस ये वुडी है, टिम्बर है, उसमें लकड़ी होती है तो दीमक का हो सकता है। तो जो भी दीमक के लिए हमारे साधारण प्रतिरोध इस्तेमाल किया जाता है
2: तो उसका जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर ठाकुर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है बांस की खेती के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: खाते हैं और चलते चलते बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर डबास आपसे जानना चाहेंगे बायोगैस प्लांट के स्लरी के बारे में, अगर आप देना चाहें।
3: मैं अपने सभी किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जो बायोगैस स्लरी 2 समय इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो फसल बोने से पहले जिसको हम बेसल कहेंगे, तो जितनी भी आपको स्लरी प्रयोग करनी है उसका लगभग आधा भाग बेसल में आप प्रयोग कर लेंगे, यानी कि जो पलेवा करेंगे उसके अंदर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो भी स्लरी देनी है वो आपको प्लांट की ग्रोथ के आधार पर देनी है, यानी कि प्लांट जो पौधे का अगर 120 दिन की फसल है तो पहले 60 दिन तक की फसल देनी है, खाद देना है, 60 दिन के बाद खाद नहीं देना है। और यही टाइम होता है जिसमें पौधे को खाद की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसे गेहूं है, गेहूं में पहली 3 सिंचाई पे आप इसका खाद दे सकते हैं। धान में लगभग 50-60 दिन की जब तक फसल होती है जब तक इस खाद को पानी के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन जो बड़ी मात्रा है वो बोने से पहले देनी है, जिससे कि जैसे हम फसल लगाएं तो उसको सही मात्रा में पोषक तत्व मिल जाए। और जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे फसल का जमाव भी अच्छा होता है और साथ साथ में उसका दूसरा लाभ ये होता है कि पौधा शुरू में जब स्वस्थ होगा तो उसमें किसी प्रकार की बीमारी और कीट का प्रकोप नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। किसान भाईओ आप ये लगातार खेतीवाड़ीना इना कार्यक्रम में खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने जानियो है, आप ये जानियो है कि कम जो जैविक खेती है और गोबर गैस है तो अपना गोबर गैस अपन की कम बनावी सकिए और इनमें कई ना प्रकार ना गोबर गैस है और यह की कम तरीके थी आपड़ी हरू फायदेमंद हो सके। केम के किसान भाई आप जानिए है कि लकड़ी हमने मलवी थोड़ी सी मुश्किल है अने अलग अलग प्रकार ना जो बायोगैस है इनमें आप कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफो ले सकें। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं ये भी एक बढ़िया मौको है हमारे किसान भाइयों और कि इन उपयोग करिए, जैसे गोबर है गोबर नो आप गैस में तीनों उपयोग कर जो खातर है ते बनवानी जो प्रक्रिया है ते भी थोड़ी सी फास्ट थी जाए इन्हीं द्वारा। तो किसान भाइयों आप करी सकिए और इना जो गोबर नकल है इना गोबर थी अगर आप केचुआ खाद बनावा मांगी तो भी तीनी जो गति है तीनमा भी बढ़ावो मळे से। तो किसान भाइयों आजना इना कार्यक्रम में आप घनी खेतीबाड़ी बारे में जाणियो समय पर भी आप खेतीवाड़ी से जोड़ेली हजू भी महत्वपूर्ण बातों ने लेने चर्चा करिए, लेकिन आजना इना कार्यक्रम में बस एतरूस आप फिर काल मुलाकात था है इना समय पर इतने बनेला रहो हमारी हाथे रेडियो टांडिया भील 90.8 FM नी हाथे झाबुआ नी आवाज पर।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आपका स्वागत करती हूं एक और जिंदगी अनप्लग्ड के स्पेशल प्रोग्राम में, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। आज की कहानी एक सीधे रास्ते की कहानी नहीं है, यह है मुंबई से बैंगलोर का सफर। एडवर्टाइजिंग की क्रिएटिव दुनिया, एक माँ के रूप में जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान, और फिर वही एक्सपीरियंस जो उन्हें रेकी, एनर्जी हीलिंग, NLP और सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ ले गया। सारा अबूवाला की जर्नी हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है, कभी कभी जिंदगी में कोई मोड़ हमारी मर्जी से नहीं आता, लेकिन वही मोड़ हमें अपने बारे में कुछ ऐसा सिखा देता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। उनकी बेटी की इलनेस के दौरान फैमिली और फ्रेंड्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट ने उन्हें ह्यूमन काइंडनेस और रिलेशनशिप्स की डेप्थ को एक नए नजरिए से देखना सिखाया, और इसी जर्नी को उन्होंने अपनी किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन गोनोरी में दर्ज किया है। आज हम बात करेंगे हीलिंग की, एनर्जी की, माइंड पैटर्न्स की, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स की, और उन सवालों की जो कभी कभी जिंदगी हमसे खुद पूछती है। तो सारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड के एक और नए सेगमेंट में। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम आप SNR पे आके?
1: पॉडकास्ट के रूप में मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, थोड़ी नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। मुझे तो मतलब ये पॉडकास्ट के बाद मुझे खुद सुनना है कि हाउ डिड इट कम आउट, ऑल्सो मुझे रिएक्शंस भी, मुझे यू नो हाउ डिड पीपल टेक इट, सो लेट्स सी हाउ द पॉडकास्ट गोज। एंड यस, आई एम एक्साइटेड प्लस नर्वस, मिक्स्ड फीलिंग है।
2: We share the same feeling, मैम। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस थोड़ी कम हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ क्वेश्चन पूछने, जवाब तो आप ही को देने और आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है। जी, आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, आप गाते भी हैं, तो आई एम श्योर द प्रोग्राम विल कम आउट वेरी वेल। मुझे जिंगलिंग आवाजें बहुत पहले समझ आ जाती हैं, मुझे पता होता है कि आज का शो अच्छा जाने वाला है। विद सो मच रिचनेस टू योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, आई एम श्योर विल डू वेल। एंड SN रेडियो इज वेरी एक्साइटेड आपको आज की जिंदगी अनप्लग्ड में होस्ट करने के लिए। शुरू करते हैं शुरुआत से ही। आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जैसे मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा आपके बारे में, पर्सनल भी, करियर वाइज भी, हर इंसान की लाइफ में होते हैं, बट कुछ लोगों को थोड़ा भगवान चोजन वन समझता है और थोड़े ज्यादा यू नो ब्रिक बैट्स देता है। तो आप, अगर मैं पूछूं कि आप अपने जीवन को अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो इस सब उतार चढ़ाव के बारे में क्या महसूस करते हैं? आज आप कैसा, आर यू हैप्पी, डू यू फील नाइस, हाउ डू यू फील टूडे एज सारा अबूवाला?
1: ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं है ना तो अपने आप को बहुत ही लकी, नसीब वाली महसूस करती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि मैंने अपने साल बहुत गंवा दिए, बहुत कुछ सीखने में, और आई एम 53 की उम्र में मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहाँ पर अभी हूँ नहीं। मे बी मेरे चॉइसेस, मेरे डिसीशंस, और जो भी आपने अभी कहा उतार चढ़ाव, तो वो हिसाब से मतलब मैं समझती हूँ कि यू नो आई कुड हैव बीन मोर एस्टैब्लिश्ड, जो मैं अभी हूँ नहीं फिलहाल. लेकिन आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि जो भी मुझे उतार चढ़ाव आए, आई हैव मेट वंडरफुल पीपल. मुझे उसके बारे में कोई रिग्रेट्स नहीं है कि मुझे ऐसे आदमी मिले, मेरा घर का माहौल ठीक नहीं था वगैरह वगैरह. तो डिस्पाइट दैट यू नो मुझे मुझे जो भी सेटबैक्स आए, मेरे आजू बाजू लोग थे जिसके कारण मैं खड़ी रह सकी और मुझे उन्होंने सपोर्ट किया. तो सारा अबू वाला अभी लिम्फैटिक ड्रेनेज थेरेपिस्ट है और मैं पास्ट ट्रॉमा एक्सपर्ट भी हूँ. लेकिन फिलहाल मैं समझती हूँ कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है. आई एम फीलिंग वेरी प्राउड. और देखिए मैं आपके पॉडकास्ट पर हूँ.
2: सी कैसे लाइफ हमें किस तरह से घुमाती है, फिराती है, उठाती है, पटकती है और फिर एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर देती है जहाँ से दुनिया आपको सुनती है और इंस्पायर होती है. ब्यूटिफुल. तो 2015 की बात अगर हम करें, बहुत ही एक ट्रॉमेटिक फेज था. आपकी डॉटर को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ और इस इलनेस के दौरान आपकी लाइफ में बहुत कुछ एक साथ बदल रहा था नेचुरली ऑफकोर्स. तो आपने उस वक्त क्या एक्सपीरियंस किया और उस फेज से बाहर आने के बाद आपको अपनी लाइफ और लोगों को देखने का नजरिया किस तरह से बदला? हाउ डिड यू चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स पीपल एंड लाइफ?
1: तो मैंने जैसे पहले कहा तनुषा कि आई हैव बीन सराउंडेड बाय विथ ब्यूटिफुल पीपल. तो ये एहसास मुझे आया ओनली आफ्टर माय डॉटर्स सिकनेस. तो मेरी बेटी सिर्फ 6 साल की थी जब ये हुआ. एंड 2015 में जो मैं मेरे लिए यू नो इट वाज अ पाइवोटल पॉइंट कि यू नो सारा चेंज व्हाट शी वाज. वो क्रिएटिव हेड थी एक एड एजेंसी में. और फिर मैं उसी दौरान जब मुझे ये पता चला कि मेरे बेबी को ये है, तभी मैं सोच रही थी कि आई वॉन्ट टू लीव माई कॉर्पोरेट लाइफ और मुझे मेरा खुद का करना है. जो एक चॉकलेट बिजनेस मुझे शुरू करना था. आई यूज टू मेक वेरी गुड चॉकलेट, मतलब मैं अभी भी बनाती हूँ. तो मैं सोची कि चलो जो भी है, आई वॉन्ट टू लीव ऑल दैट बिहाइंड माई कॉर्पोरेट लाइफ एंड वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग. बिकॉज मैं कॉर्पोरेट में यही एक ही चीज कर रही थी तकरीबन मोर देन अ डेकेड. आई फेल दैट नाउ आई रीच अ सैचुरेशन पॉइंट और मुझे अभी अपना करना था. एंड आई द ओनली स्किल और मेरा जो इंटरेस्ट था चॉकलेट में था. तो मैंने सोचा और ये करने का सोचा और गॉड हैज हैड इट यू नो ओन थिंग फॉर मी प्लान. मुझे पता चला कि इन फेब्रुवरी आई यू नो माय डॉटर हैज गॉट ब्लड कैंसर. तो तभी तो माय लाइफ वाज शैटर्ड. माय हस्बैंड एंड आई वर लाइक क्या करें. वो AML अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, वो हमको वो टर्मिनोलॉजी ही समझ में नहीं आई. हालांकि डॉक्टर्स ने हमको भी समझाया कि ये होता है. तो उस टाइम पर तो यू नो वी डिडंट हैव दिस इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल भी नहीं था मेरे पास. तो ये सब समझने में बहुत ही टाइम लगा मुझे. और लेकिन एक और बात क्या हुई कि वी वर लाइक वेरी ब्लेस्ड कि मुझे बहुत कुछ सहना नहीं पड़ा. ना तो मेरी माय डॉटर वाज डूइंग वेरी वेल थ्रू आउट द थिंग. वो इतने खुश खुश रहती थी. शी वाज नॉट थ्रोइंग टेंट्रम्स. मुझे ब्लड डोनर्स इतने अच्छे मिले कि यू नो मैं आपको क्या बताऊं. मतलब वो एक फेज था. मतलब किसी पेरेंट को इस तरह से ना झेलना पड़े. लेकिन मेरे को भी जो झेलना पड़ा ना, तो इट वॉज लाइक समबड़ी ऊपर से कोई मेरा हमेशा साथ दे रहा था. कि मुझे उतना ट्रॉमेटाइज फील नहीं हो रहा था बिस्साइड के डॉक्टर्स ऐसे मिल रहे हैं या तो नर्सेस ऐसे हैं कि यू नो हर जगह से मुसीबत मुसीबत मुसीबत. हालांकि ये एक चीज थी कि मेरी बेटी हॉस्पिटल के बेड पर है. ट्रांसफ्यूजन उसको मिल रहा है. लेकिन एक तरफ से पूरी सब चीजें जो हो रही थी, दैट वाज वेरी वेरी फ्रेंडली यू नो टू मी.
2: वाओ.
1: सो हाँ. और तुम आपने मुझे पूछा कि मेरा नजरिया, तो इसी वजह से मेरा नजरिया बदला. क्योंकि चलो बाहर वाले तो कभी कभी बोलते हैं ना कि अपनों से ज्यादा बाहर वाले यू नो मदद करते हैं. लेकिन मेरे केस में मेरे केस में मुझे मेरे अपनों ने ही सबसे ज्यादा मदद की. देयर आर फार एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब ना ही मेरी फैमिली बल्कि मेरे हस्बैंड की भी फैमिली, जो फ्रेंड्स जो अफ्रीका में हैं, उन्होंने इतनी सारी मदद की. मतलब यू वोंट बिलीव किस किस तरह से. लाइक एक तो एकदम अननोन लेडी, मुझे अभी पता भी नहीं, याद भी नहीं आ रहा है कि उनको मेरा कॉन्टेक्ट कैसे मिला. शी वॉज इन सिंगापुर और उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि यू आर लुकिंग फॉर यू नो, मतलब आपकी बेटी को ऐसा हुआ है और मुझे पता चला कि यू आर इन नीड ऑफ मनी, तो यू नो वी विल डू वट एवर वी कैन. और उन्होंने अपने फर्स्ट बच्चे की बर्थडे में उन्होंने जो उनको उन्होंने बोला कि हमारा मतलब गिफ्ट लेकर मत आइएगा, देयर इज आई वी वांट टू डोनेट फॉर अजब, माय डॉटर्स नेम इज अजब, जो इंडिया में है, तो आप जेनरसली डोनेट करिए और ये फंड उसको जाएगा हु इज बैटलिंग विद कैंसर.
2: क्या बात है, क्या बात है. हर नेम इज अदब,
1: अजब, ए जे ए बी.
2: वाओ, ब्यूटीफुल.
1: शी इज नाउ माशाल्लाह शी इज 17 इयर्स ओल्ड,
2: ब्यूटीफुल,
1: सेकंड पीयू, हेल्दी एंड प्रिटी एंड लाइवली.
2: Oh, I would love to have a picture and maybe if at all when we have the airing, तब हम शेयर कर सकते हैं. हम अजब को बहुत सारी गुड विशेस भेज रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं फॉर अ हेल्दी हैप्पी लाइफ, क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं तो शी इज हेल्दी एंड शी इज हैप्पी एंड उससे बड़ी कोई बात नहीं है. और जैसे मैम आपने बताया कि जो टफ टाइम्स होते हैं उसमें, जैसे मैंने भी कहा कि भाई जो चोजन वंस होते हैं उनको थोड़े ब्रेक बैक जरूर ज्यादा होते हैं, बट भगवान ये इंश्योर करते हैं कि ही कैरीज अस. लिटरली ऐसा फील होता है कि ही इज कैरिंग अस इन हिज टू आर्म्स, कि चलो मैं हूं साथ में. तो इस उसी तरह का आपने फिर से मेरा ये जो बिलीफ है भगवान पे, ये फेथ है, ये फिर से रीइन्फोर्स किया कि भगवान सच में हमें कैरी करता है इन डिफिकल्ट टाइम्स. वेरी ब्यूटिफुली शेयर्ड मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि आपने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन गॉन ऑरी इस पे एक बुक लिखी है, बहुत ही सुंदर बुक आपने लिखी है. ऐसा क्या था मैम जो आपको लगा कि आपके इस एक्सपीरियंस को आपको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है? आई एम श्योर इतने सारे जब आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे तो उस टाइम आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट इन हाइंडसाइट वो कौन सा पल था व्हेन यू डिसाइडेड टू डॉक्यूमेंट इट इनटू अ बुक? एंड सेकेंडली मेरा सवाल ये है आपसे, जब आज आप उस बुक को यू नो कोई भी पढ़े, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ूं या हमारे लिसनर्स पढ़ें, तो आप क्या चाहते हैं कि व्हाट शुड दे टेक होम बी फ्रॉम योर एंड फ्रॉम द बुक?
1: ओके, सो दो क्वेश्चन है ना इसमें. तो पहला तो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन गॉन ऑरी, मैंने ये मतलब मैंने हमें मतलब ये जो फेज हुआ, माय डॉटर गॉट वेल एंड ऑल दैट, आई केप थिंकिंग कि ये क्या था. यू नो एवरीबॉडी सेड कि मतलब मेरे जो भी मेरे साथ खड़े थे माय रिलेटिव्स, तो मेरे रिलेटिव्स में अगर बोलती हूँ ना तो मेरे रिलेटिव्स मतलब मेरे इमीडिएट भाई बहन नहीं, ठीक है, मेरी भाभी, मेरे चाचा की बेटियां एंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली थी उन्होंने इतना मेरे को सपोर्ट किया. हालांकि मुझे मेरा तो दो भाई है ऑफकोर्स, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है. और मेरे जो मतलब जो मेरी भाभियां और जो थी वो लोग ने उतना मेरे मेरे साथ यू नो कंधे से कंधे मिलाकर वो खड़ी थी.
2: वाओ, वो बहुत
1: और फिर उनके फैमिलीज
2: वैसा
1: हाँ बहुत रेयर होता है. यस यस यस यस. और फिर तो मैंने जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन गॉन ऑरी, मैंने इतना सब मिरेक्युलस, इतना सब अजीब अजीब था, हैप्पी हैप्पी था कि मुझे मैंने लगा कि मैं थोड़े साल बाद शायद मैं कुछ कुछ भूल जाऊंगी. और मुझे एक्सपीरियंस याद रखना था, मुझे याद रखना था कि ये सब क्या हुआ. एवरीथिंग वॉज सो मिरेक्युलस अबाउट माई डॉटर्स रिकवरी. तो जो जो मैंने ये मुझे मुझे लिखना था, जैसे मैंने अभी आपको सिंगापुर यू नो की एक मैंने बताया, वैसे ही कितने सारे हैं जो मतलब इधर उधर से हमको आते ही गए आते ही गए. मुझे तो उतना मेरे मेरे हस्बैंड को किस तरह से अफ्रीका से आए उतना तो मुझे मालूम नहीं है. लेकिन इमेजिन वी हैड ओनली 2 lakhs of insurance for us. वो भी family insurance था, ठीक है. And I'm talking about 35 lakhs जो मुझे सिर्फ donations में मुझे आए हैं. मेरा मुंह खोले बिना
2: बताइए,
1: मेरा मैंने मैंने मांगा ही नहीं.
2: Yes.
1: 35 lakhs और उसके बाद भी नहीं, 30 lakhs और उसके बाद भी जो मुझे जो पैसे आए यू नो माई रिलेटिव ओन बी गेव पोस्ट दैट के ये पैसे जो हमने जमा किए थे तो विच वॉज अराउंड 6 लैक्स या तो 6.5 था आई एम नॉट श्योर. तो हमने बोला कि वो ट्रीटमेंट के बाद आया. तो मैंने बोला कि अभी ट्रीटमेंट यू नो हो गई है मासी मेरी मासी यहाँ. तो अभी यू नो तो उन्होंने बोला कि वी नो योर सिचुएशन, आप लोग काम तो अभी आपका जॉब और कुछ भी नहीं है, यू विल नीड इट. तो तभी मेरा हाउस लोन था. सो मैंने पूछा, आई रिक्वेस्टेड कि सी आफ्टर ट्रीटमेंट एवरीथिंग इज डन, मतलब थोड़ा बहुत तो मतलब था जो हमने सेव किया था जो भी हमको लोन आया ना. लेकिन ये 6 लाख अभी हमने बोला कि सी दिस विल हेल्प मी क्लियर माय लोन. तो उन्होंने विलिंगली वो अग्री कर दिया. दे सेड दैट या यू कैन यूज इट, दिस इज योर्स, वी हैव अरेंज्ड इट फॉर यू ओनली, सो यू डू व्हाटएवर यू वांट एंड बेस्ट थिंग इज के लोन में से निकल जाओ तो यू नो वो नहीं रहेगा. तो मतलब ये सब तो मिरेकल ही है ना, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से. और मैं आपको बताऊं कि मतलब ये भी मैंने मेरे बुक में मैंने सब नोट किया है कि कुछ कुछ ऐसा कुछ कुछ हॉस्पिटल की तरफ से जो हमको यू नो एवरीथिंग कैन नॉट बी वेरी रोजी, मैं वो भी आपको बोल देती हूँ. लेकिन उतना भी नहीं था कि मैं बहुत कंप्लेन करूँ. लेकिन ये सब एक एक्सपीरियंस था जो मुझे लिखना था. तो ब्लड टेस्ट यू नो देयर वाज दिस, आपके लिए भी शायद यहाँ पर जो भी सुनते होंगे उनके लिए भी इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल कि ब्लड शुरू में जब मेरी डॉटर हॉस्पिटलाइज हुई तो उसको ब्लड लेना था, अरे ट्रांसफ्यूजन करवाना था ना. तो डॉक्टर हमारा मतलब ब्लड उन्होंने किया कि उनको ब्लड देना पड़ेगा. तो मैंने बोला ठीक है. एंड दे गिव अ डॉक्यूमेंट टू साइन. तो मैं साइन ही कर रही थी कि मेरी भाभी खड़ी थी मेरे बाजू में और उन्होंने बोला कि आप पहले पढ़ लो. तो मैं अभी तो एक दो दिन ही हुए थे, आई वॉज ऑल लॉस्ट, क्या करूँ क्या नहीं. तो मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर जान भी चली जाती है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. मैं वो देखकर मैंने बोला कि वाई यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप मुझे ब्लड दे रहे हो भाई, तो हाउ कैन यू से यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. तो वो बोलते हैं कि सी दिस इज द क्लॉज, डॉक्टर वेरी एरोगेंटली ही टोल्ड मी कि दिस इज द क्लॉज, दिस इज हाउ द हॉस्पिटल फंक्शन. आई वॉन्टेड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिम कि ऐसा क्यों, आप देते हो ना, हम देते तो आप ऐसा मुझे क्लॉज दो. आप ब्लड दे रहे हो, आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर मेरी बेटी को कुछ होता है तो व्हाई विल यू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज टेल मी.
2: करेक्ट.
1: तो ये था. एंड देन ही टोल्ड मी कि सी इफ यू आर सो पर्टिकुलर अबाउट दिस देन यू कैन गो फॉर अ नैक टेस्टेड ब्लड. मैं बोली अभी ये क्या है, एक और नया टर्मिनोलॉजी, नैक टेस्टेड ब्लड क्या होता है. तो ही सेड कि नैक टेस्टेड ब्लड इज डबल श्योर अथॉरिटी की वो ब्लड ज्यादा प्योर है, मतलब उसमें कोई डिसीज वगैरह नहीं है. वो लिया जाता है एकदम एक हफ्ते पहले या कुछ, उन्होंने ऐसा बोला. एंड दैट इज टेस्टेड सो दैट यू नो इफ एनीबडी हैज गिवन, जो डोनर्स होते हैं ना, तो उनको कुछ भी वो लोग ने अगर कुछ किया है तो ये एक हफ्ते का ब्लड विच विल बी वेरी न्यू, तो उनमें डिसीजेस वगैरह जल्दी मतलब वी विल कम टू नो जो पहले के जो ब्लड है वगैरह यू नो. मैं बोली ऐसा भी होता है,
2: मोर प्योर ब्लड.
1: तो हाँ, बहुत क्लीन ब्लड, उसका विंडो उतना ही होता है. एंड दे हैव टू कम ट्वाइस इट सीम्स टू गेट द टू गिव द ब्लड. ऐसा कुछ यू नो उसमें है नैट टेस्टेड ब्लड में कंपेयर टू द ऑर्डिनरी ब्लड. तो मैंने आई सेड कि नो आई विल गो फॉर नैट टेस्टेड ब्लड. ही सेड दैट नैट टेस्टेड ब्लड इज विल बी लिटिल यू नो एंड इट यू विल हैव टू गेट इट, वी डोंट कीप इन द हॉस्पिटल, आपको बाहर से लाना पड़ेगा. तो मैं बोली मैं लाऊंगी. Then immediately he said that I'll give you some, he said 24 hours bola, kya bola usne, he said ke I'll give you this much time by the time you arrange for the blood. So I started my thing, maine jaldi jaldi post kiya, sab dekha kaun se centers hai aur kaun mujhe aisa blood dega jis tarah se matlab unhone jo NAT tested blood ki requirement hai, where the person has to come first, he has to come give the blood for testing. And then when everything is good, then he has to come back again. So, फिर मैंने पूछा, मतलब जो भी मैंने ग्रुप्स था तभी मैंने यू नो क्या था ग्रुप्स मेरे पास फोर्स आई डोंट रियली रिमेम्बर आई एम सो सॉरी, लेकिन मतलब मुझे कुछ दो तीन लोग मिले जिसको मैंने बात किया और उनको मैंने समझाया कि इस तरह से है एंड दे रेडिली अग्रीड विदाउट इवन अ सेकेंड थॉट कि नो नो इट्स ओके वी विल कम.
3: जस्ट इमेजिन.
1: सो या एंड देन मुझे ब्लड मतलब थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आई जस्ट नीडेड 4 to 5 times एंड ऑल द 4 to 5 times डिफरेंट पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड ऑल ऑफ देन यू नो गेव नैट टेस्टेड ब्लड वेयर दे वर विलिंग टू कम ट्वाइस और इन और मुझे कुछ भी ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा कि किसी ने ना बोला हो या कुछ ऐसा कुछ मुझे बोला हो. ऑल अननोन स्ट्रेंज ऑल स्ट्रेंजर्स
3: इमेजिन ऑल मैसेंजर्स ऑफ गॉड आई थिंक यस
1: एग्जैक्टली. तो ये तो बहुत बनता है ना कि मैं ये सब कैप्चर करूं. देखिए अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ कितना कितना चीज मैं भूल गई हूँ बट माई बुक हैज एवरीथिंग यू नो आई हैव रिटन वो मेमोरीज इतनी फ्रेश
3: क्रोनोलॉजिकली
1: मैंने सोचा कि इसको मैं
3: yes. Yes,
1: I have documented that.
3: Which year did you write
1: I think I wrote after 1 year of this. So 2017 में मैंने शुरू किया.
3: हाँ जी.
1: फिर मैंने यू नो आई थिंक वो सब मैंने ही पूरा अमेजोन के ऊपर अपलोड किया. इट विल बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन ऑरी बाय सारा अबूवाला.
3: इसको
1: पढ़ना है तो प्लीज पढ़िए. तो इट इज अ लाइक उतना कुछ धासू यू नो लिटरेचर वाइज इट इज नॉट दैट. इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल बुक रिटन बाय अ मॉम कैप्चरिंग यू नो ऑल दैट हैपेंड शी वी वेंट थ्रू एंड बट द थिंग इज द बुक ओनली टॉक्स मोस्टली अबाउट पॉजिटिविटी. और फिर मैंने पीछे जो मैंने ट्विस्ट लाया है
3: गॉन ऑरी वाला
1: बारे में बात गॉन ऑरी वाला कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन गॉन ऑरी क्यों तो वो फिर बात करेंगे लेटर इन द पॉडकास्ट.
3: बिल्कुल बिल्कुल करेंगे. और मैं चाहूंगी कि मेरे लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं प्लीज गो हिट द अमेज़न लिंक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन गॉन ऑरी बाय सारा अबूवाला. आई वुड लव टू रीड दिस बुक. और यही मैं हमारे श्रोताओं से बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन गॉन ऑरी बाय सारा अबूवाला इसको पढ़ें. ये अमेजोन पे अवेलेबल है. ये एक शॉर्ट रीड है और बहुत रिच इन एक्सपीरियंस है. एक मदर की एक्सपीरियंस है स्ट्रेट फ्रॉम अ मदर्स एक्सपीरियंस एंड हार्ट जो इन्होंने महसूस किया सब कुछ. तो इसे पढ़ें और थोड़ी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में और ऐड करें. इसी से मैम मेरा एक और सवाल है आपसे कि जब आपने बताया मुझे अपने प्रोफाइल में आपने शेयर किया कि आपकी कजन थी जिन्होंने आपसे कहा कि क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है ये जो सब हो रहा है कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको टैप कर रहा है फॉर समथिंग एल्स डू यू आर यू लिसनिंग टू इट. तो उस सवाल का आपके ऊपर क्या असर हुआ और उसके बाद जो आपकी रेकी और एनएलपी को एक्सप्लोर करने की जर्नी शुरू हुई वो किस तरह से शुरू हुई उसने आपको कैसे बदला.
1: हाँ बहुत अच्छा सवाल. मतलब मैं बोलूं कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन रेकी एनर्जी ये मैंने इसके पहले कुछ सुना ही नहीं था. रेकी सुना था लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सुना था वो सीक्रेट लेकिन मैंने ना तो सीक्रेट मूवी देखी थी ना तो मैंने मतलब ये एनर्जी तो क्या है तो वो तो मुझे मालूम ही नहीं था यू नो. सो इसके मतलब बट माय कजिन शी वाज डूइंग ऑल दिस मतलब उसको सब पता था लेकिन मैं मेरे कजिन से कनेक्टेड ही नहीं थी. वो मैं हम लोग रिकनेक्ट हुए बिकॉज ऑफ माई डॉटर्स इलनेस तो वो आई. तो देखिए मेरे डॉटर ने हम बिछड़ों को भी मिला दिया यू नो इट्स लाइक दैट. वी वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स मेरी कजिन और मैं लेकिन इस एपिसोड में उसको ही पता नहीं वो ही एकदम आई एंड देन यू नो वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड ऑल दैट. आई वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर हर. और ये लाइन पर जो मैं अभी जो भी कर रही हूँ अ लॉट ऑफ आई गिव हर द क्रेडिट कि उसने मेरे दिमाग में जो डाला वो क्वेश्चंस से या उसके बाद उसने मुझे एनएलपी क्या है करके थोड़ा बहुत समझाया देन आई स्टार्टेड माय जर्नी एक्सप्लोरेशन और मैंने सीखा. तो मैं बात कर रही थी कि ये क्या हो गया आफ्टर माई डॉटर्स रिकवरी बिकॉज एवरीथिंग सीम कोई कोई तो बोलता था कि तू ऐसे ही तुझे भगवान ने डाला और ऐसे ही निकाल दिया. यू नो इट वॉज सो ईजी गोइंग फॉर यू द एंटायर थिंग कि किस तरह से यू नो एज यू वेंट ऑन गेटिंग हेल्प हेल्प हेल्प हेल्प फ्रॉम एवरीबॉडी. तो मैं सोच रही थी कि हाँ मतलब
3: एक प्लान्ड एक वो नहीं होता जैसे अपन एक डोमिनो इफेक्ट देखते हैं कि एक गिरा तो सब आगे गिरते गए तो उसी तरह से रास्ते प्लान होते गए
2: प्रॉब्लम्स आती गई पर रस्ते भी बनते गए और लोग आते गए और कारोबार बनता गया।
1: राइट राइट, यू आर वेरी राइट तनुषा। तो उसने मुझे ये सवाल किया एंड देन आई सेड दैट व्हाट डू यू मीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मगर ये सब क्या, व्हाई आर यू सेइंग। सो शी एक्सप्लेन कि यू सी ना दैट हाउ एवरीथिंग केप्ट ऑन हैपनिंग विदाउट यू मूविंग एनीथिंग। मैं बस वहां पर मेरी बेटी के साथ डटी थी, उसके यहाँ यू नो आई वॉज प्रेइंग डूइंग माई ड्यूटीज। जो बाहर हो रहा था माई हस्बैंड वॉज हैंडलिंग क्या पैसे कहाँ से आए कहाँ से आते गए कहाँ से आते गए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पैसे जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी मेरे इसमें कि यू नो आई विल हैव टू गो थ्रू दिस, और इतने सारे पैसे कैसे आ गए।
2: करेक्ट,
1: यू नो
2: इतने पैसे, यस वॉपिंग अमाउंट, यस
1: वॉपिंग अमाउंट, यस। तो उन्होंने मुझे ये सवाल किया ना, तो मैं बोली कि ये क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो शी सेड कि तुमको शिद्दत थी ना ये, मतलब मेरी बेटी ठीक हो जाए, ठीक है। सो दिस इज लाइक यू कॉल दीज एनर्जीज। शी एक्सप्लेन टू मी, यू नो इट वॉज क्वाइट अ लेंथी एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं आपको बहुत इसमें बता रही हूँ क्योंकि ये सब समझने के लिए ही यू नीड अनदर माइंड सेट। मेरे लिए एवरीथिंग
2: यस
1: Yes. Yes, and for me it was everything was like Greek and Latin, energy क्या है, ये रेकी क्या है, क्या करते हैं रेकी में।
2: बिल्कुल।
1: तो फिर और फिर मेरी जो एक और भाभी है उसने मुझे एक मतलब ऐसे ही अननोनली यू नो एंड माई भाभी इज नोवेयर इवन नाउ शी इज नोवेयर क्लोज टू दिस रेकी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको ये सब समझ में ही नहीं आता। लेकिन उसने उस दिन ऐसी बात वो उसने भी यू नो लाइक पीपल मतलब मुझे एक सिग्नल देते गए कि यू हैव टू गो दिस वे। तो मैंने मेरी बेटी की रिकवरी के बाद ऐसे कुछ बात कर रहे थे तो उसने मुझे बोला कि भाभी व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस हीलिंग एंड ऑल दैट ऑल दिस थेरेपीज एंड यू नो दैट इज देयर यू हैव यू हर्ड अबाउट रेकी। सो शी सेड दैट नो आई मीन यस सॉरी शी सेड यस पर मुझे पता नहीं है कि क्या है वो। लेकिन व्हाट शी टेलिंग मी कि आई थिंक यू विल हैव टू बी वेल वर्स्ड विद ऑल दिस थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी बिकॉज योर डॉटर हैज गॉन थ्रू दिस, आगे जाके मतलब यू नो क्या हो क्या नहीं, इट्स बेटर यू कीप ऑल दिस यू नो हीलिंग एंड ऑल दैट सो दैट यू कैन कीप ऑन हीलिंग हर। दैट्स व्हाट शी सेड टू मी। मैं
2: सब मैसेंजर्स आएंगे
1: उसके। हाँ, तो उसने फिर मैंने बोला कि चलो देखते हैं। एंड देन वन मोर थिंग, मैंने ये मेरी सारी चीजों के बाद मैंने एक मेरा गिफ्ट स्टोर शुरू किया था कि यू नो मतलब अभी इनकम शुरू करना है ना, तो आई कुड ओनली थिंक ऑफ दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि एक कोई रिटेल स्टोर शुरू कर देती हूँ। तो छोटा सा वो भी शुरू किया। तो वहां पर एक एक एक, एक औरत ने आकर आई डोंट नो फ्रॉम वेयर शी जस्ट मेंशन अबाउट मार्मा थेरेपी।
2: Oh,
1: and I asked her, what is marma therapy? So, इस तरह से सब लोग पता नहीं क्या था, मुझे इस तरह से मुझे नए नए टर्म्स हीलिंग के मुझे पता चले। मैंने उसने मुझे वो मुझे लेकर भी सॉरी
2: क्या होता है marma therapy? मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है लाइक एवर।
1: हाँ, marma therapy इज ऑल्सो लाइक दे वर्क ऑन द पॉइंट। मुझे भी उतना पता नहीं है बिकॉज आई डिड नॉट एक्सप्लोर मार्मा सो मच।
2: ओके ओके।
1: उसने मुझे सिर्फ उस दिन उसने मुझे समझाया कुछ, बट देन आई वॉजेंट आई मीन मैं उसके साथ भी गई क्या था यू नो क्या है मार्मा करके, लेकिन शी वेंट इन टू द ट्रीटमेंट और लेकिन मुझे पता नहीं कि वो ट्रीटमेंट क्या हुआ। और मार्मा इज अनदर काइंड ऑफ थेरेपी जो यू नो इनर जो हमारे जो एनर्जी पॉइंट्स है ना उसके साथ ही वो लोग यू नो कुछ एनर्जी भेजते हैं। बट अगेन आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन आई विल नॉट टॉक मोर। मैं खाली इतना बोल रही हूँ कि इसके बाद स्ट्रेंज इनफ व्हाट हैपेंड आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ एनर्जी इन माई हैंड्स। मतलब उतना एनर्जी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा हाथ वाइब्रेट कर रहा है उतना एनर्जी आई स्टार्टेड फीलिंग एंड आई वॉज लाइक कि क्यों इतना एनर्जी मुझे आ रहा है वाई। एंड देन आई स्पोक विद माई अगेन द कजिन हु हैड इंट्रोड्यूस्ड मी। आई आस्क्ड हर कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। सो शी इज टेलिंग दैट यू नो समथिंग दैट आई मीन यू आर गेटिंग दिस एनर्जी ऑन योर ओन। यू आर नॉट लाइक कभी कभी रेकी करने के बाद यू नो व्हेन दे आर वो कुछ लोग करते हैं ना, द मास्टर गिव्स यू द एनर्जी, देन यू हैव टू स्टार्ट सिट मेडिटेट एंड ऑल दैट. तो वो बोली कि आपको ऐसे ही आ रही है, एंड ट्रस्ट मी मुझे ऐसे ही बहुत एनर्जी आ रही थी मेरे हाथ में. तो मैं सोचती थी कि मैं किसको पकड़ू, कोई आ जाओ मैं हील कर दूं. उसके बाद मैंने रेकी मैंने सीखा कि चलो अभी मैं सीख ही लूं. मैंने दो लेवल तक किया रेकी, एंड देन आई यूज टू डू इट ऑन माई डॉटर. वो घर तक ही सीमित था. फिर जाकर मैंने एनएलपी, देन एज माई सिस्टर, देन शी यू नो, हम लोग तो फिर बात करने लगे और हमारी बात मुझे ये सब इतना फैसिनेट करने लगा कि ये एनर्जी वगैरह के ऊपर ही था. देन शी टॉक टू मी अबाउट एनएलपी, सॉरी शी इंट्रोड्यूस मी, नॉट इंट्रोड्यूस, शी टोल्ड मी दैट देयर इज वन सर्टन पर्सन यू नो जो एनएलपी कोच है, ही इज वेरी गुड एंड ही इज कमिंग टू बैंगलोर टू टीच. So why don't you let, I mean, and he was giving a free workshop. So she said, "Okay, do a free workshop. देखो आपको कैसा लगता है. Then you decide whether you want to do it or not." मैं workshop गई, मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसा भी कोई concept हो सकता है subconscious से, you know, बात करने का and all that. So फिर मैंने फिर वो वर्कशॉप अटेंड किया एंड नॉट इमीडिएटली आई एनरोल्ड, बट आई एनरोल्ड फॉर हिज नेक्स्ट अपकमिंग जो बैंगलोर में यू नो ही वाज कंडक्टिंग द नेक्स्ट वर्कशॉप, आई मीन सॉरी द एंटायर कोर्स ऑफ 5 days. मैंने वो अटेंड कर लिया.
2: वेरी नाइस. आपकी जर्नी सच में है, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से ही पपेट जैसे, यू वर जस्ट अ पपेट एंड भगवान ही वेंट्रिलोक्वस्ट थे जो वो चला रहे थे सारी जर्नी, एंड ब्यूटीफुल जर्नी. और कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल पाथ पे आना ही था, तभी इतना पेन आपने सहा और इतने, और उस पेन के साथ साथ भी इतने सारे लोग आपको मिलते गए जो आपको इनलाइटन करते गए टूवर्ड्स योर स्पिरिचुअल जर्नी बिल्कुल पैरेलली. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग. आगे अगर मैं चलूं और आपसे पूछूं कि लिम्फैटिक ड्रेनेज तक आप कैसे पहुंचे, और जब पहली बार आपने इस सिस्टम के बारे में सुना तो क्या था जिसने आपकी क्यूरियोसिटी को इतना स्पार्क कर दिया दैट यू स्टार्टेड डूइंग इट, लाइक टेकिंग इट अप एज योर थिंग.

0: इट वॉज रियली गुड, पर मैं जैसे जैसे पढ़ती गई बहुत ही अच्छा मुझे एनएलपी यू नो आई गॉट टू नो वॉट एवर वॉज नॉट टॉट इन द क्लास आई लर्न मोर यू नो ऑनलाइन कि जो भी एनएलपी कॉन्सेप्ट है. एंड व्हाइल आई वॉज यू नो जब गूगल करते हैं सर्च करते हैं सो देन आई केम अक्रॉस जब एनर्जी वगैरह में पढ़ती थी तो मैं आई केम अक्रॉस टीसीएम विच इज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन. सो दैट टुक मी बाय यू नो स्टॉर्म. मैं बोली कि ये क्या है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन. उनका मैंने कॉन्सेप्ट पूरा यू नो देखा बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड टू एनर्जी ट्रेडिशनल चाइनीज में कि ये एनर्जी जस्ट लाइक आयुर्वेदा ना जो एनर्जी की ही बात करते हैं पर वो आयुर्वेदा इज मोर रिलेटेड टू कफा वाता
1: पित्त.
0: यस बट द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इज ऑल अबाउट एनर्जी यिन एनर्जी और यांग एनर्जी जो हमारी बॉडी में है और जो मतलब मेरिडियंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा तो मतलब इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी. तो अगर मेरिडियंस फिर मैं थोड़ा जब पढ़ रही थी तब मैं मतलब ऐसा बोलते हैं इवन इन वेस्टर्न मेडिसिन दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग नाउ कि मेरिडियंस जैसी कुछ चीज है जहां से हमारे एनर्जी फ्लोज बट देर इज नथिंग विच इज यू नो कॉन्क्रीट. हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है कि मेरिडियंस है तो हम उसको पकड़ के कुछ कर सकते हैं. इट इज दे आर जस्ट एनर्जी पाथवेज. ठीक है तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ये जो भी एनर्जी जो भी मेरिडियंस है ना उसको उन्होंने पेयर किया है लाइक देर आर लाइक यू नो 12 मेरिडियंस है जो हाथ में और पैर में है राइट. एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर उसी मेरिडियन पॉइंट्स के ऊपर वो लोग करते हैं. ठीक है तो मैंने तो एक्यूप्रेशर मैंने तो वो सब आई हैव ओनली रेड इट आई हैव नॉट डन एनी कोर्स इन टीसीएम और एनीथिंग. लेकिन एक बात पर मैं बहुत स्टम्बल हो गई जिसको वह टीसीएम में स्प्लीन सिस्टम बोलते हैं स्प्लीन मेरिडियन. तो मैंने जब मैं एनाटॉमी जो मुझे बहुत पसंद है मैं सभी देख रही थी कि हाउ आर दीज कनेक्टेड. तो कहीं ना कहीं से सब कुछ कनेक्ट होता ही है. ठीक है सो बट स्प्लीन सिस्टम मुझे समझ में ही नहीं आया कि हाउ इज स्प्लीन इज टेकिंग द एनर्जी टू द लंग्स. ओके तो यू नो इफ आई मीन आई डोंट हैव सो मच टाइम टू एक्सप्लेन द होल थिंग पर एवरी सिस्टम ओके जो हार्ट सिस्टम है स्प्लीन सिस्टम है लिवर का सिस्टम है दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. ठीक है तो अगर एक कोई प्रभावित है किसी चीज से तो वी कैन जो उसका जो पेरेंट सिस्टम है जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टमक की तो उसका पेरेंट सिस्टम हो गया लंग्स. ठीक है तो वी कैन वर्क ऑन द लंग्स. तो लंग्स का पैर है विद द लार्ज इंटेस्टाइन. तो यू नो दीज टू आर पेयर्स विच आर लाइक यिन एंड यांग एनर्जीज बोथ. तो इसकी एनर्जी है यांग इंटेस्टाइन की और लंग्स की एनर्जी है यिन. सो वी हैव टू work on that in order to do the better the stomach system.
1: Wow.
0: So it is a very good yeah so the concept is mujhe wo samajhne mein hi mujhe itna time laga ki mujhe kafi mahine lag gaye the entire thing samajhne mein. So fir main spleen system ke upar abhi aau na so that took me by the storm ki ye spleen system hai kya. Aur spleen system samajhte I stumbled upon lymphatic system because spleen is also one of the lymphoid organ. तो वो हिसाब से मुझे fascinate पूरी चीज हुई और lymphatic पर जब मैं आई तो फिर पता चला कि ये lymphatic क्या क्या करता है. Even though it is such an ignored, neglected system by you know the doctors and all, वो खाली cancer treatment के लिए ही वो लोग address करते हैं. बाकी you know it is very less known to people.
1: अगर हम इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट इज लिम्फैटिक ड्रेनेज सिस्टम लाइक व्हाट इट इज व्हाट डज इट डू.
0: तो लिम्फैटिक जो है लिम्फ जिसको हम बोलते हैं ना वो इज नथिंग बट ब्लड प्लाज्मा. तो वो ब्लड है जो लीक होता है जब वो भ्रमण करता है ना
1: जी
0: सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में
1: जी.
0: तो जो आर्टरीज है जो ब्लड लेकर जाती है हार्ट तक तो प्रेशर वाइज ओके अभी ये प्रेशर कैसा भी प्रेशर हो गया I mean,

0: naturally it leaks this plasma. और ये जो plasma है ना हमारे tissues के दरमियान, जैसे आप सोचो कि पानी गिर गया है फर्श के ऊपर, अभी सॉरी पाइप है, पाइप आप गार्डन में रखते हो और वहाँ उसमें होल्स है, ठीक है, तभी आप पानी चलाओगे तो होल्स में से थोड़ा बहुत पानी निकलेगा ना, तो इस तरह से हमारे आर्टरीज में से पानी निकलता है, ठीक है. एंड फिर जैसे आप अभी इमेजिन करो कि जो ग्राउंड में पूरा पानी जमा हो गया, ठीक है, अभी अगर ग्राउंड में ग्राउंड तो सोक कर लेता है, राइट, पर अभी एक्सेस वाटर को अभी आप क्या करोगे, इट हैज टू कम बैक इनटू द सर्कुलेशन. तो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम ये जो ना तो कभी कभी पूरा नहीं आता, वैसे ही नेचुरली 5% रह ही जाता है, विच इज ओके, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अगर रह जाता है तो देन यू स्टार्ट हैविंग वाटर रिटेंशन. और ये जो हम वाटर रिटेंशन, हाँ, हम जो ये वाटर रिटेंशन बोलते हैं, ये कोई हमारे पीने का पानी नहीं है, ये हमारा ब्लड है,
1: विच इज विदाउट वाटर रिटेंशन
0: माइनस,
1: ओके,
0: हाँ, तो विच इज माइनस रेड ब्लड सेल्स. तो ये क्लियर फ्लूइड है. तो जब आर्टरीज में से आर्टरीज में होता है तो वो प्लाज्मा होता है, आर्टरीज से निकल जाता है, तो इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं. और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अभी वापस किस तरह से आना है, तो वो लिम्फैटिक वेसल्स से आते हैं, डायरेक्ट वापस आर्टरीज में नहीं चले जाते, वो लिम्फैटिक वेसल्स में आते हैं. लिम्फैटिक वेसल्स पूरे नेटवर्क ऑफ ऑल दीज वेसल्स, जो पाइप्स है, एकदम सिंपल क्रूड भाषा में बोलूं तो कंसिडर इट जस्ट लाइक, हाँ, पाइप्स है, छोटे छोटे बहुत पाइप्स है, वो भी उस बड़े भी नहीं है कि ज्यादा लिम्फ आ जाए, चलो इतने बारीक बारीक है, होते हैं बॉडी में, तो टाइम लगेगा ना उतना वापस आने के लिए. तो ऐसे आते भी नहीं है, अगर आप पूरे दिन बैठे रहोगे, आप सुनोगे लोगों को कि मेरे पैर भारी हो गए, स्वेलिंग हो जाती है, राइट. तो इट डिपेंड्स कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, इफ इट इज वेरी सिडेंटरी लाइफस्टाइल, कुछ आप ज्यादा कामकाज नहीं है, बैठे बैठे के यू नो जॉब है वगैरह, या तो घर में भी बैठे रहते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है. अनदर थिंग इज अगर आप डाइट अच्छा नहीं है, प्रोटीन रिच डाइट नहीं है, प्रोटीन मतलब होल प्रोटीन का डाइट नहीं है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम समस्या वाटर रिटेंशन की हो सकती है.
1: Okay.
0: तो और ये जो प्लाज्मा है,
1: तो फॉर मी इट्स सच अ, आई ऑलवेज थॉट वाटर रिटेंशन बट नेवर आस्क्ड व्हाट एग्जैक्टली वाटर रिटेंशन इज. बहुत ही मतलब इट्स वेरी इनलाइटनिंग फॉर मी. एंड बहुत वाटर रिटेंशन बहुत लोगों को होता है, तो उसके रीजंस लाइफस्टाइल भी है, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड नॉट गुड प्रोटीन रिच डाइट, और क्या रीजंस है,
0: और स्ट्रेस
1: एंड स्ट्रेस
0: स्ट्रेस है.
1: Okay.
0: हाँ, ये तीन मेन कारण है जिससे स्ट्रेस से तो सारी बीमारियां आजकल बोलते हैं, अगर डॉक्टर को कुछ मिला नहीं तो बोल देंगे
1: स्ट्रेस.
0: तो मतलब वो तो है, सही में ही है स्ट्रेस. और एक क्या होता है इसमें कि क्यों लिम्फैटिक, अभी चलो ये सब तो है, निकलता है वापस आता है, तो अगर नहीं आता तो क्या हो जाता है कि प्रोटीन, अरे जो भी हमारे हॉर्मोन्स है, कई कुछ हॉर्मोन्स है, पैनक्रियाटिक जो फ्लूइड्स है, वो सारे भी आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं बाहर, और डेड स्किन से आई मीन डेड सेल्स आ जाते हैं. तो क्या है, वो अगर वापस नहीं जाएंगे तो ये इधर ही पड़े रहेंगे, एंड देन दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम. वहां पर क्या होता है, रहता है कि आपका ब्लड थिक होते रहता है, तो आपको वो वापस सर्कुलेशन प्रॉब्लम होता है. तो जब अभी ब्लड थिक हो गया, so it will not reach other areas of your body, right? So आपको stiffness आ सकती है, pain आ सकता है, और nutrient deficiency की वजह से, या तो आपको आपके आपके जो दूसरे organs है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये सब तो निकल रहा है, वापस नहीं आ रहा है, जो enzymes है pancreas के, so उनको ज्यादा उनके ऊपर force आ जाएगा, क्योंकि वो तो release कर रहे हैं बेचारे, लेकिन ये सब निकल जा रहा है, तो ये कोई काम में नहीं है. तो यू नो देयर कैन बी लॉट ऑफ बेनिफिट, क्योंकि अगर हम ये फ्लूइड वापस में हम मसाज से, जो लिम्फैटिक थेरेपी से वापस कर रहे हैं, यू विल इमीडिएटली सी एनर्जी लेवल्स लोगों की बदलती है, कई कई लोगों की डाइजेशन अच्छी हो जाती है, कई कई लोगों मुझे रिपोर्ट किया है कि कोई कोई को अच्छी नींद आने लगी है बिकॉज ऑफ दिस.
1: तो ब्रेन स्ट्रोक का भी रीजन यही होगा, क्योंकि ब्लड टिक होता है एंड देन इट कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू अ ब्रेन स्ट्रोक.
0: दैट आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट, क्योंकि जो लिम्फैटिक जो है ना, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये लिम्फैटिक की वजह से ये प्रॉब्लम आया, या तो लिम्फैटिक की वजह से ये प्रॉब्लम ठीक हो गया. यू नो इट इज लाइक ये कहीं पर भी हमको बेनिफिट कर सकता है. लिम्फैटिक का जो डायरेक्ट प्रॉब्लम है वो लिम्फेडीमा है, वाटर रिटेंशन है, ब्लोटिंग है, ठीक है. और लेकिन और पुअर इम्यूनिटी भी है, क्योंकि लिम्फैटिक सिस्टम इम्यूनिटी वाइज भी वहां से ही सपोर्ट होती है इम्यूनिटी लिम्फ नोड्स में. तो अगर आपके लिम्फ नोड्स ब्लॉक्ड है तो काफी सारी अगेन इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है.
1: ब्यूटिफुल.
0: सो द एरियाज आर वास्ट. तो हमको हमारे लिम्फैटिक सिस्टम, इट्स नॉट दैट कि आपको अगर मैस्टेक्टोमी हुई है या तो आपको सर्जरी हुई है, या तो लिम्फोडीमा है विच इज अ क्रॉनिक वाटर रिटेंशन पैर में वगैरह, तो पूरा आपका पूरा सब मसल स्टिफ हो जाता है. ऐसा नहीं है कि इसमें ही आप करें ये. यू नो पीपल कैन डू दिस फॉर बेटर वेलनेस उनका, बस लाइफस्टाइल हेल्दी रखने के लिए कभी कभी लिम्फैटिक ड्रेनेज कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज यू विल बी सपोर्टिंग योर ब्लड सर्कुलेशन.
1: Absolutely, ma'am.
0: And also your immunity.
1: ये बहुत ही एक अलग साइड ऑफ साइंस और हेल्थ आपने रिवील किया एंड आई एम सो ग्लैड कि आप इस जर्नी पर चले और आप ये काम कर रहे हैं. कंग्रेचुलेशन टू यू. आप यू एक्चुअली एडिंग टू द लार्जर गुड एंड लार्जर वेलनेस. जहां से आपकी जर्नी शुरू हुई उसको पर्सनल से इम्पर्सनल इस तरह से ले गए आप. बहुत ही कंग्रेचुलेशन. अगर मैं आगे चलूं, क्योंकि अब बिकॉज हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ, अगर आप मुझे आपकी अनदर साइड ऑफ सारा के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम SNR हम भी एक प्लेटफॉर्म है, एक म्यूजिकल प्लेटफॉर्म है जहां हम कराओ के सिंगर्स को होस्ट करते हैं, उनके प्रोग्राम्स करते हैं आज के कलाकार में. तो उसी तरह से आप भी एक बैंगलोर बेस्ड कराओ के ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं किस तरह से आप उससे कनेक्टेड हैं और कैसे आप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं. एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू बी अ लिटिल ब्रीफ बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम.
0: श्योर श्योर. तो कह रही हूँ कि मेरा ही ग्रुप है तो जश्न सरगम बैंगलोर बेस्ड.
1: ब्यूटो
0: मतलब मेरे सॉरी ब्यूटीफुल. हाँ, ये मेरे भाई ने रखा था और हमने ये ग्रुप भाई बहनों मेरे भाई हम दोनों ने ही शुरू किया. तो इसकी प्रेरणा मिली जब मैं हम लोग एक कार्यो के प्रोग्राम में गए थे. वहां पर हमने देखा, इतना अच्छा लगा देखकर, तो सोचा कि क्यों ना हम भी शुरू करें. सो वी केम अप विद दिस जश्न सरगम. शुरू किया और हमने मेरे भाई का जो था कि हम वी विल सेलिब्रेट अनसंग सिंगर्स, अनसंग आर्टिस्ट है ना जो बहुत पुराने हैं, वो लोग को हम उनके गाने ही गाएंगे. सो वी आर मोस्टली थीम बेस्ड ग्रुप. ठीक है, तो जो ज्यादातर हम लोग पुराने ही यू नो गाने गाना पसंद करते हैं और उसकी ही रिलेटेड थीम्स रखते हैं. जैसे अभी लास्ट मंथ मैंने मुकेश जी का किया था. अभी मेरे भाई नहीं रहे लास्ट ईयर, अभी आई लॉस्ट हिम.
1: तो
0: वो हमेशा मुकेश जी का प्रोग्राम करते थे. कोई दूसरा प्रोग्राम करे ना करे उनके तिथि के ऊपर ये प्रोग्राम करते ही थे. तो मैंने लास्ट मंथ किया था. अभी वो तो नहीं थे तो मैंने ही वापस मैंने शुरू किया कि अभी मैं ही यू नो अकेले मैं करूंगी. और हम दोनों को इतना म्यूजिक ये गानों से इतना लगाव है बिकॉज ऑफ माई डैड, क्योंकि ही वॉज यू नो वेरी मच इन टू दिस ओल्ड सॉन्ग. तो वो कभी कभी बालकनी में अपना टेप रिकॉर्डर अपनी पूरी कैसेट्स लेकर बालकनी में बैठकर यही गाना सुनते, ऐसे ये सब गाने सुनते. तो मुझे मेरे जमाने के गाने से ज्यादा उनके जमाने के गाने ज्यादा याद है और मुंह पे एकदम से आ जाते हैं बिकॉज ऑफ माय डैड. सो प्रेरणा हम मेरे भाई और मुझे उन्हीं से मिली है और वहीं से ऐसे ही मैंने शुरुआत
1: फॉरवर्ड किया. और
0: जश्न सरगम इज माय ग्रुप नेम.
1: जी, जश्न सरगम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बहुत बधाइयां और बहुत ग्रोथ. एंड आई एम रियली सॉरी, या आई एम रियली सॉरी फॉर द पासिंग अवे ऑफ योर ब्रदर. बट जो उन्होंने शुरू किया है और आपने उनके साथ मिलकर शुरू किया है, वो कारवां बहुत आगे बढ़े, ये हमारी विश है. दिल से हमारी आपको विश और कंग्रेचुलेशन है. आगे चलते हैं मैम. आज का जी जी आज का हमारा आखिरी सवाल है, आपने बहुत सारे मेनी रोल्स, मेनी मास्टर्स, मेनी लाइफ वाली जो कहानी है, यू लेड अ लाइफ फुल ऑफ फुल स्पेक्ट्रम, लाइक देयर हैज बीन अ स्पेक्ट्रम टू योर लाइफ, पहले आपकी डॉटर की इलनेस, अब फिर सबसे पहले एडवर्टाइजिंग, उसमें इतना अच्छा करना, फिर आपकी डॉटर की इलनेस हिट यू, फिर आपकी बुक आई, फिर रेकी आई, एनएलपी आया, लिम्फेटिक ड्रेनेज का काम आया, और कराओके सिंगिंग। तो इनमें से कुछ चीजें ऑफकोर्स ऐसी थी जो आपने कॉन्शियसली चूज की, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो लाइफ ने इट थ्रू इटसेल्फ ऑन यू। तो आज जब आप अपने पूरे इस जर्नी से कोई लेसन अगर आपने सीखा है अपनी इस पूरी जर्नी से, तो वो यंगर जनरेशन को पास करने के लिए क्या मैसेज है आपके पास कि ये आप कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, या इस तरह से जीवन लीड कर सकते हैं? आपके एक्सपीरियंस का निचोड़ क्या है मैम, अगर वो बताएं?
0: मैं एक्चुअली एक तो मैं नहीं कहूंगी, आई वुड वॉन्ट टू से टू थिंग्स। वन इज जो मुझे एनएलपी से सीखने को मिला कि इट इज ओनली अस दैट हु कैन चेंज, वी कैनॉट चेंज एनीबॉडी। तो यू चेंज फॉर, अगर आप सोचते हो कि वो बदले तो मैं खुश रहूंगी, वो बदले तो यू नो इफ इट वॉज लाइक दिस आई वुड बी हैप्पी। तो मैं मतलब मैंने ये सीखा है एनएलपी से, विच इज दैट इज व्हाट हैज चेंज माय पर्सपेक्टिव एवरीथिंग, कि कोई नहीं बदलता, हमको ही बदलना है फॉर गुड और फॉर बैड फॉर अदर्स। मतलब अगर मैं, अगर आप सहते रहोगे एंड देन यू कीप ब्लेमिंग के उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तो इट इज लाइक उसका तो काम ही था, आपने क्या किया आपकी जिंदगी के बारे में? Right? Why didn't you stand up for yourself?
1: Yes.
0: So it's only that we can change. So change yourself. अगर आपको कुछ anything in your life you're not liking, so you will only have to do it. Nobody, don't expect that others will come and do it for you. और दूसरी बात के law of attraction है, law of attraction जैसी चीज है, but it is not affirmations, it is not मतलब क्या बोलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज के आप एक दिशा में सोचो, ओके, एंड देन यू हैव टू, डोंट गो ऑन गिविंग दैट फियरफुल एनर्जी टू इट। यू हैव टू गिव द एनर्जी, जो एनर्जी मतलब आप सोचते हो जो भी है यू नो वो उसको गोल के रिलेटेड, तो वो आप उसके बारे में इस तरह से महसूस करो एंड डोंट गिव दैट फियरफुल या तो लैक का ये मत बनाइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल डेफिनेटली वर्क इफ यू आइडेंटिफाई विथ दैट गोल। इफ यू डोंट आइडेंटिफाई, जैसे मैं हूँ, मैं मेरा ही एग्जाम्पल दे दू, मैं लिम्फैटिक ड्रेनेज थेरेपिस्ट हूँ, बट इफ आई डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द लिम्फैटिक एज अ थेरेपिस्ट, मैं सोचती हूँ कि मैं तो अभी क्रिएटिव हेड हूँ विद एन एड एजेंसी, काश ये हो जाता, आई विल नॉट कम गो अहेड नो इन माई, क्योंकि मेरी इनर प्रोग्रामिंग ही गलत है। अभी आज मैं आइडेंटिफाई करती हूँ, मुझे मुझे मुझे सामने से फोन आते हैं मेरी वेबसाइट पर जाकर। सो द थिंग इज इट डिड नॉट हैपन ओवर टाइम। ये जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भले ही बहुत पहले मैंने सब जाना, लेकिन बहुत वेरी रिसेंटली आई हैव अंडरस्टूड कि हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग। सो यू फर्स्टली यू हैव टू मेक योर आइडेंटिटी, जो आपका गोल है वो हिसाब से आपको आपकी आइडेंटिटी, यू स्टार्ट हैव टू बिलीव, आई मीन यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन दैट, एंड देन आप देखिए कि होते रहेगा धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे यू विल सी दैट दोज आर ओपनिंग फॉर यू। This is what I want to convey. Thank you so much.
1: बिल्कुल, by and by सब कुछ होता रहेगा, और by and by ही सब कुछ होता है। एक लास्ट अगर क्विकली आप मुझे बता दें, क्योंकि आपने कहा था शुरुआत में कि एंड में बताएंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन गॉन ऑरी, ऑरी का क्या कोनोटेशन है यहाँ पे, कैसे वो इट वेंट अमिस, व्हाट हैपेंड, जस्ट क्विकली इफ यू कैन शेयर।
0: सो इन द बुक मैंने ये लिखा है कि क्यों ऑरी, वाई, बिकॉज एक पॉइंट था मेरे जिंदगी में जहां पर मैंने जो लोन लिया था ना, माई हस्बैंड डिडंट लाइक, ठीक है, हम लोग वी आर मुस्लिम एंड मैं इतना यू नो पता नहीं नेशनल है या क्या है, मैं इतना बोल्डली बोल रही हूँ कि आई वॉज सो फेड अप ऑफ रेंटल हाउसेज तो मैंने सोचा कि मैं कुछ भी करके मेरा खुद का घर ले लूं. एंड दैट टाइम सिंस आई डिडंट हैव मनी, मैं जॉब करती थी, आई गॉट द लोन वेरी इजिली. ठीक है, बट माय हस्बैंड केप्ट ऑन लाइक नहीं, हम वी कैन नॉट, हम हमारे में इंटरेस्ट नहीं है, वी कैन नॉट गो फॉर लोन. आई सेड अभी हम अभी इतना मुश्किल में है. आई वॉज थिंकिंग वेरी प्रैक्टिकली कि इस तरह से मतलब हम ऐसे ही रह जाएंगे बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू गैदर 30-35 लाख बिकॉज वी वर ऑलरेडी 40. मैंने बोला कि कब तक हम लोग यू नो बाय व्हेन डू यू थिंक वी विल बी एबल टू यू नो गैदर सो मच मनी एंड ऑल दैट. वो तो फैमिली यू नो बात हो गई, तो मतलब मैंने ले लिया एंड देन ही केप्ट ऑन एंड और उससे हमारे यू नो वी हैड वी यूज टू हैव फाइट्स एंड ऑल दैट रिलेटेड. तो मतलब बट आई वेंट अहेड एंड आई डिड इट. तो उसके रिलेटेड फाइट्स होती थी कभी कभी. तो मैंने एक बार नमाज में मैंने एकदम प्रे किया कि कुछ भगवान कुछ ऐसा अल्लाह कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा लोन एक ही साल में क्लियर हो जाए. एंड मैं लोन क्या बात कर रही हूँ, 15 लाख की लोन की बात कर रही हूँ, नहीं तभी 13 था, 2 लाख मेरा यू नो. सो ऐसे ही यू नो व्हेन यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड 13 लाख का मतलब ऐसा हो जाए. ट्रस्ट मी ऑन दिस के विद आफ्टर 2-3 मंथ्स मुझे पता चला मेरी बेबी का ऐसा हुआ है.
1: बताइए, जस्ट इमेजिन.
0: और मेरे बेबी के साथ ऐसा हुआ एंड देन एंड जस्ट यू वोंट बिलीव विद इन दैट 1 ईयर जो मैंने प्रे किया, विद इन अ ईयर मेरा लोन खत्म हो गया. रिमेम्बर आई टोल्ड दैट 6 लाख
1: यस जी जी
0: आई गॉट द हेल्प विद इन दैट ईयर. My this thing, you know, was cleared.
1: Wow.
0: So, मैं जब ये मैंने बोला कि मैं सोच रही थी ये सब क्या हो गया मेरी बेटी. So the thing is, ये law of attraction क्या था? मतलब gone awry. मैंने ये तो मैंने बोला right कि मेरा loan ये हो जाए. पर इस तरह से होगा? You know, I will. So the thing is, I will never know what. You know whether it was a curse on me or what. लेकिन मैं अगर सोचूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दायरे में रहकर सोचती हूँ तो ऐसा ही लगता है कि मैंने ये किया. और जो इमीडिएट एंड द थिंग इज कायनात कुछ भी करेगी ना आपको ये देने के लिए, आप जितना शिद्दत से करोगे. पर कायनात डजंट हैव इंटेलिजेंस, इट विल जस्ट गिव यू नो वॉट इज देयर for you and what can bring you that much money.
1: It's more like today's AI. Usko jitna bolo try karegi. Can go or you.
0: Yeah, and actually you know fir maine bahut maine uske bare mein bhi maine padha na. So yahi aaya ki the universe doesn't have intelligence. It will just give you, aapne bola ki aapko paise chahiye. You know it just did this. It gave me in this way. तो अभी पता नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन ओन. और मैंने ये सभी लिखा है मेरे बुक में.
1: ब्यूटिफुल मैम, विल डेफिनेटली गेट अ हैंड्स ऑन द बुक. एटलीस्ट आई विल गेट इट फ्रॉम अमेजोन. और मैं हमारे लिसनर्स को भी बहुत रिक्वेस्ट करूंगी, जब हमारे शो की एयरिंग होगी तो आई सर्टनली शेयर द लिंक ऑफ द बुक सो दैट जितने लोग इंस्पायर हों इस इंटरव्यू से, आई एम श्योर बहुत सारे होंगे, दे गेट देयर हैंड्स ऑन द बुक एंड दे रियली रीड की लाइफ किस तरह से डिग्निटी ग्रेस में जी जा सकती है डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. आप एक बहुत ही सरल, ग्राउंडेड और रियल पर्सन मुझे लगे. मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आया, ऐसा लगा कि एक इंसान से एक इंसान मिल रहा है. मिल भी नहीं रहा, हम बात कर रहे हैं पहली बार इतनी लंबी, बट इट डिडंट फील लाइक दैट एंड आई विश आई हैड मोर टाइम सो दैट वी कुड हैव टॉक्ड मोर. एंड मैं बहुत सारे और सवाल मेरे मन में थे, बट चले हम यहाँ पे विराम लगाते हैं, मे बी सम अदर टाइम. और यहीं पे मैं आपकी डॉटर को बहुत सारा प्यार फिर से देना चाहूंगी. मेरी जितनी ब्लेसिंग्स है मेरे मन से, बिकॉज ऑफकोर्स मैं तो उसकी मासी हूँ, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स अजब के लिए मेरी तरफ से, SNR की पूरी टीम की तरफ से. थैंक यू मैम.
0: थैंक यू सो मच तनुषा. यू डोंट नो हाउ मच आई एंजॉय दिस इंटरव्यू. इट वॉज लाइक मैं बात कर रही थी, आई वॉज री लिविंग ऑल ऑफ दैट यू नो दैट हैपेंड यू नो ड्यूरिंग माई एंटायर. मतलब वो ही आ जाता है जो हॉस्पिटल में जो भी यू नो, इट वॉज जस्ट लाइक अभी हुआ है यू नो.
1: बिल्कुल.
0: सो थैंक यू सो मच. और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू SNR यू नो समीर जी, राइट?
1: जी समीर,
0: थैंक यू सो मच फॉर,
1: हाँ
0: सो थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग.

0: me to this, and lovely, keep it up. Keep up your shows, and good night.
1: Good night. सारा जी, आज आपकी कॉन्वर्जेशन ने हम सबको एक खूबसूरत पर्सपेक्टिव दिया. जिंदगी के हर मोड़ का मीनिंग हमें उस वक्त समझ आए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं. कभी एक डिफिकल्ट फेज हमें लोगों की काइंडनेस से मिलवाता है, कभी एक सवाल हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, और कभी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न हमें अपनी अंदर एक नई दुनिया दिखाता है. आपकी जर्नी में क्यूरियोसिटी, रेजिलियंस, हीलिंग और ह्यूमन कनेक्शन के बहुत से रंग हैं. दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो दातिया भील 90.8 FM पे. कभी कभी जिंदगी के अनआंसर्ड क्वेश्चंस को भी थोड़ा वक्त दीजिए, हो सकता है उनमें ही किसी नए सफर की शुरुआत छुपी हो. नमस्कार.

0: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।
1: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं एक ऐसी युवा से जिनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। इनका नाम है यास्मीन एरिंगटन। दुनिया में क्या कोई ऐसा इंसान होगा जिसके हिस्से में गम ना आया हो? ऐसा होना तो नामुमकिन है, क्योंकि ये मनुष्य मात्र की नियति है। सुख दुख आते ही रहते हैं, लेकिन सच ये भी है कि जो लोग भाग्यवादी बनने के बजाय कर्मवादी बनते हैं वही बदलाव लाते हैं। यास्मीन अलेक्जेंड्रा एरिंगटन उन बिरले लोगों में से एक है जिन्होंने इस दुनिया को कुछ और बेहतर, कुछ और ज्यादा मानवीय बनाने का बीड़ा उठाया है। अमेरिकी समाज उनकी इस भूमिका को सराह भी रहा है। विश्व की प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी CNN ने उन्हें इस साल के हीरो के सम्मान के लिए नॉमिनेट किया है। आज से करीब 30 साल पहले Washington DC में यास्मीन पैदा हुई थी। होश संभालते ही पता चला कि पिता टोनी ए एरिंगटन जेल में थे। उनके बाहर आने और फिर से सलाखों के पीछे चले जाने का सिलसिला चलता ही रहता था। छोटी सी यास्मीन को तो पिता की शक्ल भी याद नहीं थी। टोनी का ज्यादातर वक्त चोरी और इसी तरह के दूसरे अपराधों की सजा काटने में बीत रहा था। मगर यास्मीन भला तब क्या समझ पाती कि चोरों की संतानों को समाज किन निगाहों से देखता है। जिस उम्र में बच्चों के सुपर हीरो उनके मां बाप होते हैं, उस आयु में यास्मीन की आंखों ने ऐसा कोई ख्वाब देखा ही नहीं। मगर जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, उपेक्षा भरी और तरस खाती हुई निगाहें उन्हें परेशान करती ही चली गईं। जेल से पिता के इस रिश्ते ने उनके परिवार वालों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया। घर की हालत खराब थी तो यास्मीन की मां अपने बच्चों को लेकर अपनी मां वेरोनिका राइट के पास चली गईं। वो सब अब बिखरी हुई जिंदगी जी रहे थे। मां को पेट की गंभीर बीमारी थी, वो तड़पती रहती थी। यास्मीन सिर्फ 8 वर्ष की थी तब। पेट दर्द से राहत के लिए यास्मीन की मां ने दर्द निवारक गोलियां खानी शुरू कर दी। डॉक्टर्स ने कहा कि इसका उपचार एकमात्र ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन हुआ, लेकिन कुछ सालों में ही नई समस्याएं खड़ी हो गईं। तब यास्मीन अपने हाई स्कूल के पहले साल में थी। उनकी मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यास्मीन 15 वर्ष की थी, उन्हें लगा कि पिता होते तो सब संभाल लेते, लेकिन जो वो 4 साल की उम्र में छोड़कर उन्हें गए थे वो पलट कर कभी नहीं आए। प्यार और स्नेह की भूखी यास्मीन की मुलाकात उन्हीं दिनों एलॉन यूनिवर्सिटी के टीनो मोनेरो से हुई। वो भी फर्स्ट ईयर के छात्र थे। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने अपने विषय में इसी यूनिवर्सिटी से स्नातक किया, मगर यास्मीन के अंदर तो पिता को लेकर एक कसक बनी हुई थी कि वो मिलते तो उनसे पूछती कि उन्हें ऐसा बचपन क्यों गुजारना पड़ा। इसका संयोग भी बन गया, टोनी एरिंगटन जॉर्जिया जेल से रिहाई के बाद एलॉन यूनिवर्सिटी के ही करीबी एक रेस्टोरेंट में रसोइये का काम करने लगे। जब पिता और बेटी का आमना सामना हुआ तो मिनटों तक दोनों एक दूसरे को पहचानने की ही कोशिश करते रहे। पिता की नजरें तो 4 साल की अपनी गुड़िया की तलाश कर रही थी जो अब युवा हो चली थी, तो वहीं पिता से मिलने की खुशी में बेटी अपने सवाल ही भूल गई। यास्मीन को तो बस इस बात का इत्मीनान था कि उनके पिता सामने हैं और वो उनसे बात कर सकती है। फिर किसी पुराने जुर्म की सजा में पिता जेल भेज दिए गए, लेकिन इस बार यास्मीन उनसे नाराज नहीं हुई। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया था। वो पिता से फोन पर बातें करती रहती, बल्कि स्नातक की डिग्री लेते हुए उन्होंने ये तय किया कि पिता उस वक्त मौजूद रहेंगे ताकि वो उन्हें खुशी और गौरव के कुछ पल दे सकें। हाई स्कूल में दाखिला लेते समय कैदी पिता की संतान होने के कारण यास्मीन को जिन आर्थिक मुश्किलों से गुजरना पड़ा था उसने उनके भीतर एक गहरी टीस पैदा कर दी थी। फिर जब ये पता चला कि उन्हीं की तरह के अमेरिका में 20 लाख किशोर नौजवान हैं जिनके माता पिता जेल में हैं, तब यास्मीन ने इस कलंक और शर्मिंदगी को ढो रहे छात्रों की मदद करने का फैसला ले लिया। अक्टूबर 2010 की बात है। उस समय यास्मीन बमुश्किल 17 साल की रही होंगी। ये वही उम्र थी जब उन्हें आगे की अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी थी और एक अच्छे करियर को चुनना था। तब उन्होंने समान स्थिति वाले विद्यार्थियों के लिए स्कॉलर चिप्स नाम की एक गैर लाभकारी संस्था शुरू की। उनकी इस पहल ने कई लोगों को आकर्षित किया। साल 2012 से अब तक यास्मीन को अनगिनत पुरस्कार मिल चुके हैं जिनमें मिली धनराशि इस संस्था में ही आती गई। स्कॉलरशिप्स के जरिए अब तक 80 से ज्यादा छात्रों को वजीफे के तौर पर करीब 4 करोड़ रुपए की सहायता हो चुकी है। एक पेशेवर मॉडल और प्रेरक वक्ता के रूप में यास्मीन अमेरिका और उसके बाहर घूम घूम कर लोगों का आह्वान करती है कि अभिभावकों के किए की सजा बच्चों को मत दीजिए, उन्हें हिकारत की नहीं सामाजिक प्रोत्साहन की जरूरत है। अब CNN की जूरी इस साल के हीरो की घोषणा करेगी। यास्मीन अगर विजेता बनी तो उन्हें इनाम में $1,00,000 की संपत्ति मिलेगी। नामित होते ही वैसे वो $50,000 की हकदार तो हो चुकी हैं। जाहिर है ये धन भी उनके बड़े मकसद के लिए होगा। बकौल यास्मीन, जीवन में अच्छे करियर के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, मगर इंसान की सार्थकता इससे कुछ ज्यादा मांगती है।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: दैट्स द स्पिरिट सर।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

डेट विद डेस्टिनी 2 फरवरी 2020 02/02/2020। शायद आपको कैलेंडर के दूसरे दिनों जैसा ही एक और दिन या महज एक तारीख भर लगे, लेकिन दरअसल यह एक पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम यानी ऐसे शब्द या संख्याएं जिन्हें दाएं से बाएं और बाएं से दाएं एक जैसा पढ़ा जा सकता है। थोड़ी सी माथापच्ची करेंगे तो आपको इससे पहले भी कई ऐसी तारीखें मिल जाएंगी जो पैलिंड्रोम कही जा सकती हैं। ऐसी तारीखों को लेकर लोगों में बड़ा जुनून रहता है। मीडिया अगर इस जुनून को हवा देता था तो सोशल मीडिया ने इसमें आंधी झोंक दी है। कभी 10 10 10 11 11 11 तो कभी 12 12 12। जब भी ऐसी कोई खास तारीख आने वाली होती है लोग दीवाना वार दौड़ने लगते हैं। कोई इस दिन शादी करने के लिए महीनों पहले से भागा दौड़ी में लग जाता है, तो कोई चाहता है कि उसकी औलाद जिस समय दुनिया में पहला कदम रखे उस वक्त तारीख ही नहीं बल्कि घड़ी के घंटे मिनट और सेकंड की सुइयां भी उसी का अनुसरण कर रही हो। कुदरत के निजाम में इस तरह की दखल की ख्वाहिश को पागलपन कहें या ओछापन, लेकिन यह साल दर साल होता है। इस तरह के नंबरों की कलाबाजी को साइंसदानों की भाषा में एपोफीनिया कहा जाता है। तारीखें हमारे मन में एक ऐसे ताने बाने की तरह रची बसी हैं जिसमें हर मोड़ पर डेस्टिनी एक साये की तरह मौजूद है। हमें बार बार लगता है कि एक खास तारीख से होने वाला आगाज हमें एक मुकम्मल और मन माफिक मुस्तकबिल तक पहुंचा सकता है। क्या वाकई ऐसा है? हो सकता है कि हो या नहीं भी हो सकता है, पर एक चीज तय है, तारीखें हमें अपनी गलतियों को सुधारने का, कुछ अधूरे कामों को पूरा करने का एक मौका जरूर देती हैं। अब यह तारीख हर साल की पहली तारीख भी हो सकती है और आपके इस दुनिया में कदम रखने की तारीख भी, या फिर 01/01/01 से 12/12/12 जैसी कोई भी तारीख जो सदी में सिर्फ एक बार आती हो। हम अपनी सहूलियत से ऐसी ही कोई तारीख चुन लेते हैं, खुद से कुछ वादे करते हैं, कुछ अरसे तक उन पर अमल भी करते हैं और फिर अलग अलग वजहें या बहाने तलाश कर सिलसिले को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। फिर एक दिन हमें कोई झकझोर कर जगाता है और फिर हम अपनी पुरानी चीजों को नई शुरुआत देने के लिए एक और नई तारीख का इंतजार करने लग जाते हैं। सिर्फ एक तारीख के इंतजार में कीमती वक्त को बर्बाद कर देने वाली इस फितरत का एक अच्छा पहलू यह है कि ये हमारे इरादों को मजबूत कर देती है और ख्वाहिशों को धार दे देती है। फर्ज कीजिए आप किसी काम को लाख चाहकर भी शुरू नहीं कर पा रहे, ऐसे में एक खास तारीख किसी रहबर की तरह आपके सामने आ जाती है और आप खुद से उस तारीख को उस काम को शुरू करने का वादा करते हैं और जी जान से उस वादे को पूरा करने में जुट जाते हैं। ऐसे में 100% तो नहीं, फिर भी कम से कम 90% आसार यही होते हैं कि आप उस वादे को पूरा करेंगे। यह एक अलग बात है कि ज्यादातर मर्तबा सिलसिला बीच में ही टूट जाता है और आप इस बात को लेकर खुद को गुनहगार समझने लगते हैं कि आप वादे को निभा नहीं पाए, लेकिन यह एक ऐसा गुनाह का एहसास है जो आपने किया ही नहीं। हालात किसी भी तारीख से ज्यादा ताकतवर होते हैं। आपने खुद से एक वादा किया, उसे पूरा करके दिखाया। आपने जो वादा किया वो शुरुआत का वादा था, उसे हमेशा करते रहने का वादा नहीं किया था जिसके टूटने का अफसोस हो। गुनाह के किसी एहसास के बिना भी आप अपनी कोशिशें जारी रख सकते हैं और फिर किसी ने बेवजह तो नहीं कहा है कि वादे टूट जाते हैं लेकिन कोशिशें कामयाब होती हैं। तारीख गवाह है, हर सपने को पूरा होने के लिए बहुत सारी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षाओं से हर कोई गुजर रहा है, रुकते अटकते ही सही लेकिन सफर जारी है और जारी रहेगा, बस बढ़ते जाना है।
क्योंकि यह कोई तारीख नहीं जिसकी अहमियत और उम्र महज 24 घंटे हो, बल्कि एक उम्मीद है और उम्मीदें कभी बुझती नहीं। वो सफर की निरंतरता में लगातार हमारी राह को रोशन करते हुए उसे आसान बनाती हैं।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये तो साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

अकस्मात एक दिन शौक चर्राया, सोचा सफाई कर दूं। यूं अकस्मात करते करते सफाई रखी पिताजी की, पुरानी मेज की दराज को खींचा ही था कि लगा जैसे वक्त भी खिंचता चला आया। मैंने और खींची दराज तो देखा बचपन के पुराने हसीन दौर से अचानक पिताजी की यादगार लम्हों की याद ताजा हो गई दराज, जिसमें न जाने क्या क्या था। सोचा सफाई कर दूं, अलमारी को भी झाड़ पोंछ कर दूं, बेकार को बाहर कर दूं, पर कर न सका एक पल भी अपने से जुदा। कुछ चीजों को सोचा था बाहर फेंक दूं, पुरानी है, एक एक करके दोबारा साफ कर कर के लगाता चला गया, सहेजता चला गया, रखता चला गया, उन यादों में खोता चला गया। जैसे खींची थी वैसे ही साफ करके बीते पलों के साथ संजो कर बस बंद कर दी पिताजी की वही पुरानी दराज।

तो दोस्तों प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है।
0: मतलब
1: उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो वो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने अपने लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मीन्स एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ बच्चन जी का,
1: यस।
0: तो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: थैंक्स।
2: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।
3: देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

है तुम्हारा नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी, मेरा ट्रांसफर दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है,
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है। ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने तक तेरे लिए बचता रहेगा। कोई घा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास। What?

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है। सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर कलाकार धर्मेंद्र। जी हां, धर्मेंद्र का पूरा नाम है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। तो आइए दोस्तों, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। कहना ना होगा दोस्तों, आप भी मानेंगे कि बॉलीवुड में धर्मेंद्र सबसे ज्यादा हैंडसम इंडियन एक्टर माने गए। तो लीजिए उन्हीं की फिल्म का एक गीत हो जाए।

आपको पता ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कहा जाता है जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं। आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां पिक्चर्स फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है, जब हम कहते हैं चिड़िया हाथी जंगल जानवर इंसान तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। दोस्तों आपको पता होगा फिर भी बताते चलते हैं कि धर्मेंद्र को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो कि सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है भारत में। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? धर्मेंद्र का जन्म सहनवाल नामक एक गांव में, जो कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, हुआ था।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: भैया हमेशा स्पेशल बनकर रहा करो, आम बन जाओगे ना तो अचार बना दिए जाओगे।

आपको एक मजेदार बात बताते हैं दोस्तों, धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल के बेटे का नाम भी धर्म रखा गया उन्हीं के नाम पर। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी की फिल्म का एक और गीत।

दोस्तों धर्मेंद्र 1998 से लेकर आज तक कैरेक्टर रोल्स करते आए हैं। उन्होंने नए कलाकारों को हमेशा प्रोत्साहित किया, जगह दी और उनका आशीर्वाद सभी नए एक्टर्स पर हमेशा बना रहता है। तो लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

आपको मालूम ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जगह है बीकानेर राजस्थान की। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की एक फिल्म का ये गीत।

छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम दरोग पुराना पुराना पुराना है। जट यमला पगला दीवाना।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा गजल का कार्यक्रम अल्फाज से एहसास तक। गजलें यानी कि कुछ खूबसूरत अल्फाज, कुछ गहरी भावनाएं और दिल को छू जाने वाली धुनें। तो चलिए कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ को भूल जाएं और खो जाएं गजलों की इस खूबसूरत दुनिया में हमारी ही रेडियो दोस्त आरती जी के साथ।

तुमसे जब से बिछड़े हैं हम, तुमसे जब से बिछड़े हैं हम, क्या सचमुच बिछड़ गए हैं हम? फिर वो एहसास, वो याद, वो तेरा छूना, तेरे हाथों कलम, तेरी आंखों की प्यास, क्या बिछड़ पाई हमसे? ये सब यही है मेरे पास।

0: ये सब यही है मेरे पास, बस तुम ही नहीं हो, कहीं नहीं हो, कहीं भी नहीं हो। नमस्कार, आदाब और दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 90.8 FM पर रेडियो टांटिया भील और रेडियो SN के साथ। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त हारती रॉय। अल्फाज से एहसास तक के इस खास मंच पर रोज हम नई कहानियों, सुरीली आवाजों और बहुत इंस्पायरिंग रूहों से मिलते हैं। जिंदगी नाम है हर एक पल को एक नए तरीके से महसूस करने का। और आज की हमारी महफिल की मेहमान इस बात की बहुत सुंदर मिसाल हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्थ कर्नाटका के बेहद खूबसूरत शहर बागलकोट की रहने वाली ज्योति खिवारे जी। ज्योति एक ऐसी खास और अनूठी शख्सियत है जो किसी एक बंधे बंधाए ढर्रे या रूटीन में नहीं बनती। दोस्तों, अपने एवर चेंजिंग मिजाज और तजर्बे हासिल करने का शौक की वजह से वो कभी पेंटिंग बनाती हैं, कभी एम्ब्रॉयडरी करती हैं, तो कभी सुरों की साधना में डूब जाती हैं। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में उन्होंने पहाड़ों की ठंडी हवाओं, बारिश और ट्रैकिंग से भी एक गहरा प्यार हो गया है। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाली, दिल से एक बंजारन और अंदर से एक मासूम बच्ची का दिल रखने वाली हमारी ज्योति का सफर वाकई बेहद दिलचस्प है। तो आइए बिना किसी देर के स्वागत करते हैं अल्फाज से एहसास तक की इस महफिल में, इस खास महफिल में हमारी बहुत ही खास दोस्त ज्योति घिवारे का। ज्योति आइए, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस महफिल में। आइए तशरीफ रखिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, क्या इंट्रोडक्शन दिया है आपने, क्या परिचय दिया है।
0: आप डिजर्व करती हैं।
1: और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मंच पर लेके आने के लिए अल्फाज से एहसास तक।
0: बहुत
1: श्योर की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।
0: ओह यस, बहुत जबरदस्त। मुझे तो आपसे बहुत दिल कर रहा है कि फटाफट आपसे बातें करना बस शुरू कर दूं। तो ज्योति, आइए फिर बातचीत का सिलसिला बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी बातें बहुत ज्यादा हैं और वक्त हमारे पास गालिबन कम होता है। तो ये बताइए कि आप नॉर्थ कर्नाटका के बागलकोट शहर से बिलोंग करती हैं, राइट? तो बागलकोट में गुजरे अपने बचपन की उन सुहानी यादों के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए जो आपके दिल के सबसे करीब हैं। और फिर उसके बाद आपने बताया था कि आपके अंदर आज भी एक छोटी सी बच्ची जिंदा है जिसे फेरी टेल, परियों की कहानियां देखना पसंद है, सुनना पसंद है। आज के इस दौर में भी आप अपने अंदर की उस इतनी मासूमियत को कैसे बनाए रखती हैं ज्योति
1: जी? अभी बागलकोट के बारे में आपने पूछा तो हाँ, मेरा पूरा बचपन वहीं गुजरा है। अभी मैं फिलहाल बैंगलोर में रहती हूँ, लेकिन वो बचपन की यादें कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो अगर सोचा जाए तो मुझे लगता है कि जगह इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो बचपन का जो वक्त था वो इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि बचपन में हम लोग ज्यादा कुछ सोचते नहीं हैं, बस एंजॉय करना जानते हैं हम लोग। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, वो जगह बहुत गर्म जगह है, वैसे तो मुझे पसंद नहीं है गर्मी, लेकिन जो यादें जुड़ी हुई है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वहाँ पे तो हम लोग जहाँ रहते थे वो एक छोटा सा चौल था, तो सारे घर एक दूसरे के साथ अटैच्ड थे, तो सारे बच्चे बाहर ही खेला करते थे पूरा दिन भर जब भी टाइम मिलता था। सबसे खूबसूरत टाइम तब होता था जब पावर कट्स होते थे। बिजली चली जाती थी क्योंकि तब ना पढ़ाई करनी है ना कुछ करना है, तो इवन रात के 8 बजे 9 बजे भी अगर पूरा अंधेरा भी है तो भी हम लोग बाहर ही खेला करते थे और हमारे जो मदर्स हैं वो लोग आपस में वहीं पे बाहर बैठ के बात किया करते थे। तो वो एक याद है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी।
0: बिल्कुल, बहुत सुहानी याद है आपने जिनका जिक्र किया। मैं विजुलाइज कर रही हूँ, ऐसा ही होता था। जब बत्तियां चली जाती थी, इन्वर्टर नहीं होते थे, जनरेटर नहीं होते थे, सब सब बाहर आ जाते थे। बहुत सुंदर।
1: और ऐसे आपके और एक सवाल पर, तो अभी अंदर के बच्चे को जिंदा रखने का मुझे नहीं पता कि कैसा है, बस है। जिंदगी ने इतने सालों में बहुत सारी रियलिटीज, बहुत सारी सच्चाई दिखाई है, लेकिन क्या करें, दिल तो बच्चा है जी, सच है। मानने को वो तैयार ही नहीं है कि यहाँ पे, अच्छा उसको पता है कि बुरे लोग भी है अच्छे लोग भी है यहाँ पे, लेकिन जो बच्चों का दिल होता है जैसे होता है वैसे ही, कि हर एक शख्स में अच्छा देखने की कोशिश करता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर कभी कोई मेरे साथ बुरा करता भी है तो भी ये दिल जो है ये कहता है कि शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी कि उसने ऐसा किया। तो ये यही कारण है मैंने बोला कि अभी तक मुझे ऐसा ही लगता है कि हर शख्स का कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, कोई मजबूरी होती है, कोई भी नहीं चाहता कि वो कुछ बुरा कर पाए दूसरे के लिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बहुत खूबसूरत बात कही ज्योति आपने, कि अपने अंदर के उस मासूम बचपन को संभाल कर रखना ही बहुत जरूरी हो जाता है और हर दौर पे आप फिर मुस्कुरा भी सकते हैं। बहुत खूब। तो आइए आपसे अब हम फिर दूसरा सवाल ये करते हैं ज्योति। आपने बोला कि आपको ना एक जैसी रूटीन या ढर्रे वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, यू नो मोनोटोनस भी, इसलिए आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करती रहती हैं। आपने बताया कभी आप पेंटिंग करती हैं, कभी आप एम्ब्रॉयडरी करती हैं और अलग अलग प्रोफेशंस को आजमाने में को भी आजमाने की आप शौकीन हैं। तो आप इसके बारे में हमारे को क्या बताना चाहेंगी, हमारे दोस्तों को? और फिर इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि आपने हाल ही में ट्रैकिंग और हरे भरे ठंडे मौसम और बारिश से आपको अचानक बहुत प्यार हो गया आपने बताया, और इस नए एडवेंचर की शुरुआत कैसे हो गई?
1: ओके, अभी अगर बोला जाए, सोचा जाए तो मुझे भी लगता है कि मेरा मन जो है ना बहुत चंचल है। एक चीज में मन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। अभी मैंने अगर पेंटिंग शुरू कर दिया तो हाँ वो पेंटिंग कंप्लीट करूंगी, लेकिन उसके बाद लगता है कि हाँ कुछ और करना चाहिए। फिर शायद एम्ब्रॉयडरी में हाथ डालूंगी, लेकिन एम्ब्रॉयडरी जो है जल्दी खत्म नहीं होती है तो ऑब्वियसली मैं छोड़ देती हूँ। फिर दूसरा कुछ और सिंगिंग, वो बट गाना जो है एक चीज है जो कभी चेंज नहीं होगा। तो मुझे बस चेंज चाहिए लाइफ में, और मेरा ये मानना है कि लाइफ में हमको पता है कि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज है जो कांस्टेंट है लाइफ में और वो है चेंज।
0: वाओ, क्या बात बोली आपने, क्या खूबसूरत बात कही आपने। एक ही चीज चेंजेबल है और वो है कांस्टेंट है और वो है चेंज, क्या बात है। वेरी नाइस।
1: और बात किया जाए अगर ट्रैकिंग की तो हाँ, ये है ना हरा भरा मौसम, ठंड का मौसम मुझे पहले से ही पसंद था, स्पेशली जब बारिश होती है तो पता नहीं कहाँ से मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। तो उनकी आवाज भी सुन तो खुश हो जाती हूँ। घर पे हम लोग अभी यहाँ पे फ्लैट में रहते हैं तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आवाज जैसे ही आती है बारिश की तो मैं सीधे बालकनी में चली जाती हूँ कि अरे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो इतना खुशी मिलती है मुझे। और ट्रैवलिंग करते थे हम लोग बहुत ज्यादा, तो हमारा एक रूल है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे हमेशा बारिश के टाइम पे एक ट्रिप तो करना है
0: जी।
1: तो जब भी मैं जाती थी इसे ट्रैकिंग जैसे ऐसे ट्रैवल पे, तो दूर से देखा करती थी कि पहाड़ी के ऊपर कितना सुंदर सीन है और जंगल के अंदर कितना सुंदर दिख रहा है। तो ऑलवेज मेरे को एक क्यूरियोसिटी सी होती थी कि यहीं से इतना सुंदर है तो अंदर कैसे होगा, वहां अगर चोटी पे जाऊंगी तो कैसा लगेगा।
2: बिल्कुल।
1: तो वहीं से मुझे ट्रैकिंग का शौक था, लेकिन कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से मैं नहीं जा पाई। बट रिसेंटली मैंने अपने हेल्थ के बारे में ध्यान देना शुरू किया एंड आई हैव बिकम फिट नाउ। तो जैसे ही फिटनेस आ गई मैं शुरू कर दी ट्रैकिंग जाना।
2: अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत खूब। एक जगह ठहरने के बजाय जिंदगी के हर रंग को महसूस करना ही तो असली जीना है। आप शायद इसी में यकीन करती हैं, है ना? तो दोस्तों आइए अब इसी नोट पर सुनते हैं ज्योति की मखमली आवाज में प्रोग्राम की हमारी पहली गजल, झुकी झुकी सी नजर। यही आपने गा के भेजी है, बेकरार है कि नहीं दबा दबा सा। ज्योति आप क्या हमको इसको गा के सुनाना चाहेंगी?
1: डेफिनेटली।
2: हाँ, दो लाइन
1: की। झुकी सी नजर, बे

वाह क्या बात, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत सुना आपने दोस्तों। और आइए आप सुनते हैं ज्योति की आवाज में म्यूजिक के साथ ये खूबसूरत सी गजल।

0: वाह ज्योति, क्या बात है, आपके अनप्लग्ड वर्जन की तरह आपकी गाई हुई ये गजल वाकई बहुत खूबसूरत और माहौल को
1: शुक्रिया।
0: बहुत खास बना दिया। थैंक यू सो मच ज्योति। अब आप ये बताइए कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जहां आपका एक बहुत बड़ा सपना आपने बताया कि पूरा होते होते रह गया था, और उसकी तरह का सवाल ये है कि आपके पापा एक एक्स सर्विसमैन थे और आप बचपन से ही आर्म फोर्स ज्वाइन भी करने चाहती थी और सपना देखती थी। फिर आपने ग्रेजुएशन के दौरान आपके सीधे हाथ की जो ट्राइसेप मसल रिमूवल के बाद आपके उस सपने पर उसका क्या असर पड़ा? लेकिन जैसे आप आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी लेकिन आपकी ट्राइसेप मसल रिमूवल आपकी सर्जरी हो गई, तो उसके बाद आपके सपने पर इसका क्या असर पड़ा? और ये जानते हुए भी कि ये एक मुश्किल राह है, जब आप सिलेक्शन कैंप में गई और इनिशियल राउंड्स क्लियर करके मेडिकल राउंड तक भी पहुंच गई, तो उस पल आपको कितनी सेटिस्फेक्शन महसूस हुई होगी ज्योति? कुछ शेयर करना चाहेंगी उस एहसास को?
1: जी, बहुत ही मुश्किल टाइम था, क्योंकि बचपन से जो सपना देखते हैं हम लोग, जब पता चलता है कि वो पूरा नहीं होने वाला है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो बहुत ही बुरा लगता है। जैसे ही बताया डॉक्टर ने कि ट्राइसेप मसल निकाला गया है, क्योंकि ये मुझे पता चला जब ड्रेसिंग निकाली गई तभी मुझे पता चला, अदरवाइज मुझे नहीं पता था कि पूरा मसल ही निकाल चुके हैं। पर जैसे ही मैंने वो देखा तब आंखों में आंसू तो आ ही गए थे, ऑब्वियसली तो बहुत बुरा लगा था। और इसके बावजूद जब सिलेक्शन कैंप का जो मैसेज आया, तो मैं आई वाज इन अ डिलेमा कि जाऊं कि ना जाऊं। फिर मेरे डैड ने ही मुझे बताया, मोटिवेट किया कि हाँ, हमको पता है कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मेडिकल राउंड में रिजेक्ट ही जाओगी, लेकिन एटलीस्ट वो 4 दिन का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो बोले कि 4 दिन जो है तुम जाओ जियो, वो जो सोल्जर का जो लाइफ होता है यू विल बी एबल टू सी, वो देख पाओगी तुम, एटलीस्ट 4 दिन तक जाके आओ, अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मोटिवेट किया और मैंने अप्लाई किया, गई, और वो 3 दिन मैंने पूरा अपना हाथ ढका, किसी को पता भी नहीं चला कि मेरे सीधे हाथ की सर्जरी हुई है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करके उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो किसी को नहीं पता था कि ऐसे हुआ है, ओनली 4th दिन जब मेडिकल राउंड हुआ तभी को पता चला कि ऐसा है, बट उनके भी रूल्स होते हैं तो जो
0: ठीक
1: है
0: है।
1: तो भेजना
0: नहीं, वो
1: पड़ा।
0: तो या
1: बट हाँ, मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ, थोड़ा सा सैड थी लेकिन प्राउड फील हुआ कि एटलीस्ट मैं यहाँ तक तो पहुंची, मतलब मैं जा सकती थी अगर ये नहीं हुआ होता तो।
0: सही बात है, आपने कुछ पल के लिए सही, कुछ दिन के लिए सही, कुछ लम्हों के लिए उस सारे एहसास को जिया तो सही ना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ज्योति, ये बताओ कि हम जरा ये देखते हैं कि आपके दिल के एक बेहद खास और सुरीले एहसास के बारे में बात करते हैं। सोनू निगम जी तब मशहूर भी नहीं हुए थे, राइट? और तब शिवरात्रि के एक टीवी प्रोग्राम में उन्हें पहली बार सुनकर आपको उन पर क्रश हो गया, आपने बताया। और जब उनका एल्बम दीवाना रिलीज हुआ तो उनकी गायकी ने आपको किस तरह अपना मुरीद बना लिया था? क्या असर हुआ आपके ऊपर?
1: मैंने उनको पहली बार गाते हुए सुना था, मैं एक टीनेजर थी, हाई स्कूल में थी शायद, और ऐसे टीवी पे शिवरात्रि का प्रोग्राम आ रहा था, तो ये आए और सबको बताया कि वो काफी हैंडसम भी है, और जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया मैं ऐसे बैठ गई सुनती हुई कि कितना सुंदर गाते हैं ये, तो तभी शुरू हो गया था मुझे कि बहुत अच्छे लगते थे वो मुझे। और जब उनका एल्बम रिलीज हुआ दीवाना, उसके ऊपर वो एल्बम जो तब उस टाइम पे कैसेट्स और सीडीज आया करते थे, तो उसके ऊपर उनका जो फोटो था, इतना सुंदर फोटो था, वो देखती रह गई। और गाने भी इतने सुंदर गाने थे, इतने सोलफुल गाने थे, इतने इमोशंस थे वो गाने में, और आपको पता है वो उम्र भी ऐसे ही होती है ना, तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, और आज तक वो सारे गाने मुझे बहुत पसंद है,
0: वेरी
1: अभी भी
0: नाइस।
1: सुनती हूँ मैं उनको।
0: सोनू निगम किसको नहीं पसंद है, उनकी आवाज में वो रूहानी सोज ही है जो हमको खींच के ले जाती है उनकी आवाज में।

0: वाह, कितना सुकून है ज्योति आपकी आवाज में, जो एहसास है सुनने वाले को, सब सुनने वाले के मन को ना एक शांत सा कर देता है। बहुत बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर गाया ज्योति। अब आप हमें ये बताइए कि फिल्मों और संगीत में आपकी पसंद काफी यूनिक है। आमतौर पर कला से जुड़े लोग संजीदा फिल्म देखते हैं, ठीक है, लेकिन आपको तो साइफाई और थ्रिलर शो देखना पसंद है, वो कैसे? और फिर जहां आप मीनिंगफुल गाने पसंद हैं आपको, वहां आप अच्छे मूड में फास्ट डांस नंबर्स पर झूम भी लेती हैं। मतलब दोनों चीजों में कितना विरोधाभास है ना, अपने इस मूड कंट्रास्ट के बारे में हमें बताइए। अब
1: देखिए, संजीदा फिल्में एक्चुअली क्या लाइफ कम संजीदा है कि और संजीदा देखने की जरूरत है मुझे जाके?
0: Exactly.
1: वहां तो जाते हैं वो जो 2.5 घंटे या 3 घंटा हम लोग स्पेंड करते हैं वहां से, तो कहीं और चले जाते हैं ना ये रियलिटी को छोड़।
0: oh, yes.
1: साइफाई मूवीज जो है टोटली डिफरेंट जानर है। वो होगा भी या नहीं होगा, शायद फ्यूचर में हो सकता है, तो वो जो नई चीज एक्सप्लोर करने का जो मेरा जो एटीट्यूड है, जो पहले हमने डिस्कस किया, वो भी रीजन है यहाँ पे भी एक्चुअली। तो समथिंग न्यू या पुराने वाले वही स्टोरीज क्यों देखना है?
0: एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट।
1: और ये मीनिंगफुल गाने, हाँ, जब मैं गाती हूँ तो मुझे मीनिंगफुल गाने गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन जब भी कोई फास्ट नंबर बजता है तो मेरे पैर अपने आप थिरक उठते हैं।
0: अरे वाह,
1: मुझे लगता है कि मुझे डांस इतनी अच्छे से नहीं आती है, ठीक है कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा लगता है डांस करना, तो पूरा मूड चेंज हो जाता है सडनली।
0: वाकई यू आर एब्सोल्युटली राइट। खास तौर पे कोई जो इंग्लिश नंबर्स होते हैं उनकी बीट इतनी जबरदस्त होती हैं कि आप लेटे लेटे भी उठ के आपका दिल करता है कि झूमने लग जाओ उनके साथ। बहुत बहुत वाकई बिल्कुल सही बोला आपने, आपका जवाब एकदम दुरुस्त है। मूड के हिसाब से हर रंग का मजा लेना ही तो एक सच्चे कला प्रेमी की पहचान है एक्चुअली। बहुत अच्छे। अच्छा ज्योति, अब आगे हमारा जो सवाल है वो ये है कि आपने बताया कि आपकी बकेट लिस्ट में कुछ बहुत रोमांटिक प्लान्स हैं, रोमांचक, यू नो नॉट रोमांटिक बट रोमांचक। इस साल के एंड में आप एवरेस्ट बेस कैंप EBC ट्रैक पर जाने की आपकी तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां कैसी चल रही हैं? और फिर दूसरी ओर आप खुद को दिल से एक बंजारा मानती हैं, और जिसका सपना है बिना किसी प्लान और बिना किसी डेडलाइन के पूरी दुनिया की रोड ट्रिप पर निकल जाना। कहां आप बेस कैंप एवरेस्ट पे जाने की प्लानिंग कर रही हैं और दूसरी तरफ आप रोड ट्रिप पर निकल जाना चाहती हैं बिना किसी डेडलाइन के। इस सपने के बारे में बताइए आप।
1: हाँ, एवरेस्ट बेस कैंप जो है, जैसे ही मैंने ट्रैकिंग शुरू की तभी से ये मन था कि मुझे एवरेस्ट बेस कैंप पे जाना है। तो मैंने जब इंक्वायरी की तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने पहले भी हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स किया है? मैंने बोला नहीं, तो बोले क्योंकि आपको डायबिटीज है तो हमको पता नहीं है कि आपकी बॉडी वो कम ऑक्सीजन में कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, तो पहले एक और दूसरा कोई शॉर्ट ड्यूरेशन वाला हाई एल्टीट्यूड ट्रैक अप करके आइए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो यहाँ पे भी जा सकते हैं।
0: ओके,
1: तभी से था और मैंने एक हाई एल्टीट्यूड ट्रैक खत्म कर लिया विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आराम से जाके आ गई। पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कंप्लीट कर लूंगी ये वाला ट्रैक भी। और तैयारियों के लिए मैं कर रही हूँ अभी रोज 1 घंटा वॉकिंग और 1 घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चल रहे हैं।
0: अरे वाह,
1: तो होपफुली जा पाऊंगी मैं अगर कुछ और प्रॉब्लम ना आए तो, फिंगर क्रॉस्ड।
0: या श्योर, व्हाई नॉट, नहीं आएंगी।
1: और दूसरा सपना मेरा है ये जो ट्रिप का है कि हाँ, हमेशा जब भी हम बाहर जाते हैं तो हड़बड़ी में जाते हैं और वापस आ जाते हैं कि हाँ, आज निकलना है सुबह, रात को रुकना है और कल शाम तक वापस, 2 दिन का ट्रिप बेसिकली। मुझे वो पसंद नहीं है, चलते जाना है, गाड़ी लो उसमें पेट्रोल भरो और चलते रहो, जहाँ रात हो जाए उधर हॉल्ट कर लो।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जिस भी विलेज में रहे उस विलेज के लोगों से बातचीत करो, उनका जो कल्चर है उसको समझो, ट्रेडिशन को समझो, म्यूजिक को समझो। ये वाला एक टाइप का ट्रिप करने का मुझे बहुत ज्यादा मन है, बट आई डोंट नो हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि
2: ये तो बहुत रूम में करने वाली बात है ना, कि टाइम लिमिट ना हो तभी पॉसिबल है।
1: टाइम लिमिट भी नहीं होना चाहिए और पैसे का भी लिमिट नहीं हो सकता ना।
2: टाइम लिमिट तो फिर मिल जाती है, पैसा लिमिट भी बहुत जरूरी है। बहुत खूबसूरत प्लान है आपका, मेरे को कुछ खुद एडवेंचरस बहुत लग रहा है, मुझे भी बहुत रोमांचक लग रहा है। जाएंगी तो मुझे साथ ले जाना।
1: चलिए दोनों साथ चलते हैं, आप वहाँ इंटरव्यू ले लीजिएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल, सोचा जा सकता है। तो चलो फिर, बिना किसी बंदिश और बिना समय की सीमा की, पूरी दुनिया को देखना, ये ख्याल ही इंसान के मन को एक एक एक अजीब सी आजादी के ख्याल से, एहसास से भर देता है कि ऐसे जो से ऐसे बाहें फैला के खुली हवा में सांस लेना, जैसे वाकई बहुत बहुत कुछ कर लिया है। बहुत खूबसूरत ये जज्बा है और एहसास है। तो इसी नोट पर आइए दोस्तों, सुनते हैं ज्योति ने जो इतनी खूबसूरत सी गजल गा कर भेजी है। कोई फरियाद तेरे दिल पे उठी हो जैसे, ये गजल सुनते हैं।

0: वाह ज्योति, बहुत खूबसूरत गाया आपने। तुम बिन की ये गजल हर दिल के दर्द को सहला देती है और तुमने इसे बहुत गहराई और ठहराव के साथ गाया है, बहुत खूबसूरत। ज्योति, अब जरा बात करते हैं आपके अपने प्यारे से संसार और आपकी शख्सियत के बारे में। आप मानती हैं कि आप थोड़ी इंट्रोवर्ट हैं, शर्मीली हैं, कम बोलने वाली हैं और फिर आप नए लोगों से बातचीत शुरू करने में थोड़ी हिचकिचाहट भी होती है, आपको हेजिटेट करती हैं। अपने इस इंट्रोवर्ट मिजाज के साथ आप अपनी ट्रैवलिंग और आउटडोर एक्टिविटीज का तालमेल कैसे बैठाती हैं? फिर आपका अपना अपने प्यारे से परिवार के बारे में भी बताइएगा। आपकी 21 साल का खूबसूरत आपका मैरिड लाइफ है, आपकी एक 17 साल की बच्ची है और आपकी 4 साल की एक कैट डॉटर भी है, तो बताइए इन सब बातों के बारे में क्या सोचती हैं आप?
1: हाँ, जैसे कि आपने बोला मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है नए लोगों से बात करने में, लेकिन हाँ मैं जब भी आउटडोर एक्टिविटीज या फिर ट्रिप पे जाती हूँ तो आपको पता होगा कि एक चीज है जो सब लोग करते हैं ऐसे ट्रिप्स पे, म्यूजिक, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, तो मेरा जो आइस ब्रेकिंग है वहां से शुरू होता है। तब तक मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, लेकिन जब म्यूजिक और डांस की बारी आती है तो मैं पूरा पार्टिसिपेट करती हूँ और वहां से वो लोग खुद बात करना शुरू कर लेते हैं मेरे साथ, इवन इफ आई डोंट टॉक मच, मैनेज कर लेती हूँ।
0: ठीक है।
1: और रही मेरे परिवार की बात, 21 ईयर्स मैं मैरिड फॉर 21 ईयर, शादी हो चुकी है और मेरे बेचारे हस्बैंड 21 साल से मेरे इस एटीट्यूड के साथ, मेरे चेंज वाले नेचर के साथ, आई कॉल माय सेल्फ अनस्टेबल, ऐसे नेचर के साथ वो बेचारे झेल रहे हैं मुझे।
0: Oh my God.
1: हाँ, ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, मैं भी झेल रही हूँ उनके घर आते

0: वेरी नाइस.
1: मेरी 17-year-old डॉटर है, वो भी सेकेंड पीयूसी की तैयारी कर रही है. टीनेजर है तो एज यूजुअल वही क्लासेस होते रहते हैं, लेकिन अभी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और दोस्तों के बीच में झगड़ा होता रहता है.
0: चलता है बिल्कुल.
1: और मेरी 4 साल की एक छोटी सी कैट है मेरे पास, मोमो. बहुत ही क्यूट थी और उसके बारे में भी एक प्रोग्राम आया था.
0: अच्छा. अलग से प्रोग्राम.
1: वो एक रैग बॉल है, मेरी आंखों वाली.
0: वाह, बहुत खूबसूरत जिंदगी, मतलब बहुत खूबसूरत सी दुनिया है आपकी ज्योति. आई मस्ट से कम बोलना और अपने चुने हुए अजीज लोगों के साथ खुश रहना भी एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है. और आपकी कैट डॉटर की बात ने तो चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान ही ला दी है. मुझे याद आ रहा है आपका प्रोग्राम वो वाला. तो इसी नोट पर ज्योति सुनते हैं आपकी गाई हुई ये खूबसूरत सी गजल. क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, यही है ना. तो आइए दोस्तों सुनते हैं ज्योति की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल.

0: बहुत खूबसूरत, बेहद सुरीली और तासीर से भरी हुई आपकी गायकी है। बहुत ही सुंदर आपने गाया है इसको। और ज्योति, अब हम अपनी सुहानी महफिल के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। आपने हमेशा अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया और हर परिस्थिति का आपने मुस्कुरा कर सामना किया। हमारे रेडियो टांटिया भील और रेडियो एसएन के सुनने वाले दोस्तों को, हमारे एसएन फैमिली के सब मेंबर्स को आपका क्या खास पैगाम होगा, क्या कहना चाहेंगी आप?
1: मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, परिस्थितियां आती है लाइफ में, कभी कभी मुश्किलें आती रहेंगी, बट जीना नहीं भूलना चाहिए हमको। मुश्किलें तो आएंगी और जाएंगी भी, और दूसरों को बिना सोचे जज ना करें। पता नहीं हमको कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और माफ करना सीखिए दूसरों को भी और खुद को भी।
2: So
1: जो भी अपने गलत डिसीजन लिए होंगे, अपने आप को भी माफ करना सीखिए, तो आप खुश रह पाएंगे लाइफ में।
0: वाकई ये तो एहसास बहुत खूबसूरत है, ये तो ख्याल ही बहुत खूबसूरत है। हम अक्सर खुद के लिए भी बहुत कठोर हो जाते हैं और नहीं माफ कर पाते। आपने कितनी खूबसूरत बात बोली है कि दूसरों को भी माफ करो और खुद को भी माफ करो। बिल्कुल खूबसूरत, बहुत। और फिर जाते जाते हमारे दोस्तों को आप बाय बाय बोल दीजिए, फिर इसके बाद हम आपकी आखिरी प्रोग्राम की आखिरी गजल पर जाते हैं।
1: थैंक यू सो मच मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए आरती जी, एंड आई थैंक ऑल द लिसनर्स, जो भी सुनने वाले हैं, शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ ये एक घंटा बिताने के लिए, थैंक यू।
0: और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ज्योति कि आपसे बातचीत करके सबको बहुत मजा आया है, और आपकी इतनी खूबसूरत गजलें सुन के वो मजा मैनीफोल्ड बढ़ गया है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, हमारी महफिल को सजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक में आकर इतनी सुंदर और विचारशील और प्रेरणादायक बातें हमारे साथ ज्योति ने अपनी शेयर की हैं। तो अब उनकी गाई हुई ये पांचवी और अंतिम आखिरी शाहकार गजल सुनते हैं, जो कि आशा ताई ने गाई है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, आइए सुनते हैं।

0: वाह, क्या खूबसूरत गाया है दोस्तों। ज्योति ने इस नगमे को गाकर जैसे महफिल में चार चांद लगा दिए हों। दोस्तों, आज ज्योति तिवारी जी से बात करके ये एहसास और गहरा हो चला है कि जिंदगी किसी एक लकीर पर सीधे चलने रहने का नाम नहीं है। मैं भी वैसे इस बात को मानती हूँ, अपने सपनों को हर उम्र में पूरा करना, नई राहें तलाशना, नेचर के करीब जाना और अपने अंदर के उस मासूम बचपन को जिंदा रखना ही तो असली जीना है। आज की इस नफीस और सुहानी महफिल के नाम निदा फाजली साहब का यह बेहद मुकम्मल और दिल को छू लेने वाला शाहकार शेर नजर करती हूँ। दोस्तों, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आदाबर, नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, ये मौजू शेर है। नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। आदाबर। इसी प्यारे से ख्याल और उम्मीद के साथ अब आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय आपसे चाहती है इजाजत। कल फिर मिलूंगी इसी वक्त किसी और नए एहसास के साथ, किसी और नए अल्फाज के साथ, किसी और नई कहानी के साथ और कुछ नए सुरों के साथ। तब तक आप सुनते रहिए ना 90.8 FM पर रेडियो टांडिया भील और रेडियो SN। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते भी रहिएगा, अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों से बहुत मोहब्बत कीजिएगा।
1: नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के श्रोताओं के लिए झाबुआ में चल रहे स्वास्थ्य शिविर के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। ज्ञात हो कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी, स्वास्थ्य विभाग झाबुआ एवं श्री अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क प्रिवेंटिव स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर दिनांक 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2026 तक, समय प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक, स्थान शासकीय नर्सिंग कॉलेज बाढ़ कुआ रोड झाबुआ पर आयोजित किया गया है। इस शिविर में इंदौर के प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा निशुल्क परामर्श एवं परीक्षण किया जाएगा, जिसमें कैंसर रोग, स्तन रोग, सर्वाइकल कैंसर, दंत एवं मुख कैंसर, हृदय रोग, शिशु हृदय रोग, हार्मोन रोग, किडनी रोग, मूत्र रोग, मनोरोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, नाक कान गला रोग, त्वचा रोग, मेडिसिन एवं सर्जरी आदि के विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। साथ ही आधुनिक मशीनों के द्वारा स्तन कैंसर की जांच, सर्वाइकल कैंसर की जांच, पेप स्मेयर, बायोप्सी, कोलोनोस्कोपी, सोनोग्राफी, 2D इको, फाइब्रोस्कैन, लीवर की जांच, दांतों की जांच, BP, शुगर, ECG आदि जांच भी निशुल्क की जाएगी। मरीजों के लिए विशेष रूप से यहां निशुल्क परिवहन, लाने ले जाने की सुविधा, निशुल्क जांच एवं आयुष्मान योजना के अंतर्गत निशुल्क उपचार की सुविधा भी उपलब्ध है। शिविर में महिलाओं के कैंसर की रोकथाम के लिए मध्य भारत की अत्याधुनिक उम्मीदों वाली बस के माध्यम से कैंसर एवं नेत्र रोगों की निशुल्क जांच एवं परामर्श भी दिया जाएगा। आज इस सुनहरे अवसर का अवश्य लाभ उठाएं, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर की जानकारी अवश्य प्रदान करें। शिविर में अपना आधार कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड अवश्य साथ लेकर जाएं। शिविर के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए

0: आप मोबाइल नंबर 8817771598 एवं 9617730017 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो शिविर का स्थान व समय याद रखें और विशेषज्ञ डॉक्टरों के परामर्श का लाभ उठाएं। धन्यवाद।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
2: किसान भाइयों एक बार फिर था बहुत बहुत स्वागत करिए है तमार सबूनो रेडियो की जो भी जानकारी आपून इना रेडियो टांटा भील 90.8 FM ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम थी मळे है तिनी जानकारी ने आपू आपरी तक के सीमित नहीं रखी तिनी जानकारी ने आपू आपड़ा पड़ोसी किसान भाइयों हाथे भी साझा करिए ताकि आपू तीन थी भी कई हिक मिली सके अन आपड़ी हिक थी त्यो भी आपड़ा खेतरों में बदलाव लावी सके। तो किसान भाइयों खेतीवाड़ीना इना कार्यक्रमनी आपू शुरुआत करी है अने आजना इना कार्यक्रम में जो भी आपू हिक हूँ त्यों आपू अपना खेतर में तीनो उपयोग करूँ खाली हामली ने इनी चीज़ों ने भूलवानू नहीं है जो भी जानकारी है तीनी जानकारी पर आप गौर करवानी जरूरत है अने अपन किसान भाइयों ने तीनी जानकारी लीन ते खेती करवानो जरूरत है। तो किसान भाइयों आप વધુ સમય ના લેતે હવે આજના એના કાર્યક્રમની આપું વાંતી શરૂઆત કરીએ છે।
1: રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM ટાંટિયા ભીલ રોજ સાંજે 6-8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
3: ते हैं और पहले जैविक खेती के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दवाज सबसे पहले तो हमें बताएं कि आज की तारीख में क्यों जरूरी है क्यों आवश्यक है कि जो किसान है वो जैविक खेती को अपनाए क्या महत्व है इसका।
4: मोनालिसा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारा किसान है आज उसकी उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है उसको उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं मिल पाती है साथ साथ में जो उपभोक्ता है वो काफी इस समय चाहता है कि उसको ऐसा भोजन मिले जिसमें किसी प्रकार के जहर का अंश ना हो यानी कि रेजिड्यू ना हो इसलिए जैविक खेती की जो बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही है और जैविक के जो पदार्थ हैं उनका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है उपभोक्ता उसको लाइक करता है और साथ साथ में किसान की उत्पादन लागत कम होती है मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है प्राकृतिक जो संसाधन वो उसका सही उपयोग होता है और साथ साथ में जो छोटे और मझोले किसान है उनको इससे ज्यादा लाभ है क्योंकि ऐसे किसानों के पास पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं अगर वो जैविक खेती करते हैं लेकिन जैविक खेती करने के लिए उनको कुछ बातों का खास ध्यान देने की आवश्यकता है तो उसी की आज हम चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई इसमें बढ़ चढ़ के अपने सवाल पूछें जिससे हम इस विषय पे अच्छी तरह से बातचीत कर सकें।
3: जी जरूर। तो विस्तार से हमारी चर्चा होगी इस कार्यक्रम में जैविक खेती और इसमें बायोगैस स्लरी के महत्व को लेकर और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े अपने सवालों के साथ। आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर।
5: जैविक खेती में बायोगैस स्लरी का काफी महत्व होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ रूपांतरण गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है। इसे ही बायोगैस स्लरी कहते हैं। इस स्लरी को किसान खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी तरह की घास या बीज नहीं होता है जो खेतों के लिए काफी उपयोगी रहता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में में 50 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक साल में डाला जाता है। उस गोबर में 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद मिल जाती है। ये खेती के लिए काफी अच्छी खाद मानी जाती है। इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस और 1% पोटाश होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद कुछ हिस्सा नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होता है। ऐसे में अगर इसका तुरंत इस्तेमाल खेत में सिंचाई नाली के जरिए किया जाए तो इसका फायदा रासायनिक खाद की तरह फसल पर तुरंत होता है और उत्पादन में 10 से 20% बढ़त हो जाती है। बात अगर जैविक खेती की करे तो जैविक खेती कृषि की वो पद्धति है जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है। भूमि का आहार जीवांश होता है। जीवांश गोबर, पौधों व जीवों के अवशेष को खाद के रूप में भूमि को प्राप्त होते हैं। जीवांश खाद के इस्तेमाल से पौधों को समस्त पोषक तत्व मिल जाते हैं। साथ ही इनके इस्तेमाल से उगाई गई फसलों पर रोगों और कीटों का प्रकोप काफी कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती। इसका परिणाम ये होता है कि फसलें पूरी तरह से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती है।
3: जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अगले मेहमान का और बांस की खेती के बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अजय ठाकुर, आपसे सबसे पहले हम बांस के बारे में जानना चाहते हैं। बांस से जुड़ी हुई कई रोचक बातें हमने सुनी है, जैसे कि बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है बांस, और हमें बताएं कि इसकी खेती के क्या फायदे हैं किसानों के लिए।
6: जी हाँ, बांस के नेचुरली आपने जैसा कहा फास्टेस्ट ग्रोइंग जिसको बोलते हैं, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। और एक साल में आपको एक रोचक तथ्य बताऊं कि एक साल में अपनी पूरी लंबाई ले लेता है। अगले साल ये बढ़ता लंबा नहीं होता है, तो जितना लंबा होना है इससे हो जाता है वो। दूसरा इसका फायदा क्या है कि इसकी मोटाई भी 2 साल में पूरी हो जाती है, तो ये तैयार 2 साल तैयार होने वाला कोई भी वृक्ष यानी लकड़ी दान करने वाला पौधा नहीं है। जी। अगर आप कंपेयर करेंगे कि सुगर केन की जो हम खेती करते हैं गन्ने की, उसकी भी हम 2 साल की पैदावार लेते हैं, और गन्ने और बांस की तुलना करें तुलना नहीं है। आज के डेट में बायोमास को प्रोड्यूस करने वाला सबसे अच्छा पौधा है। और भारत जो है एक कास्ट में डेफिसिट कंट्री है, मतलब हमको अभाव है पूरे। आपको शायद पता होगा कि हम 50,000 लकड़ी का आयात करते हैं, उसमें बांस भी शामिल। अब हम इतना सारा आयात करते हैं तो बांस अगर हम ऐसा तेज बढ़ने वाला पौधा लगाते हैं,
3: बिल्कुल, तो काफी जो आयात है हमें करना पड़ता है। ऐसे में अगर किसान बांस की खेती में रुझान ले, बांस की खेती को अपनाए, तो आयात पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम किया जा सकता है। और साथ ही किसानों के लिए ये काफी फायदेमंद है क्योंकि बांस के कई तरह के उपयोग हैं और ऐसे में जो उसकी मांग है वो काफी अच्छी है बाजार में, तो बांस की खेती को अपनाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार से जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
5: पारंपरिक खेती से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो बांस की खेती आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। घटते वन क्षेत्र और लकड़ी के बढ़ते इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए भी बांस काफी मददगार साबित हो सकता है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नर्सरी में पौध मुफ्त दिए जाते हैं। इस समय बांस की करीब 136 किस्में मौजूद हैं। अगर इसकी खेती को व्यावसायिक रूप देना है तो क्षेत्र और इस्तेमाल के हिसाब से इसकी किस्मों का चयन करें, लेकिन उनमें से 10 तरह की किस्मों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। बांस की खेती में सबसे अच्छी बात ये है कि बांस की फसल 40 साल तक चलती रहती है। बांस की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती, इसे किसी भी सूखी मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में बांस के पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। बांस के पौधों पर जलवायु परिवर्तन का भी कोई खास असर नहीं पड़ता, ज्यादा ठंड और दलदल में भी पौधे ठीक से वृद्धि कर लेते हैं। बांस के बीजों की रुपाई पौध के रूप में की जाती है। इसके लिए नर्सरी में बीजों को तैयार कर लिया जाता है। नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए क्यारियों को तैयार किया जाता है। इसके बाद 30 सेंटीमीटर की गहरी खुदाई कर गड्ढों में सड़ी गोबर की खाद को भर दिया जाता है और गड्ढों की सिंचाई कर दी जाती है। बीजों को रोपाई से पहले करीब 8 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें और सतह पर बैठे बीजों की रोपाई क्यारियों में कर दें। रोपाई की बात करें तो बांस के पौधों की रोपाई खाली पड़ी जमीन या फिर खेत किनारे बाड़ की तरह की जाती है। बांस के पौधों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। इसके पौधों को सिर्फ शुरू में ही नमी की जरूरत होती है। बांस के पौधों को खरपतवार से बचाना जरूरी है, क्योंकि खरपतवार बांस की बढ़वार को पूरी तरह से रोक देती है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकालते रहे।
3: बांस की खेती पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जैविक खेती के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दबास आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि जैविक खेती जो है वो उत्पाद की गुणवत्ता के लिहाज से हो या पर्यावरण की दृष्टि से हो या फिर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की दृष्टि से हो, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन किसानों के मन में संशय ये रहता है कि रासायनिक खेती के मुकाबले अगर जैविक खेती को अपनाते हैं तो उत्पादन कम होगा और ऐसे में उन्हें नुकसान की चिंता होती है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: ये चिंता हमारे किसानों को काफी लगी रहती है, लेकिन अगर नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान कब होता है? जब हम पौधों को सही मात्रा में पोषण नहीं दे पाते, और वो पोषण कब नहीं दे पाते हैं? जब हम सही खाद का सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमारे जितने भी किसान भाई उनके पास पशु हैं
3: जी,
4: उन पशुओं से जो गोबर मिलता है उसको हम बायोगैस सलरी के कन्वर्ट कर ले, यानी कि बायोगैस प्लांट के माध्यम से उसका खाद बनाए, तो एक तो खाद की गुणवत्ता अच्छी होगी
3: जी,
4: दूसरा उसमें किसी प्रकार के खरपतवारों के बीज नहीं होंगे, और तीसरी बात है इस खाद को खड़ी फसल में
3: जी
4: पानी के साथ दिया जा सकता है। इनके जब आपको नाइट्रोजन के तौर पे यूरिया देते हैं तो उसकी जगह अगर आप इस खाद को जैविक खेती में देते हैं तो आपके पौधों को सही मात्रा में पोषण मिलेगा
3: जी।
4: और जब पोषण सही मात्रा में मिलेगा, किस्म अच्छी है, खेत अच्छा है, तो आपकी उत्पादन कम नहीं होगा बल्कि उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन उत्पादन तभी बढ़ेगा जब आप सही मात्रा में सही समय पे सही खाद देंगे
3: जी।
4: और ये जो बायोगैस सलरी होती है इसमें खाली एक पोषक तत्व नहीं होता, खाली नाइट्रोजन, बल्कि हमारे पौधों को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो सभी के सभी पोषक तत्व इस खाद के अंदर संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। और जब पौधे को सभी के सभी पोषक तत्व मिलते हैं तो पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है, चाहे वो जड़ों की हो चाहे पत्तों की हो, और जब बढ़वार अच्छी होगी तो उत्पादन भी अच्छा आएगा। और क्योंकि किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं है तो इस प्रकार की फसल में बीमारी और कीड़े का प्रकोप भी कम होता है। और एक और खास बात है, जब इस खाद का हम प्रयोग करते हैं बायोगैस सलरी का, तो ये हमारी मिट्टी के अंदर तीन तरह से प्रभावित करती है
3: जी।
4: एक तो मिट्टी की जैविक गुणवत्ता को बढ़ाती है, मिट्टी की फिजिकल यानी कि जो भौतिक गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाती है, और साथ साथ में मिट्टी की जो रासायनिक गुणवत्ता है उसमें बढ़ावा करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हम पानी का उपयोग करते हैं तो कम पानी में भी हम अधिक पैदावार ले पाएंगे, यानी कि अगर जैविक खेती करेंगे तो हमारे पास पानी की भी बचत होगी और हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो घटने की बजाय बढ़नी शुरू हो जाएगी, और फसल का उत्पादन कम होने के बजाय अधिक होगा, और साथ ही साथ जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और इस तकनीक में एक और फायदा ये होता है बायोगैस में कि हमारे किसानों को घर में खाना बनाने के लिए बहुत ही स्वच्छ और अच्छी गैस मिल जाएगी, अच्छा खाद मिल जाएगा। यानी कि किसान की दो आवश्यकता, एक तो ऊर्जा की आवश्यकता, दूसरा खाद की आवश्यकता, उन दोनों की आपूर्ति ये करता है। और यह तकनीकी हमारे छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि छोटे और मझोले किसानों के पास में पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और साथ साथ में उनके पास भूमि के जो क्षेत्रफल कम है, और इस खेती में इस खाद का अगर प्रयोग
3: छोटे किसान है उनके लिए ये काफी उपयोगी है। डॉक्टर,
4: मैं आपको बताना चाहूंगा कि लागत इस बात पर निर्भर करती है कि हम प्लांट किस आकार का लगाएंगे
3: जी,
4: और आकार इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी मात्रा में गोबर उपलब्ध है, यानी कि जो इनपुट अवेलेबल है
3: जी।
4: क्योंकि अगर हमारे पास पशुओं की संख्या ज्यादा है तो हमारे पास ज्यादा गोबर होगा तो हमें बड़ा प्लांट लगाना है, पशुओं की संख्या मध्यम है तो मध्यम प्लांट लगाना पड़ेगा, और पशुओं की संख्या कम है तो छोटा प्लांट लगाना पड़ेगा। तो जो प्लांट का आकार है वो घन फुट या घन मीटर इनमें नापा जाता है
3: जी।
4: सबसे छोटा प्लांट जो किसान के लिए उपयोगी हो सकता है वो 35 घन फुट या 1 घन मीटर का होता है, और इस प्लांट के लिए 25 किलो गोबर की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर किसी किसान के पास दो पशु हैं तो वो इस प्रकार के प्लांट को लगा सकता है और इससे उसको जो खाद मिलेगा वो उसके 1.5 से 2 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा, साथ साथ में जो गैस मिलेगी वो 5 आदमियों के परिवार के लिए खाना बनाने के लिए पर्याप्त रहेगी। और जितना आपके पास गोबर है उसी के आधार पे प्लांट का हम साइज बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 50 किलो गोबर है तो 2 घन मीटर का हो जाएगा, यानी कि 70 घन फुट का
3: जी, जी।
4: और अगर आपके पास 75 किलो गोबर है तो 105 घन फुट या 3 घन मीटर का प्लांट हो जाएगा। तो इसी आधार पे हम ये गणना करते हैं कि हमारे पास इनपुट कितना अवेलेबल है, यानी कि गोबर कितना अवेलेबल है। और मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूंगा कि इसके लिए जरूरी नहीं गोबर ही अवेलेबल हो आपके पास, अगर आपने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है तो पोल्ट्री वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है, पिगरी फार्म खोल रखा है उसका वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है, आपने कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है जिसमें आप कोई भी जो हमारे अनाज या फलों का या सब्जियों का वो कर रहे हैं प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसका जो भी वेस्ट है वो भी काम आ सकता है, आपका अगर स्लॉटर हाउस है तो उसका वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है, जो भी सड़ने गलने वाली चीजें हैं वो सभी हमारे बायोगैस प्लांट के लिए इनपुट है
3: जी बिल्कुल।
4: हम जब भी बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो बायोगैस प्लांट का जैसे हमारा खाना होता है या पशुओं का खाना होता है इसी प्रकार से प्लांट का भी खाना होता है, और प्लांट का खाना है जो भी गोबर है या बायोवेस्ट हमारे पास अवेलेबल है वो उसका खाना है
3: जी।
4: तो हमें जितना भी हमारा जिस आकार का प्लांट है उसी के आधार पे उसको रेगुलर फीडिंग करनी है, यानी कि लगातार खाना खिलाना है, क्योंकि इसमें बायोगैस प्लांट में भी 2 किस्म के प्लांट होते हैं, एक तो रेगुलर फीडिंग वाले होते हैं और एक ऐसा होता है कि एक बार आपने फीडिंग कर दिया तो जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए तो उससे आपको गैस भी मिलती रहेगी, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे फिर दोबारा फीडिंग करेंगे
3: जी।
4: इस ऐसे प्लांट में सॉलिड फीडिंग ज्यादा होती है तो जहां पे हमने फसलों का अवशेष का प्रयोग करते हैं तो इस किस्म के प्लांट होते हैं, लेकिन इस किस्म के प्लांट में आपको जो गैस की मात्रा मिलेगी वो लगातार बराबर नहीं मिलेगी, कभी कम मिलेगी कभी ज्यादा मिलेगी
3: जी जी।
4: दूसरा होता है रेगुलर फीडिंग वाले प्लांट, यानी कि जिसको रोज ही खाना चाहिए, जिन प्लांट को आप रेगुलर फीडिंग करते हैं और सही मात्रा में करते हैं तो उनसे आपको लगातार गैस मिलती है, बराबर मात्रा में मिलती है और लगातार आपको खाद भी मिलता है और बराबर मात्रा में मिलता है, और इसका जो खाद है वो बिल्कुल सड़के निकलता है तो इसके खाद के ऊपर किसी प्रकार के मक्खी या मच्छर नहीं बैठते हैं, उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है, तो इसका खाद वही हम खाद अच्छा मानेंगे जिसमें बदबू ना हो और मच्छर मक्खी ना बैठे, यानी कि खाद पूर्णतः सड़ गया है, क्योंकि जब ये खाद हमारे खेत में जाएगा तो ये खेत के लिए ज्यादा लाभदायक होगा।
3: बिल्कुल।
4: अगर कई बार कुछ किसान गलती कर देते हैं कि छोटा प्लांट बना लिया उसमें फीडिंग ज्यादा कर रहे हैं तो जब फीडिंग ज्यादा करेंगे प्लांट का आकार छोटा है तो कच्चा खाद निकलेगा
3: जी। किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: गोबर गैस बनाने के लिए अलग अलग विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, कोई लोहे का जो ऊपर कैन आती है उसको रख के बनाते हैं, कोई पूरा सीमेंटेड होता है, और भी अलग अलग विधियों से बनाया जाता है। तो आज आइए जानते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक्सपर्ट की राय कि कौन सा बायोगैस अच्छा होता है और कौन से बायोगैस विधि से हमें बनाना ज़्यादा मुनाफे में हो सकता है।
4: एक बनते थे लोहे के ड्रम वाले जिसको हम केवीआईसी मॉडल कहते हैं और दूसरे बनते थे ईंट और सीमेंट के
3: जी।
4: वो जनता बायोगैस था, लेकिन अभी एक नया प्लांट या काफी दिनों से चल रहा है जिसको हम कहते हैं दीन बंधु मॉडल, यह भी ईंट का सीमेंट का कंक्रीट का बनता है और इस प्लांट का रखरखाव भी कम है, इसकी लागत भी कम है और साथ साथ में इससे किसान को ज्यादा लाभ मिलता है और किसान के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो आजकल भारत सरकार या अधिकतर जो सरकारें हैं या जो एजेंसियां हैं वो दीन बंधु प्लांट को ज्यादा प्रमोट कर रही हैं और ये ज्यादा उपयोगी भी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो केवीआईसी मॉडल है उससे लगभग 25% गैस कम मिलती है, जबकि परिवारों को गैस की ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन जो दीन बंधु प्लांट है इसमें गैस कम नहीं मिलती है, बराबर गैस मिलती रहती है और गैस में बहुत कम फर्क पड़ता है। और दूसरी जो बात खास ये है वो है कि दीन बंधु मॉडल में रखरखाव बहुत आसान है, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है और कम लागत आती है, तो किसान के हिसाब से जितने भी जो हमारे बाराबंकी के किसान हैं वो जो लगाना चाहते हैं तो उनको दीन बंधु लगाना चाहिए, और लगाना चाहते नहीं बल्कि सभी किसानों को लगाना चाहिए, क्योंकि आपका चित्र काफी फेमस है केले की खेती के लिए, आपका चित्र काफी फेमस है कुछ सब्जियों की खेती के लिए, आपके क्षेत्र में फूलों की खेती होती है और ये सभी खेती में इसका खाद बहुत ही उपयोगी हो सकता है और आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है।
2: जी हाँ बिल्कुल, आशा करते हैं कि किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडियाबिल 90.8 FM छावा की आवाज।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडवा भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर था बहुत बहुत स्वागत करिए हैं तमार सबुनो रेडियो टांडिया भील 90.8 FM ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में। किसान भाइयों आपू लगातार खेतीवाड़ी थी जोड़ेली घनी खरी महत्वपूर्ण बातों ने लीने आपू चर्चा करी रहा है, तो इन चर्चा ने आगे बढ़ाता जाइए जानिए हजू खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण बातों ने।
2: बायोगैस प्लांट है ये MNRE मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये केंद्र सरकार से राज्य सरकार के माध्यम से सभी किसानों को सब्सिडी मिलती है। तो आप अपने जिले के जो खंड विकास अधिकारी हैं या जिला विकास अधिकारी हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी में बदलाव आता रहता है। तो अभी भी शायद सब्सिडी में कुछ बढ़ाव होने की संभावना है, तो इसका कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, तो आपको बिल्कुल सब्सिडी मिलेगी और ये आपकी सरकार के माध्यम से मिलेगी। जो अपने जिले के अधिकारी हैं उनके आप संपर्क में रहें और उनसे संपर्क करके आप सब्सिडी के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन सब्सिडी से ज्यादा जरूरी है प्लांट, इससे आपकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आपका खर्चा बचता है, आपका पैसा बचता है, आपकी मिट्टी सुधरती है, आपके जो महिलाएं हैं उनको सुविधा कम होती है, बल्कि मैं तो कहूंगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस प्लांट का बहुत ही ज्यादा महत्व है और खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए।
3: जी जी बिल्कुल। तो विपिन जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहां पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर रबास आपने बताया था बायोगैस प्लांट के दीन बंधु मॉडल के बारे में, मैं चाहूंगी कि थोड़े विस्तार से इस मॉडल के बारे में हमें बताएं।
2: जो दीनबंधु मॉडल है ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत सिंपल है। एक तो इसको बनाने में अच्छी सुविधा है और गांव में इसका रखरखाव में फायदा है और साथ साथ में इसमें लागत भी कम आती है और बाद की मेंटेनेंस ना के बराबर है और इसकी लाइफ भी काफी लंबी होती है।
3: जी जी।
2: इसको बनाने के लिए केवल आपको कुशल कारीगर चाहिए और अच्छे किस्म का आपका बिल्डिंग मटेरियल आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसको एयरटाइट बनाना होता है। अगर एयरटाइट डोम नहीं बना तो आपका प्लांट फेल हो सकता है, इसलिए जो कारीगर बनाने वाला है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में जो भी आप सामग्री इस्तेमाल करेंगे, खासकर सीमेंट है, रूढ़ी है, बदरपुर है, तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए और इसको सही। तो जो दीनबंधु मॉडल है ये काफी उपयोगी है और खासकर जितने भी छोटे और मझोले किसान हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि घर में ये नीचे बन जाता है अंडरग्राउंड और उसके ऊपर ये कोई भी काम कर सकते हैं, आपको अलग से जगह की आवश्यकता नहीं होती है, खाद आपको लगातार मिलता रहता है और इससे इसका रखरखाव भी आसान है और बनाना भी आसान है, लागत भी कम है और सरकार इसको काफी प्रोत्साहित कर रही है और इस समय काफी कारीगर, इसके निपुण कारीगर अवेलेबल हैं जो इस प्लांट को बना सकते हैं और किसान को बाहर के इनपुट पे कम निर्भर करना पड़ता है, तो ये एक प्लांट अच्छी किस्म का प्लांट हो सकता है जिसको आप बनाएं उसका लाभ उठाएं।
3: बिल्कुल। जो बायोगैस प्लांट है वो अपनी क्षमता के अनुरूप काम करे, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए?
2: बायोगैस प्लांट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि जिस आकार का आपने प्लांट बनाया है
3: जी
2: उसको उसका खाना रोज मिलना चाहिए और जब खाना रोज मिलेगा तो वो आपको गैस भी लगातार देगा, खाद भी लगातार देगा और अच्छी देगा। दूसरी बात आती है जब हम गोबर डालते हैं तो गोबर को पानी में अच्छी तरह से घोल के डालना है, यानी कि एक भाग गोबर का और एक भाग पानी का अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और जिन किसानों के फर्श पक्के हैं, जो पशुओं का पेशाब इकट्ठा कर सकते हैं या जो पशुओं के नहाने धोने का जो वेस्ट है वो इकट्ठा कर सकते हैं, तो आप उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो गैस का अमाउंट भी ज्यादा होगा, खाद की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और आपको अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात आती है जो प्लांट का बनाने की जगह है वो ऐसी होनी चाहिए जो किचन के पास भी हो, साथ साथ में हमारी जो पशुशाला उसके भी नजदीक हो, वो ऐसी खुली जगह हो जहाँ पे सर्दियों में धूप अवश्य आती हो और प्लांट के ऊपर धूप रहती हो
3: जी।
2: तो ये चीजें ज्यादा लाभदायक हैं और साथ साथ में आपको फीडिंग, खासकर सर्दी के मौसम में आप इसमें फीडिंग दो तीन बार कर सकते हैं एक बार की बजाय, क्योंकि अगर आप एक बार करते हैं तो जो गोबर होता है, जो वो कोई भी पशु गोबर करता है तो उसका जो तापमान है वो लगभग 35 डिग्री के आसपास होता है, उससे ऊपर होता है, लेकिन क्योंकि सर्दी का मौसम है बाहर का तापमान काफी कम है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जितना ही ठंडा हो जाएगा उतना ही प्लांट की एफिशिएंसी कम होती जाएगी।
3: अच्छा।
2: अगर आप उसको दो तीन बार यूज करेंगे, सुबह का सुबह यूज कर लिया, शाम का शाम को यूज कर लिया, दोपहर को यूज कर लिया, तो जो गोबर हमारे प्लांट के अंदर जाएगा उसका तापमान सही होगा तो आपका जो हमारे जो गैस बनाने की प्रक्रिया है वो ज्यादा सुचारू रूप चलती रहेगी, ठीक चलती रहेगी, आपको गैस बराबर मात्रा मिलती रहेगी, आपकी ये शिकायत नहीं होगी कि सर्दी के मौसम में गैस कम बन रही है
3: जी।
2: दूसरी बात ये कि जब भी आप प्लांट बनाते हैं, प्लांट बनाने के बाद जो डोम होता है जिसको हम कहते हैं किण्वन क्रिया होती है, उस डोम को मिट्टी में जरूर दबाना है।
3: अच्छा,
2: अगर मिट्टी में नहीं दबाएंगे क्योंकि वो सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ है तो तापमान के उतार चढ़ाव से उसके अंदर क्रैकिंग आ सकती है और अच्छा। जब क्रैकिंग आ जाती है तो उससे गैस लीक कर जाती है और गैस लीक कर जाती है आपका प्लांट फेल हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर चार उंगल भी मिट्टी चढ़ा देंगे तो ये जो मिट्टी है तापमान के उतार चढ़ाव को रोकेगी और उसमें किसी प्रकार की क्रैकिंग नहीं होगी तो आपकी जो प्लांट की लाइफ है वो लंबी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। एक और बात मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, खासकर कृषक महिलाओं को, वो गैस का प्रयोग करते हैं अगर गैस बिल्कुल सही जा रही है तो उसकी लो बिल्कुल नीली होगी।
3: अच्छा।
2: लेकिन क्योंकि प्लांट में जो गैस के साथ कई बार जो पानी का भाप बन के जाता है और वो भाप आगे कन्वर्ट हो पानी में हो जाती है तो आपकी पाइपलाइन जो गैस की पाइपलाइन है उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है।
3: अच्छा।
2: अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो पानी इकट्ठा होने से जो आपकी गैस की लो है वो पीली हो जाएगी और धुआं आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके बर्तन काले होने शुरू हो जाएंगे।
3: अच्छा।
2: तो आपको जो प्लांट की जो फिटिंग करे खासकर गैस की पाइपलाइन की उसमें जहां वो सबसे नीची जगह है वहां पे एक वाटर रिमूवर आता छोटा सा, वो 20 या 50 रुपए का होता है, अगर वो आप लगा देंगे तो आपको केवल एक बटन दबाना है, उसके दबाने से जो भी पानी को निकल जाएगा तो ये समस्या आपके में नहीं आएगी
3: जी। बिल्कुल, इससे से जुड़ा एक सवाल है डॉक्टर डवास, कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि बायोगैस प्लांट से मिलने वाले गैस से जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें बदबू आती है, जबकि आपने बताया कि बायोगैस प्लांट अगर सही तरीके से बनाया गया हो तो बदबू नहीं आती है, तो क्या वजह हो सकती है इसकी?
2: मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि ये हमारे किसानों की जो सोच है उसमें मैं हो सकता हूँ गलत सोच रहे हैं
3: जी जी।
2: गैस में किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है, केवल अगर हमने अपने बायोगैस प्लांट से लैट्रिन को लिंक किया हुआ है।
3: अच्छा।
2: या हम कहीं से वो जाते डाल रहे हैं तो कई बार थोड़ी बहुत मात्रा में H2S गैस बनती है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, अगर वो गैस बनती है तो थोड़ी सी बदबू आ सकती है और उसका भी प्रबंध हो सकता है अगर हमारे पास हमने ऐसा यूज कर रहे हैं तो उसमें छोटा सा एक सिस्टम लगाना पड़ेगा, उससे वो गैस भी रिमूव, जो खराब गैस वो रिमूव हो सकती है। अदरवाइज इस गैस में किसी प्रकार की बदबू नहीं होती और ना ही खाद में बदबू होती है। और गैस पे जो खाना बनाते हैं वो चूल्हे जैसा बनता है। गांव में एक भावना आती है कि जो ज्वार की रोटी है, बाजरे की रोटी है या रागी की रोटी है, मोटे अनाज वाली रोटियां, उनको बनाने के लिए चूल्हा जरूरी है
3: जी।
2: लेकिन इसकी गैस पे चूल्हे जैसी रोटियां बन सकती हैं क्योंकि इसका जो चूल्हा है वो LPG के चूल्हे से काफी डिफरेंट है।
3: अच्छा।
2: साथ साथ में उसकी लो भी अच्छी आती है और इसमें जो आंच है वो भी ज्यादा होती है, तो इससे आप वो शिकायत आपको रहेगी नहीं कि रोटी अच्छी नहीं बनी, रोटी अच्छी बनेगी और इसका चूल्हा भी अच्छा होता है। और इसके प्लांट से अगर आपने बहुत ज्यादा पशु रखे हैं तो गैस से आप प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस से जो आपका दूध है उसका मावा बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, ये किस्म से जो घरेलू कुटीर उद्योग में भी काम आ सकता है
3: जी। बिल्कुल,
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडवा भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: और गोबर के अनुसार आप इस प्लांट बनाएंगे ज्यादा बेटर है, अगर आपके पास गोबर की मात्रा ज्यादा है तो मैं आपको कहूंगा कम से कम 20 घन मीटर का प्लांट बनाएं, जिसके लिए आपको 5 क्विंटल गोबर की हर रोज आवश्यकता होगी। इससे आप इंजन भी चला सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं और इसका जो खाद है वो लगभग 30 से 50 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। तो इस किस्म का प्लांट बनाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा फायदा रहेगा। अगर प्लांट के आकार की बात करें तो वो बना सकते हैं, और इस प्लांट के किस्म के जो प्लांट बनाएंगे उसकी जो लागत आएगी वो लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास आएगी, क्योंकि आप 20 क्यूबिक मीटर का प्लांट बना रहे हैं और इससे गैस जो मिलेगी वो लगभग 100 आदमियों का खाना हर रोज उस गैस पे बन सकता है। तो 100 आदमियों का खाने का मतलब ये हो सकता है, अगर आपके परिवार में सदस्य कम है तो 5 आदमियों का खाना, जो बाकी जो गैस है उससे आप बिजली भी बना सकते हैं जनरेटर के थ्रू, उस गैस से आप कोई प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गैस का
3: जी।
2: और दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य उत्पाद है, गैस मुख्य उत्पाद नहीं है, गैस तो सह उत्पाद है मुख्य उत्पाद खाद है
3: जी जी,
2: जो आपकी जैविक खेती के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है और इसका अगर प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे छोटे और मझोले किसान काफी हैं और वहाँ पे हमारे किसानों को इस किस्म की जरूरत भी है, तो उन किसानों को जरूरत अपनाना।
1: जी हाँ बिल्कुल, बायोगैस से आपको फायदा ही होगा, इससे लाभ ही लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही कहीं कहीं कुछ किसानों को हमने देखा है जो बायोगैस का इस्तेमाल खाना पकाने में करते ही हैं, साथ में जो जो खाद है जो बायोगैस बनने के बाद जो खाद बाहर निकलती है वहाँ पर केचुए खुद ही आ जाते हैं, वहाँ आपको केचुए डालने की तक जरूरत नहीं होती है। और वहाँ पर अगर आप वहाँ का जो अवशेष निकलता जाता है, जैसे हमारा गैस बन गया, गैस बनने के बाद जो खाद निकलती जाती है तो उसमें अपने आप वहाँ पे केचुए आ जाते हैं और केचुए खुद ही आपको जो अपना केचुआ खाद है वो उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है। खाद की जो गर्मी निकालने के लिए भी वो बहुत ही सहायक है। उसके बाद जो गैस है उसके हम खाना बना उसके साथ हम खाना बना सकते हैं और जो उसका अवशेष बच रहा है जो ठंडी हुई घास उसको केचुए बहुत ही चाव से खाते हैं और जो खाद जो बनने की जो प्रक्रिया है वो भी कई गुना तक बढ़ जाती है। चर्चाओं का ये सिलसिला जारी रहेगा पर यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडला भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक ने बाद एक बार फिर था बहुत बहुत स्वागत करिए हैं तमार सबुनो रेडियो टांडिया भील 90.8 FM ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में। किसान भाइयों आप लगातार खेतीवाड़ी थी जोड़ेली घनी खरी महत्वपूर्ण बातों ने लीने आप चर्चा करी रहा है, तो इन चर्चा ने आगे बढ़ाता जाइए जानिए हजू खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण बातों ने।
2: खेती किसान कर रहे हैं उनके खेतों के फसल के पोषक तत्व प्रबंधन में इसका क्या महत्व है?
3: आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो आजकल तीन ही खादों को ज्यादा जानते हैं, डीएपी, यूरिया और कुछ लोग पोटाश, और कुछ बहुत ही कम किसान ऐसे जिंक या दूसरी चीजों को जानते हैं। और क्योंकि सघन खेती की वजह से हमारी जो मिट्टी है उनमें इन पोषक तत्वों की काफी कमी हो गई है, और इनके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी भी कमी हो गई है। अगर हम अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। और जब संतुलित मात्रा की बात आती है तो किसान को हम बताते हैं आपको ये करना है ये करना है, तो उसको किसान की समझ में नहीं आता कितना करें। तो किसान को जो दिखाई देता है तो यूरिया का लाभ सबसे ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए साधारणतर किसान यूरिया ज्यादा प्रयोग करते हैं, और जिसकी वजह से फसलों में बीमारी और कीट का प्रकोप भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो बायोगैस सलरी है इसके अंदर पौधे को 16 से 17 जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी के सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो किसान को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: उसको केवल ये देखना है कि बेसल में यानी कि बुआई से पहले कितनी देनी है,
2: ठीक है,
3: और बुआई के बाद तो कुछ कंपनियां 1 या 2 घन मीटर के छोटे प्लांट जो हैं वो HTBK के भी बना रही हैं, यानी कि आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप अपने जो अपना जिला है अधिकारी उनसे संपर्क करें, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपके जिले में कौन कौन सी कंपनी के प्लांट उपलब्ध हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पशुओं की संख्या ज्यादा है, बड़ा प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप प्लांट स्वयं बनवा सकते हैं, उसमें भी आप अपने जिले के अधिकारियों के संपर्क कर सकते हैं या अथवा किसी अन्य तकनीकी आदमी से संपर्क करके आप अपना प्लांट बनवा सकते हैं। लेकिन जो प्लांट बनवाएंगे उसकी लाइफ भी ज्यादा है, लागत कम होगी, और वो आपकी आवश्यकता के अनुरूप बनेगा
2: जी।
3: तो आप उसको ठीक से हैंडल भी कर पाएंगे, और जब बनाएंगे तो आपको जो बनाने वाला है वो आपको सारी बातें बताएगा कि इस प्लांट में कब और कितनी मात्रा में गोबर डालना है, कैसे इसका प्रबंध करना है, तो वो आप जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आप HDPE का भी प्लांट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, तो उसके लिए जो कंपनी है वो आपको पूरा समझाएगी बताएगी, तो वहां से ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि इसके जो प्लांट बनाने वाली कंपनी है वो सभी निजी कंपनियां हैं, तो किसी एक कंपनी का नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं रहेगा। तो आप अपने जिला अधिकारियों से या अपने उनसे जो कृषि अधिकारी हैं या जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे संपर्क करके उनसे लाभ उठा सकते। तो मैं आप संजय जी को बताना चाहूंगा कि आपके अपने जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, क्योंकि आज हमारे जितने भी जिले हैं सभी में 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध है। तो जो भी कृषि विज्ञान केंद्र आपके नजदीक संपर्क में हो, नजदीक से नजदीक हो, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने जिला के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, या जिला के विकास विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इन सब जगह से आपको जानकारी मिल जाएगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा से भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो आप कहीं से भी जानकारी लें और आप प्लांट अवश्य लगाएं, क्योंकि प्लांट आपके लिए काफी हितकर होगा, आपके लाभदायक होगा। और ये एक ऐसी तकनीक है जो वातावरण हितैषी तकनीकी है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, जिसका हमें बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। और आज सुन रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन क्रेडिट कमाने में भी इस तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, अगर हम इसका सही लाभ उठाना चाहें तो।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडला भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: तो बांस में कर सकते हैं, उसमें अलग अलग प्रजातियों का चुनाव करना पड़ता है। अगर उनका इलाका जो है 1000 मीटर की ऊपर की ऊंचाई का है, तो उसके लिए पतले टाइप की जो बांस होती है वो होता है। और एक बांस अभी जो होता है वो थोड़े से मंडी में नीचे इलाके में 1000 या 1200 मीटर की ऊंचाई पे, वहां पे मगर के नाम से प्रचलित बांस है, मोटा बांस है
2: जी।
4: और हो जाता है वो बर्फ भी सह लेने की क्षमता होती है, बहुत ही उम्दा किस्म का बांस है। साइंटिफिक नेम डेंडोकलेमस होम देवाई बोलती है। हाल के दिनों में एक भूटान बांस के नाम से प्रसिद्ध है, डेंड्रोकैलामस सिकिमियांसिस, जो बहुत ही अच्छा बांस है फर्नीचर बनाने के लिए। वहां दो तीन मोटे बांस की और एक बैम्बूसा न्यूकल्स, तीन जातियों की खेती हो सकती है।
2: बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि बांस की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
4: बांस की अच्छी पैदावार करने के लिए किसानों को सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि आप सबसे सही समय पे इसको लगाएं। बरसात का जो मौसम है बांस लगाने का उपयुक्त समय होता है, और सबसे अच्छे पौधों का चुनाव करें, क्योंकि बांस में पहचानना बहुत ही मुश्किल बात है। अगर आप छोटी सीडलिंग देंगे तो इवन हमारे जैसे वैज्ञानिक भी धोखा खा जाते हैं। तो हमेशा ही उचित और बढ़िया जगह से, जो रिलायबल जगह होती है या किसी वैज्ञानिक से संपर्क करके ही आप बांस का पौधा खरीदें या बांस के पौधे की बात जानकारी। FRI में ये पौधा बांस के बहुत सारी 16 से ज्यादा प्रजाति उपलब्ध है और किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक तो पहले प्रजाति का चुनाव है, दूसरा कहते हैं गड्ढा इसका 2x2x2 फीट, उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांस जो है सरफेस फीडर ही होता है। इसकी जड़ बहुत गहरी नहीं जाती लेकिन फैलती है, तो अगर शुरू में इसको बहुत अच्छा मिले तो तीसरे साल से ही बांस बहुत ही अच्छी मोटे किस्म का बांस निकलना शुरू हो जाता है, जिसको आप चौथे साल के एंड में या पांचवें साल के एंड में काट सकते अलग अलग उपयोग के लिए।
2: जी बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, इसके साथ ही हमें ये बताएं कि जो बांस है उनके अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, रोग व कीट का खतरा जो है वो कितना हो सकता है बांस के खेतों में?
4: जी हाँ, पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से इसमें जरूरी है। अगर कोई जैविक माध्यम से और जो हम नॉर्मल किसान रासायनिक खाद के साथ करते हैं, दोनों ही बताते हैं। बांस के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि गड्ढा एकदम समय पे बना लें, गर्मियों में बना लें तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बरसात में बना लें। साइज वही 2x2 फीट के गड्ढा बनाएं, और हर गड्ढे में आधा बाल्टी गोबर, गोबर मतलब कंपोस्ट की खाद डालें, और 100 ग्राम खली डालें, और 25 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम DAP, अगर DAP नहीं है सिंगल सुपर फास्फेट है तो भी लगभग 120 ग्राम के आसपास डालें, और 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। बांस को पोटास की जरूरत बहुत ज्यादा होती है
2: जी।
4: ये पहले साल के लगाने के समय में ही डालें। फिर अगले साल के जो मौसम आएगा आपका, जब बारिशें होती है थोड़ी सी फरवरी में, फरवरी वाले में, तो फिर बांस में एक निराई गुराई करके उसी उसमें, और उसमें आप कम से कम किलो भर जो हम केचुआ खाद बोलते हैं, और 100 ग्राम के आसपास खली, और 25 ग्राम यूरिया, ये तीन को मिक्स करके उसके चारों तरफ डाल दें। फिर यही चीज अगले बरसात में जो है, यानी हम 25 ग्राम यूरिया बोलते हैं बांस में खाद, हम नाइट्रोजन कम डालते हैं, और आधा बाल्टी जो कंपोस्ट खाद है, और 100 ग्राम खली, और 100 ग्राम DAP या 120 ग्राम SSP, और 125 से लेके 150 ग्राम तक म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। एक्चुअली बहता हुआ जो नाला होता है, बांस में पानी रुकना नहीं चाहिए, पर बहता हुआ पानी बांस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वेराइटी आपको हमने देखा है 6-7 वेराइटी बहुत अच्छा कर रहा है। आप अभी लगाइए बैम्बूसा टुल्डा और बैम्बूसा पॉलीमार्फा, पंजाब में इसका, क्योंकि ये फर्नीचर के लिए और स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ मात्रा में बैम्बूसा बालखोआ लगाएं, हम अभी पंजाब में 3-4 किसानों को लगवा रहे हैं, और बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा ग्रोथ उसका आ रहा है
2: जी।
4: तो आप तीन वेराइटी जो हमारे FRI में अवेलेबल है और भरोसेमंद भी है, मतलब हमने इसको अच्छे से सेलेक्ट करके इसकी अच्छी नर्सरी जी। बांस में आपको एक समस्या बताता हूँ कि बांस को पानी बहुत चाहिए, लेकिन 15 दिन से ज्यादा अगर पानी रुकता है तो बांस का ग्रोथ कम हो जाता है, क्योंकि बांस की जो जड़ें हैं वो जमीन के बहुत गहरी नहीं जाती। तो उसके क्रम में हम ये कहते हैं कि जहां जहां जल भराव है उसके मेड़ पे, मतलब जो बांध जैसा है
2: जी,
4: वो लगाए, या फिर कई जगह हम लोग बोलते हैं कि JCV से बांध बना दे, जिससे कि बांस की कुछ जड़ें ऊपर की तरफ हो और वो सांस ले सके।
2: तो
4: अगर वो 2 से 3 महीने पानी वहां रुकता है तो हम उसको कहते हैं कि वहां बांस लगा, मरेगा तो नहीं लेकिन उसके उत्पादन में बहुत कमी है
2: जी। बिल्कुल, इसके साथ ही डॉक्टर ठाकुर बताएं हमें कि रोग और कीट का प्रकोप कैसा हो सकता है बांस के खेतों में, जिसके लिए किसानों को सचेत रहना चाहिए?
4: जी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर बांस के पत्तों को देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत होता है। बांस सिलिका से भरा होता है और इस सिलिका से भरे होने के कारण इसके प्रमुख रूप से बहुत ही कम जिंदा बांस में बहुत ही कम कीट और बहुत ही कम रोग आते हैं।
2: जी
4: जो भी इसमें रोग आता है वो सेकेंडरी होता है, मतलब कोई उसमें डैमेज हो गया तो वो बाद में आता है। तो अगर कोई प्रचलित अभी हमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है लेकिन हाँ जब खेती बाड़ी में इसका प्रचलन बढ़ेगा तो कुछ नए तरह के रोग आ सकते हैं। नॉर्मली हम दो चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, चूंकि आपने कहा था तो हम जब शुरुआत में लगाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कवकनाशी कोई ना कोई लगा दे। हम सबसे जो हमारी प्रेफरेंस है वो है कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम पेवेस्टीन या बहुत सारे नामों से मार्केट में आता है। इसको हम लोग कहते हैं कि जब हम 2 ग्राम प्रति इसको तो चूंकि पाउडर फॉर्म में अगर होता है, अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो 2 ml प्रति लीटर के दर से करीब 5 लीटर का बना के यानी 10 ml प्रति लीटर का बना के हम एक गड्ढे में डालते हैं और ये पहले साल में बस
2: जी,
4: और
2: जी,
4: दूसरा इसमें होता है दीमक का प्रकोप।
2: अच्छा।
4: चूंकि बांस ये वुडी है, टिम्बर है, उसमें लकड़ी होती है तो दीमक का हो सकता है। तो जो भी दीमक के लिए हमारे साधारण प्रतिरोध इस्तेमाल किया जाता है
2: तो उसका जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर ठाकुर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है बांस की खेती के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडवा भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: आते हैं और चलते चलते बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर दबास आपसे जानना चाहेंगे बायोगैस प्लांट के स्लरी के बारे में, अगर आप देना चाहें।
3: मैं अपने सभी किसान भाई को बताना चाहूंगा कि बायोगैस स्लरी 2 समय इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो फसल बोने से पहले जिसको हम बेसल कहेंगे, तो जितनी भी आपको स्लरी प्रयोग करनी है उसका लगभग आधा भाग बेसल में आप प्रयोग कर लेंगे, यानी कि जो पलेवा करेंगे उसके अंदर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो भी स्लरी देनी है वो आपको प्लांट की ग्रोथ के आधार पर देनी है, यानी कि प्लांट जो पौधे का अगर 120 दिन की फसल है तो पहले 60 दिन तक की फसल देनी है, खाद देना है, 60 दिन के बाद खाद नहीं देना है। और यही टाइम होता है जिसमें पौधे को खाद की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसे गेहूं है, गेहूं में पहली 3 सिंचाई पे आप इसका खाद दे सकते हैं। धान में लगभग 50-60 दिन की जब तक फसल होती है जब तक इस खाद को पानी के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन जो बड़ी मात्रा है वो बोने से पहले देनी है, जिससे कि जैसे हम फसल लगाएं तो उसको सही मात्रा में पोषक तत्व मिल जाए। और जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे फसल का जमाव भी अच्छा होता है और साथ साथ में उसका दूसरा लाभ ये होता है कि पौधा शुरू में जब स्वस्थ होगा तो उसमें किसी प्रकार की बीमारी और कीट का प्रकोप नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
5: किसान भाइयों आप ये लगातार खेतीवाड़ीना इना कार्यक्रम में खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने जानियो है, आप ये जानियो है कि कम जो जैविक खेती है और गोबर गैस से अपना गोबर गैस अपन की कम बना भी सकिए और इनमें कई ना प्रकार ना गोबर गैस है और यह की कम तरीके थी आपड़ी हरू फायदेमंद हो सके। केम के किसान भाइयों आप जानिए है कि लकड़ी हमने मलवी थोड़ी सी मुश्किल है अने अलग अलग प्रकार ना जो बायोगैस है इनमें आप कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफो ले सकें। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं ये भी एक बढ़िया मौको है हमारे किसान भाइयों और कि इन उपयोग करिए, जैसे गोबर है गोबर ना आप गैस में तीनों उपयोग कर जो खातर है ते बनवानी जो प्रक्रिया है ते भी थोड़ी सी फास्ट थी जाए से इना इन्हीं द्वारा। तो किसान भाइयों आप करी सकिए और इना जो गोबर नकड़े है इना गोबर थी अगर आप केचवा खाद बनावा मांगी तो भी तीनी जो गति है तीनमा भी बढ़ावो मले से। तो किसान भाइयों आजना इना कार्यक्रम में आप ये घनी खेतीबाड़ी ना बारा में जानियो अन आवावाला समय पर भी आप खेतीबाड़ी से जोड़ेली हजू भी महत्वपूर्ण बातों ने लेकिन चर्चा करिए। लेकिन आजना इना कार्यक्रम में बस इतरुस आप फिर काल मुलाकात था है इना समय पर इतरे बनेला रहो हमारी हाथे रेडियो टांडिया भील 90.8 FM नी हाथे झाबुआ नी आवाज पर।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडवा भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

0: કાર્યક્રમ હે. એના કાર્યક્રમમાં જે બી જાણકારી આપણને મળી રહી હે તેની જાણકારીને આપું આપણા કિસાન ભાઈઓ તક બી પુગાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હે. તો કિસાન ભાઈઓ, રેડિયો ટાંડિયા ભીલ 90.8 FM નો યુ ખેતીવાડી કાર્યક્રમ આપણને અલગ અલગ પ્રકારની ખેતી કરવા હરું સલાહ આલે હે, સાથી આપણ હિકાડે હે, પ્રશિક્ષણ આલે હે કે કિકમ આપણ અલગ અલગ પ્રકારની ખેતી બી કરી શકીએ હે. જેમ કે આપણું જાણીએ હે કિસાન ભાઈ, આપણે જવાના કિસાન ભાઈ ભલી ભાતી વાકિફ હે કે આપણ અગર આપણું દેખી પિછલા 10 સાલથી તેની તે ફસલ આપણા ખેતરોમાં દેખાઈ રહી હે. ભલે આપણે એક સાલ મક્કી કરી તે આવતે સોયાબીન યા કપા કર લઈએ, પર જો આપણ એની 3 થી 4 ફસલોને અલાવા અગર આપણે દેખી તો આપણા એરિયામાં બીજી ફસલ દેખાવા ન માંગે હે. તો કિસાન ભાઈઓ, આપણું કોશિશ કરીએ કે ના કેવલ આપણું ફસલોની ખેતી કરીએ, તેની અલાવા બી ફૂલોની ખેતી કરી શકીએ, આપણું આપણ ફલોની ખેતી કરી શકીએ, ઓર બી અલગ અલગ ઘણી ખરી એવી ફસલે હે જો આપણા ઝાબવા જિલ્લામાં અનુકૂલિત હે. અને અગર આપણું તેની આપણું ફસલ કરવા માંગી હે, તેની ખેતી કરવા માંગી હે, તે બી સંભવ હે. તો કિસાન ભાઈઓ, અમારો યોજ પ્રયાસ હે કે આપણે કિસાન ભાઈ અલગ અલગ પ્રકારની ખેતી કરે અને અલગ અલગ પ્રકારની ખેતી કરવામાં, કેમ કે અલગ અલગ અગર આપણું ઔષધિ પોદાની ખેતી કરું, અલગ પ્રકારની ખેતી કરું, તેની જો માંગ હે બજારમાં, જે માંગ હે તેની માંગની હિસાબથી તેમાં આવક બી વધુ મળે હે. તો આપણ કિસાન ભાઈઓ એક વાતને આપણે જાણવાની જરૂરત હે કે આપણ કિસાન ભાઈઓને સચેત રહેવું હે કે હમણાંના સમયમાં બજારમાં આની માંગ છે, તેની માંગને દેખતા હોવા તેની ફસલ જો અગર આપણા એરિયામાં અગર તે ફસલ થઈ શકે હે તે તેની ફસલને કરવાનું. તો આ કોઈ સવાલ યો બને હે કે અગર આપણ કિસાન ભાઈ ચાહે તો અગર ફસલ કરવા માંગે લેકિન આપણા એરિયામાં બળે યા નહીં બળે યા તેનું બીજ કાંતું મળે, તો તેના બારામાં આપણ જાણકારી આલે હે કેવી કી કિસાન વિજ્ઞાન કેન્દ્ર. જી હા કિસાન ભાઈઓ, આપણે ઝાબવા જિલ્લામાં કિસાન વિજ્ઞાન કેન્દ્ર હે, તેના માધ્યમથી આપણું આપણ કિસાન ભાઈ આવી શકે, તેને તહાર કે જઈને પ્રશિક્ષણ લઈ શકે અને પ્રશિક્ષણને માધ્યમથી જાણી શકે કે જો હમ ખેતી કરી રહ્યા તેની અલાવા બી કંઈની ખેતી આપણ ઝાબવામાં મુમકિન હે, પોસિબલ હે, તો તેની ખેતીને આપણું કરી શકી યા નહીં કરી શકી તેના બારામાં આપણું જાણકારી લઈ શકી. સાથે રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM ખેતીવાડી કાર્યક્રમ તેની ઉપર ફોકસ કરે હે અને હું આપણ કેવીકીના માધ્યમથી, વિશેષજ્ઞોના માધ્યમથી કોશિશ કરીએ હે કે અમારા કિસાન ભાઈઓ તક અસલથી અસલ જાણકારી મળે અને પૂરી સંપૂર્ણ જાણકારી આપણા કિસાન ભાઈઓ તક પૂગી શકે. તો કિસાન ભાઈઓ, આજના એના કાર્યક્રમમાં આપણું ચર્ચા કરવાના હે કે કમ અવધિમાં, કમ સમયમાં કંઈની કંઈની ફસલ થઈ શકે હે, કમ સમયમાં અગર આપણું વધુ અસલ જો ફસલ હે, જલ્દી પાકવાવાળી ફસલે હે, તે અગર આપણું કર લઈએ તે તેનથી હું થાય કે આપણું મોસમ જો એક સાલમાં આપણું 2 થી 3 ખેતી કરી શકીએ યા 3 થી 4 ખેતી કરી શકીએ, કારણ કે કંઈ ને કંઈ અગર અવધિ કમ થઈ જાય એની તે આપણું આપણી
1: આજ કે દોર મેં ઇન્ટરનેટ, બચ્ચોં કી પઢાઈ, તો કિસાન મનોરંજન, કુછ નયા સીખને, ગેમિંગ ઓર સોશિયલ મીડિયા કા એક મહત્વપૂર્ણ માધ્યમ બન ચુકા હૈ. કઈની ફસલ ડિજિટલ દુનિયા મેં બચ્ચોં કે લિયે સીખને ઓર આગે બઢને કે કઈ નયે અવસર ખોલે, લેકિન ઇસકે સાથ હી કુછ ઓનલાઈન જોખિમ ભી સામને આયે હૈ, જૈસે સાયબર બુલિંગ, અનજાન લોગોં સે સંપર્ક, ફેક પ્રોફાઇલ, નિજી જાનકારી કા ગલત ઇસ્તેમાલ ઓર ઓનલાઈન ધોખાધડી આદિ, એસે મેં બચ્ચોં કો સુરક્ષિત, સમજદારી ઓર જિમ્મેદારી કે સાથ ઇન્ટરનેટ કા ઇસ્તેમાલ કરના સિખાયા જાય. નમસ્કાર દોસ્તો, મેં હું આપકા રેડિયો સાથી આરજી પ્રવીણ, ઓર આપ સુન રહે હૈ આપકા અપના પસંદીદા રેડિયો રેડિયો કંટિયા ભી 90.8 FM, જહાં કી આવાજ
2: પેદાવાર લી જા સકતી
1: હૈ. ઓર આજ હમ ઇસ મહત્વપૂર્ણ ઉદ્દેશ્ય કે સાથ હમારી આજ કે ખાસ મહેમાન ટિંકાઓ મેં ચર્ચા કરેંગે. આજ કી ખાસ મહેમાન ચાઇલ્ડ રાઇટ્સ એન્ડ યુ મેં નોર્થ ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ હૈ, જયા સિંગ જી. આપકા બાલ અધિકારોં કે ક્ષેત્ર મેં લંબા ઓર સમૃદ્ધ અનુભવ રહા હૈ ઓર વે ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય બાલ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ કી પૂર્વ સદસ્ય ભી રહ ચુકી હૈ. શિક્ષા બાલ અધિકારો કે ક્ષેત્ર મેં વિશેષજ્ઞતા રખને વાલી જયા સિંહજી કો ડેવલપમેન્ટ સેક્ટર મેં લગભગ 24 વર્ષો કા વ્યાપક અનુભવ પ્રાપ્ત હૈ. આપને બચ્ચોં કે અધિકારો, સંરક્ષણ, શિક્ષા ઓર ઉનસે જુડે સામાજિક સરોકારો પર નિરંતર ઓર સાર્થક કાર્ય કિયા હૈ. વે બાલ અધિકારો પર ઉનકે લેખન ઓર વિચારો સે બચ્ચોં સે જુડે ગંભીર ઓર સંવેદનશીલ વિષયો કી ઓર સમાજ કા ધ્યાન આકર્ષિત કરને મેં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાઈ હૈ. જયા સિંહજી કી કાર્યશૈલી મેં સંવેદનશીલતા, સકારાત્મક સોચ और समाधान केंद्रित दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनका मानना है कि बच्चों के अधिकारों को प्रभावी सुरक्षा और उन्हें उनका उचित स्थान दिलाने के लिए सरकारी तंत्र, समाज, समुदाय और परिवार आदि का समन्वित प्रयास आवश्यक है। इसी विश्वास के साथ वे बच्चों से जुड़े मुद्दों के व्यापक और स्थायी समाधान की दिशा में भी निरंतर प्रयासरत हैं। जया सिंह जी, आज हमारे इस कार्यक्रम की इसी विश्वास के साथ वे बच्चों से जुड़े मुद्दों के व्यापक और स्थायी समाधान की दिशा में भी निरंतर प्रयासरत हैं। जया सिंह जी, आज हमारे इस कार्यक्रम की खास मेहमान हैं। नमस्कार मैम, रेडियो टंटिया व्हील 90.8 एफएम झावा की आवाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू प्रवीण, रेडियो टंटिया व्हील के सभी श्रोताओं को नमस्कार और यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैम, आज के दौर में
2: और जोखिम को समझने की चीज है कि इस्तेमाल किया
1: इंटरनेट कितना आवश्यक है और इसके जो ऑनलाइन जोखिम है वे कौन कौन से हैं।
2: जी हम सभी जानते हैं कि आज लगभग हर बच्चा जिसके हाथ में फोन है वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है और इंटरनेट बहुत उपयोगी और लगभग आवश्यक माध्यम बन गया है के बहुत सारे इंटरेक्शंस के लिए। ये बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इम्पोर्टेंट लगता है, बच्चों को बहुत सारी जानकारियां देता है, बहुत सारा मनोरंजन का सामान भी इंटरनेट से बच्चों को मिलता है, दोस्तों से जुड़ने का तरीका भी इंटरनेट में कई तरीके से बच्चे जुड़ पाते हैं अपनी दोस्तों से और कई तरीके की नई स्किल्स भी सीखने में इंटरनेट ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि मतलब बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना तो कोई व्यवहारिक समाधान नहीं है, लेकिन हमको ये जरूर समझना है कि सबसे बड़े ऑनलाइन जोखिम कौन से बच्चों के लिए हो सकते हैं। जैसा आपने पूछा, एक तो मुझे लगता है कि अनजान लोगों से संपर्क होना ये बहुत बड़ा ऑनलाइन जोखिम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी झूठी पहचान बनाकर बच्चे से दोस्ती कर सकता है।
1: जी।
2: दूसरा, साइबर बुलिंग भी आपने शब्द इस्तेमाल किया, जिसमें ऑनलाइन मजाक बनाना, अपमान करना, धमकी देना, परेशान करना, इस तरीके की चीजें साइबर बुलिंग में आती हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करती हैं।
1: बिल्कुल।
2: तीसरा इम्पोर्टेंट जो चीज है कि इंटरनेट पे इतनी तरीके की जानकारी उपलब्ध है कि ये समझ पाना कि कौन सी जानकारी सही है, कौन सी गलत है, किस पे भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही एक भ्रामक स्थिति पैदा करता है जो कि एक बड़ा ऑनलाइन जोखिम है कि क्या सही है क्या गलत है। और उम्र के उपयुक्त अगर आप देखें तो फोटो, वीडियो, बहुत सारी ऐसी सामग्री है जब आप चाहते ना चाहते वो इंटरनेट पे ऑनलाइन दिख जाती है बच्चों को, तो वो भी एक थोड़ा सा लगता है कि क्या एज अप्रोप्रिएट इस तरीके की सामग्रियों का अनावश्यक रूप से दिखाई देना या करना बच्चों को इस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, अपनी फोटो, अपनी लोकेशन, अपने डिटेल्स कहीं ना कहीं चाहते या ना चाहते हुए या गलती से दूसरों को दे देते हैं और इससे क्या होता है कि निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑनलाइन जोखिम है। और फेक मैसेजेस आप देखते होंगे, स्कैम और फिशिंग के बड़े सारी बातें होती रहती हैं आजकल, तो ये है। और ये सारी तो इंटरनेट से वैसे जुड़ी हुई समस्याएं हैं, लेकिन एक और जो चीज है कि बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम में लगे रहते हैं जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई, नींद, खेलने नहीं जाते हैं, परिवार के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, तो जो एक उनका जो रेगुलर ऐसे जो दिनचर्या थी वो बड़ी बिगड़ सी जाती है। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन जोखिम या उसमें हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और क्राई की कैंपेन में भी यही बात कही गई है कि बच्चों को सुरक्षित तरीके से डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है।
1: जी, यकीनन क्राई ने इस चिंता को गंभीरता से रखा है और इसमें लगातार अध्ययन और काम चल रहा है। तो बच्चे इंटरनेट पर ऐसी कौन सी गतिविधियां करते हैं जिनसे उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं होता, और क्या बच्चों और अभिभावकों के बीच ऑनलाइन दुनिया को लेकर जानकारी का अंतर भी एक बड़ी चुनौती है?
2: बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारी गतिविधियां जैसे मैंने अभी बताया अभी कि बहुत सारे जोखिम होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे वो जोखिम को समझ ही नहीं पाते हैं। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। ऑनलाइन गेमिंग आजकल बहुत ज्यादा चलन में है और वो गेम पूरे दुनिया में कहीं कोई भी खेल रहा हो सकता है, कोई भी उसमें जुड़ सकता है और किसी भी तरीके का व्यक्ति आपके बच्चे के संपर्क में आ सकता है।
1: बिल्कुल,
2: तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरा जो है, अगर बच्चे ने मान लीजिए अपनी कोई फोटो लगा दी, अपने स्कूल के सामने खड़ा है, उसने नॉर्मल समझ के लगा दिया कि ये तो मेरे स्कूल की फोटो है। अब क्या होगा, उस फोटो से उसके स्कूल का नाम, उसकी लोकेशन, उसकी और जानकारियां, बहुत सारा कुछ चाहते ना चाहते साझा हो गया इंटरनेट पे। अब उसका इस्तेमाल कोई कैसे करेगा, नहीं करेगा, ये सब चीजें बहुत सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कई बार दोस्तों की पहचान ना करते हुए दोस्ती कर लेना, उसके बाद उन लोगों से उनके कहने पर अपनी निजी फोटोज फॉरवर्ड कर देना, ये सारी चीजें भी बच्चे जो है गलती से कभी कभार ऐसा कर लेते हैं। कई बार लिंक्स आने लगते हैं जब आप गेम्स खेल रहे हो या अदरवाइज बैठे हो कि आपको फ्री गिफ्ट मिला है, आपको ये प्राइज मिला है, तो बच्चे चाहते ना चाहते कहीं लिंक पे क्लिक कर देते हैं। बड़े भी कर देते हैं, अगर आ रहा हो आपको 500 रुपए तुरंत आपके इसमें आ रहे हैं, क्लिक करें, तो वो क्या होता है कि आदमी लालच में या उत्सुकता में बहुत सारे लिंक्स क्लिक कर देता है। तो ये सारी चीजें जो है जो हमको थोड़ा बहुत समझदारी रखनी चाहिए, लेकिन इस तरह की गतिविधियां बच्चों से हो जाती हैं। पर एक चीज समझने की बात है कि बच्चों और अभिभावकों के बीच एक बहुत बड़ा डिजिटल गैप दिखाई देता है कि आजकल पेरेंट्स को उतना नहीं पता होता, पेरेंट्स को शायद बहुत सारे एप्स के बारे में पता भी नहीं होता, बहुत सारी प्राइवेसी की जो सेटिंग्स हैं उसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन बच्चों को बहुत पता होता है। पर मैं बस ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि हमें मालूम नहीं है या ऐसा है। उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उन्हें बच्चों के साथ अच्छे से बात करनी है, बच्चों के साथ लगातार उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि देखिए आप डरे नहीं, कोई भी बात अगर आपको लगती है आप हमसे आके साझा करें और हमसे आप बिना डरे बात कर सकते हैं, कुछ भी अगर ऑनलाइन गलत या अजीब लगे तो हमसे आकर के डिस्कस करिए। तो डिजिटल नॉलेज का अंतर कम करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये जरूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी को सीखना ही सीखना है, बल्कि बच्चों के साथ नियमित और खुले संवाद को बढ़ावा देना भी एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि समन्वय आपस में बहुत जरूरी है और माता पिता को जो अभिभावक हैं उनको बच्चों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। हम लालच या इस तरह की बातें करें तो बच्चे तो ठीक ही हैं, बड़े भी कई तरह से भ्रमित हो जाते हैं, तो इस तरह की कई प्रकार के जोखिम जब आते हैं तो बच्चों और अभिभावकों को कुछ क्या ध्यान रखना चाहिए, जोखिमों को लेकर बच्चों को विशेष रूप से किस प्रकार से जागरूक करना चाहिए?
2: बच्चों को ना हर बात, एक तो ये बात है कि हमेशा अगर हम डराएंगे कि इंटरनेट बहुत सेफ नहीं है, ये नहीं है, तो भी बच्चों के अंदर एक बहुत ऐसा हम भर रहे हैं कि मतलब इंटरनेट यूज मत करो। हमें बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के पहलुओं के बारे में जागरूक करना चाहिए कि जोखिम जो है वो एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, फेक प्रोफाइलिंग या अनजान लोगों से बातचीत, ये सब जो है आपको जो है कई बार ये करना चाहिए कि इंटरनेट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इंटरनेट तभी इस्तेमाल करें जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत है, आप कोई रेफरेंस ढूंढ रहे हैं अपने किसी पढ़ाई की चीज का, या आपको गेम खेलने की इच्छा है, या आप अपनी उम्र के मुताबिक कोई वीडियोस देख रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों को हमें बताना जरूर है कि क्या सही है क्या गलत है, ये बताना है कि अपनी निजता का ध्यान कैसे रखें। दूसरों के साथ भी सम्मान से कैसे पेश आए। अगर हम साइबर बुलिंग की बात करते हैं तो अगर हमारे लिए वो दिक्कत है तो हम किसी दूसरे को भी साइबर बुली ना करें। हमें ये भी समझना चाहिए कि दूसरी तरफ भी जो व्यक्ति है उसको अगर हम साइबर बुलिंग करेंगे या उसको कुछ बुरा भला कहेंगे, उसकी फोटोज का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं हम किसी और के लिए वही दिक्कतें लेकर के आ रहे हैं। तो कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं, शैतानी में कई बार एक दूसरे को जो है बुली कर देते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों को बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें कहना चाहिए। और हमारी जो ये कैंपेन है जो बोलती है टिंग टोंग थिंक टॉइस, यानी ऑनलाइन कुछ भी करने से पहले रुकें और सोचें, भरोसा अगर करना हो किसी पर, क्लिक करना हो किसी चीज पर, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, साझा करनी हो, तो एक ही चीज को आप याद रखें कि रुकें और सोचें।
1: बिल्कुल,
2: टिंग टोंग घंटी आपकी तुरंत बजनी चाहिए जैसे ही आप ऑनलाइन आते हैं।
1: बिल्कुल, टिंग टोंग सूचना और संकेत की चेतावनी है कि इससे घंटी आवाज से प्रेरित हो कि हमें कुछ गलत नहीं क्लिक करना है।
2: जी
1: बिल्कुल, कई बार होता है कि अजनबी लोग दोस्ती करने की कोशिश करते हैं बच्चों से, तो और साथ ही इंटरनेट पर हर व्यक्ति और हर जानकारी भरोसेमंद नहीं होती, इन चीजों को कैसे समझाया जाए बच्चों को?
2: कि पहले तो बच्चों को ये बताना है कि हर किसी से दोस्ती नहीं करनी है।
1: बिल्कुल,
2: जैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप ऑफलाइन होते हैं, जब आप रोजमर्रा में किसी से मिलते हैं तो आप जाके सबसे तो दोस्ती नहीं करने लगते, वही नियम ऑनलाइन भी है कि हर एक से आपको दोस्ती नहीं करनी है। अपना फोन नंबर, घर का पता, स्कूल का नाम, अपनी फोटो या कोई भी दूसरी निजी जानकारी आपको किसी से साझा नहीं करनी है। और अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे कोई ऐसी बात कह रहा है, खासतौर पर इस तरीके की चीजें कह रहा है कि ये चीजें अपने पेरेंट्स को मत बताना, ये हमारे बीच की बात है, या तो आप हम पे भरोसा कर सकते हो, हमें अपनी ये जानकारी भेजो, तो जिससे बच्चे को थोड़ा सा डर लग रहा हो या वो असहज महसूस कर रहा हो तो उसे तुरंत बात बंद कर देनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि अपने माता पिता या अपने शिक्षक या किसी भी भरोसेमंद बड़े को तुरंत बताना चाहिए। तो ये बातें हमें बच्चों को बिल्कुल बता के रखनी चाहिए कि आपको जैसे ही ऐसा कुछ लगे तो आपको तुरंत मदद मांगनी है, तुरंत किसी बड़े को जो है आपको कहना है कि मुझे ये चीज असहज लग रही है। और बार बार बच्चों को बोले कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है,
1: ये
2: तो समझदारी से काम ले, मदद मांगे।
1: बच्चों को ये समझाना होगा कि यदि कुछ गलत होता है तो आप उससे चर्चा करें, डरे नहीं और किसी तरह से किसी चीज को छुपाए नहीं, ये बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सोचो क्लिक करो, मतलब ये बच्चों के इंटरनेट पे कोई लिंक, फोटो, मैसेज या वीडियो खोलने से पहले जो तीन चार बातें हैं जरूरी, वो क्या होनी चाहिए?
2: जी
1: सोचो और क्लिक करो, बच्चों को इंटरनेट पे कोई लिंक, फोटो, मैसेज या वीडियो खोलने से पहले तीन चार बातें जो सोचनी है वो क्या होना चाहिए?
2: हाँ, जैसे आपको बिल्कुल ये समझना चाहिए कि कौन इस बात को कह रहा है। अगर कोई जानकारी आपको दिख रही है, कोई वेबसाइट दिख रही है, तो ये भरोसेमंद है कि नहीं है,
1: बिल्कुल
2: ये आपको देखनी चाहिए। अगर आपको कोई फोटो या वीडियो दिख रही है तो आप देखते ही उसको सच ना मान लें कि अच्छा, क्योंकि कई बार फेक फोटोज, कई फेक वीडियोज आते हैं, तो आप ये देखें कि कौन सा स्रोत है जहां से ये आई है। महत्वपूर्ण जो भी जानकारी आपको लगे उसको दो या तीन भरोसेमंद स्रोतों से जरूर मिलाएं, किसी एक चीज को लेकर के उसको सच ना मान लें। और कभी भी जल्दबाजी में कुछ ना करें, जैसे कई बार आता है जल्दी करो, आप जीत गए हैं, तुरंत शेयर करो, तुरंत आप ऐसा क्लिक करो, तो ये जो तुरंत वाली जो चीजें हैं उनसे बचना चाहिए। और दूसरा जो मैं बार बार कह रही हूँ, अपना नाम, पता, फोन, पासवर्ड, OTP कुछ भी किसी अनजान व्यक्ति को ना शेयर करें। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है बार बार हमको इसको हैमर करते रहना चाहिए, बच्चों को बताते रहना चाहिए हर वक्त, जिससे उनके दिमाग में ये चीजें अच्छे से बैठ जाएं।
1: बहुत सुंदर, बच्चों को सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाने में माता पिता, स्कूल, शिक्षा और पूरे समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही कहा
2: जी।
1: एक आसान नियम भी बनाना हो बच्चों के लिए तो क्या होना चाहिए क्या, और साथ ही पासवर्ड ओटीपी प्राइवेसी सेटिंग्स जैसी बुनियादी डिजिटल जो सुरक्षाएं हैं बच्चों को किस उम्र से किस तरह सिखाई जानी चाहिए?
2: देखिए, हर बच्चे तो आजकल हर उम्र से

0: इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको थोड़ा ये समझना है कि हर उम्र के लिए अलग अलग बातें समझाना जरूरी है और उनको धीरे धीरे उम्र के हिसाब से हमको सिखाना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5-7 साल का बच्चा है तो उसको थोड़ा ये समझाना चाहिए कि निजी जानकारी होती क्या है, उसको ये आपका माता पिता का मोबाइल नंबर, स्कूल की जानकारी निजी जानकारी है, ये आपको किसी को नहीं बतानी है। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 8-10 वर्ष के होते हैं, आपको उनको थोड़ा पासवर्ड्स के बारे में बताना शुरू करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तब फोन में या कहीं और अपने पासवर्ड वगैरह भी रखना शुरू कर देते हैं। तो पासवर्ड आपका अपना है, आपका सीक्रेट है, ये सारी चीजें इवन आपको अपने फ्रेंड्स को भी नहीं शेयर करना चाहिए। इस तरीके की जानकारियां हमें देनी शुरू करनी चाहिए। 10 वर्ष के ऊपर के बच्चों को, 10 से 12 वर्ष के, मुझे लगता है कि आपको फेक मैसेजेस के बारे में उन्हें बताना चाहिए, OTPs के बारे में बताना चाहिए, फिशिंग स्कैम्स क्या होते हैं ये सब बताना चाहिए। और जब बच्चा थोड़ा सा टीन एज में आ जाता है तो उसको हमको प्राइवेसी सेटिंग्स को लेकर के प्रोफाइल सकता है, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट की जांच कैसे करें, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे बतानी शुरू करनी चाहिए। तो ये सब में मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता पूरी तरीके से खुद भी इक्विप्ड नहीं होते, तो जरूरी नहीं है कि वही बताएं। किसी न किसी को ये जानकारियां बच्चों तक जरूर पहुंचानी चाहिए, चाहे वो माता पिता हो, चाहे स्कूल के माध्यम से हो या किसी और स्रोत के माध्यम से हो। आप लोग इतनी अच्छी ये अभी रेडियो टंटिया के माध्यम से आप ये जानकारी दे रहे हैं, बहुत बच्चों को मुझे लगता है इससे जो है कुछ जानकारियां मिलेंगी जो उनके लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो इस तरीके से हमें बच्चों को बताते रहना चाहिए।
1: जी, यानी किसी न किसी माध्यम से बच्चों को जागरूक करना बहुत ही जरूरी है।
0: जी
1: साथ ही हम कहें कि अभिभावक बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें लेकिन उनकी निजता भी बनी रहे, तो इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?
0: देखिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि कई बार क्या होता है, माता पिता सुरक्षा के नाम पर हर वक्त बच्चे का फोन चेक करना, हर मैसेज चेक करना ये करने लगते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चे का भरोसा उठ जाता है, फिर वो कई और तरीके से जानकारियां छुपाने लगता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि माता पिता और बच्चे के बीच में एक भरोसा बने, हर वक्त पूछताछ करने की बजाय बच्चों से प्यार से बात करें, घर में कुछ आसान नियम बना लें जो इंटरनेट के इस्तेमाल करने के नियम हो, और वो नियम सब पे लागू होने चाहिए। जैसे कौन से ऐप्स या कौन सी वेबसाइट्स का इस्तेमाल बच्चा कर सकता है, स्क्रीन टाइम कितना होगा, क्या जानकारी साझा नहीं करनी है, तो ये इस तरीके के नियम साथ बैठकर बनाए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इससे क्या होगा कि एक खुलकर बातचीत होगी। जैसे कई बार ये होता है पेरेंट्स और बच्चे साथ बैठकर नियम बनाते हैं कि भाई खाना खाते वक्त सभी लोग अपना फोन अलग रखेंगे, ये 1 घंटा हमारे घर में स्क्रीन टाइम 0 होगा।
1: जी,
0: तो वो बच्चे माँ बाप सभी पे लागू होता है, तो बच्चे को भी लगता है कि हाँ नियम बन रहे हैं और वो नियम सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। और बच्चों के लिए खास तौर पर अगर हम नियम बना रहे हैं तो उसका मकसद बताएं कि आपके लिए ये नियम जरूरी क्यों है। तो इस तरीके से हमें लगता है कि जो है बच्चों पर आप नजर भी रख पाएंगे और बच्चों को थोड़ा सा समझाएंगे भी। तो बच्चे की सुरक्षा पे नजर रखना जरूरी है, लेकिन उसकी हर गतिविधि पे नजर रखना जरूरी नहीं है, ये भी हमें मान के चलना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: सही। बच्चों को नियंत्रित होने का ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई हमें बिल्कुल कंट्रोल कर रहा है, बल्कि उन्हें ये लगना चाहिए कि कैसे जिम्मेदारी और सुरक्षित तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट, इसकी समझ हमें उन पे डेवलप करनी है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर। यकीनन मतलब बड़ों से ही बच्चे प्रेरित होते हैं, तो बड़ों को भी नियम का पालन करना चाहिए ताकि बच्चे सीखें और उसका नियम का पालन कर सकें। बिल्कुल, बहुत सुंदर बातें जया जी, आपने, ये गंभीर विषय था और इस पे चर्चाएं चल रही हैं। एक जैसे करें हम बात कि नियमित बच्चों के फोन की जांच करना चाहिए या उसका सही तरीका क्या हो सकता है?
0: जैसा अभी भी मैं बता रही थी कि सिर्फ फोन चेक करना ही ऑनलाइन सेफ्टी का तरीका नहीं है.
1: बिल्कुल.
0: सबसे इम्पोर्टेंट है भरोसा. बच्चे का भरोसा अगर होगा तो वो अपनी दिक्कत खुद आपको आके बताएगा. हमें ये देखना है कि बच्चे की उम्र, उसकी समझ और कितना जोखिम में है वो. जैसे अगर हमें लग रहा है कि वो कहीं, हमको एहसास हो रहा है उसने किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती कर ली है, तो जोखिम की स्थिति बढ़ जाती है. तो उसमें फिर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का रोल अपनाएंगे.
1: बिल्कुल.
0: छोटे बच्चों के लिए हम फोन के एप्स डिसाइड कर सकते हैं कि तुम ये देखोगे, ऐसा करोगे. बड़े बच्चों के लिए जरूरी नहीं है आप उनका सारे मैसेज पढ़ने लगो, सारे चैट पढ़ने लगो, फिर बच्चे थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं. लेकिन अगर कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं से बच्चे को धमकी मिल रही है, साइबर बुलिंग हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो बच्चे से बात करें. उससे कहें कि देखो, हमें तुम जैसे ही कुछ ऐसा लगे हमें बताओ, हम तुम्हें डांटेंगे नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे. वो ये चीज बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बार बार हमें बच्चे को ये बोलना है कि हम देखो तुम्हें डांटने के लिए हम ये बात नहीं कर रहे हैं. छिप के फोन कभी चेक ना करें कि बच्चा इधर उधर हुआ, आप छुप के उसका फोन चेक करने लगे. ये सारी चीजें बच्चों को जो है, जो एक भरोसा है ना, उसको तोड़ती हैं. प्राइवेसी सेटिंग्स, पेरेंटल कंट्रोल्स, ये सारी चीजें होती हैं. लेकिन आप बच्चों को बता भी सकते हैं उसमें कि देखो, मैंने पेरेंटल कंट्रोल में जाके आपका स्क्रीन टाइम सेट कर दिया है, आप ये 2 घंटे ही देख सकते हो, आपका स्क्रीन इसके बाद ऑफ हो जाएगा क्योंकि आपका ये टाइम हमने सेट किया है. तो ये आपस की बात है. बच्चे को पता है कि भाई मेरे पेरेंट्स के पास एक बेसिक कंट्रोल हमारा है और वो हमारी सुरक्षा के लिए है.
1: बिल्कुल.
0: तो इस तरीके से जब हम बच्चों के साथ बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, तो मुझे लगता है कि बच्चे खुद भी आकर के माता पिता से फिर अपनी बातों को साझा करेंगे.
1: बिल्कुल सही, बहुत सुंदर. ये कहें कि ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर स्कूल की शिक्षा का भी एक नियमित हिस्सा ऐसे बनाया जाना चाहिए क्या? जैसे कई बार होता है कि माता पिता समझा नहीं पाते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, तो हम यदि इस ऑनलाइन सुरक्षा को स्कूल की शिक्षा का नियमित हिस्सा बनाएं तो कैसा, क्या आपके विचार क्या है इसमें?
0: ऑनलाइन, जैसा मैंने अभी कहा भी कि स्कूल में बच्चे बहुत सारा समय स्कूल में रहते हैं, तो स्कूल में सुरक्षित इंटरनेट का इस्तेमाल करना जरूर सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल बच्चों की पूरी दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, स्कूल का पूरा टाइम. तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि स्कूल में बच्चों के साथ साथ, एक पहली बात तो टीचर्स को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, और टीचर्स को थोड़ा सा ये भी ओरिएंटेशन होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन परेशानी में फंस रहा है या मदद के लिए उनके पास आ रहा है तो उनको क्या करना है. ये दोनों तरफ है, मतलब स्कूल्स में टीचर्स की भी आपको ये चीजें टीचर्स को भी क्लियर होना चाहिए, और दूसरी बात बच्चों को भी सिखाया जाना चाहिए. जैसे ये तो एक बार की बात नहीं है, जब आप स्कूल में लेके जा रहे हो तो ये कोई वर्कशॉप नहीं है या कोई ये एक बार का इंफॉर्मेशन नहीं है, वो धीरे धीरे धीरे धीरे कई चीजें उनको सिखा सकते हैं. जैसे आप अपना मजबूत पासवर्ड कैसे बनाएं, अपने OTP की सुरक्षा कैसे करें, पर्सनल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं. अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि फेक न्यूज, स्कैम या सस्पिशियस लिंक को पहचानना कैसे है. ये सारी चीजें आप एक बार में नहीं बता सकते, तो अगर स्कूल इसको अपने रोजमर्रा की इंफॉर्मेशन में लेगा तो वो धीरे धीरे करके बच्चों को इसके लिए तैयार करेगा कि कैसे आप साइबर बुलिंग या जो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट होता है उससे आप कैसे निपट सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कौन सा पोस्ट आप शेयर कर सकते हैं, या शेयरिंग के पहले आपको क्या सोचना चाहिए, अगर समस्या आई है तो आपको किससे और कैसे मदद लेनी है. ये सारी चीजें धीरे धीरे करके स्कूल्स अपने एक उसमें हिस्सा शामिल कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा की तरह शामिल कर सकते हैं. और स्कूल्स ये भी कर सकते हैं कि अभिभावकों को भी इसमें शामिल करें, जिससे कि जो बच्चे सीख के जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है, पेरेंट्स बिल्कुल ही अनजान हैं इन सारी चीजों से. तो बच्चा घर और स्कूल दोनों जगह सुरक्षित हो सकता है, दोनों जगह उसे गाइडेंस मिल सकती है, इसके लिए ये पूरा जो ट्रायो है आपका, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सभी को ये जानकारी मुझे लगता है सबके पास होनी चाहिए।
1: जी, यानी समन्वय सभी का जरूरी है और सभी को समझाई देनी चाहिए।
0: हाँ
1: बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। आगे एक सवाल ये था कि समाज और समुदाय बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने में क्या और किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं?
0: देखिए, बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी सिर्फ माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है।
1: जी,
0: माता पिता नहीं लेकर के आए हैं ये सारा कंटेंट या सारा कुछ, ये समाज से आ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि कहीं कोई ये कंटेंट बना रहा है, कहीं कोई बुलिंग कर रहा है, तो ये पूरा कनेक्टेड है, पूरा समाज इसमें जिम्मेदार है।
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए हम लोगों को जैसे अगर आपके गांवों में अगर हम बात करें तो पंचायतों में भी इसकी बात होनी चाहिए, समुदाय के स्तर पर मीटिंग्स होनी चाहिए, गांव में छोटी छोटी बैठकें करी जा सकती हैं, बच्चों से बात करी जा सकती है, नुक्कड़ नाटक किए जा सकते हैं, और भी आसान तरीकों से लोगों को जागरूक किया जा सकता है।
1: जी,
0: तो ये मुझे लगता है कि जो आपके गांव में पंचायत के लेवल पे या और जगहों पर इसको साथ में मिल करके ना समुदाय को इस पूरी इंटरनेट सुरक्षा के मामले में बातचीत करनी चाहिए और अवेयरनेस एक्टिविटीज पर ग्राम पंचायत को जोर देना चाहिए, क्योंकि ये पूरा गांव का मसला है, हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो इसमें कम्युनिटी अवेयरनेस, पेरेंट्स के सेशंस, स्कूल का एंगेजमेंट, सभी कुछ इसमें होना चाहिए। तो पूरी कम्युनिटी में इस तरीके की चर्चा ये सब। और एक चीज मैं आपको बताऊंगी, आप ही के झाबुआ जिले में ही पुलिस साइबर सेफ्टी को लेकर के लोगों को जागरूक कर रही है। हाल ही में सेफ क्लिक 2.0 अभियान में लोगों और विद्यार्थियों को उन्होंने सस्पिशियस लिंक, OTP, पासवर्ड और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि 1930 आपकी जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये भी समाज का ही एक हिस्सा है कि पुलिस ने कैसे इस जानकारी पर लोगों को जागरूक किया। तो ये सारी चीजें हैं जो ये एक उदाहरण है कि कैसे समाज साथ में आकर के इस विषय पर बात कर सकता है।
1: जी, ये किरण, अभी पुलिस विभाग का यहाँ एक सराहनीय कार्य चल ही रहा है इस संबंध में। और एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बनाने के लिए बच्चों, परिवारों, स्कूलों, समुदायों, सरकार और प्रौद्योगिकी मंचों और पूरे समाज को मिलकर काम इसमें करना होगा, तभी हम बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे। ये कहें, बहुत सुंदर बात आपने कही है। यदि हम कहें कि बच्चा यदि किसी ऑनलाइन परेशानी में फंस जाए तो माता पिता की पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, या इस विषय में किसी प्रकार की जानकारी या मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी कोई है क्या, वो भी आप हमें जरूर बताएं।
0: जी, ये मैं, आप लोग प्लीज नोट करें, 1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर है।
1: जी जी,
0: किसी भी तरीके का साइबर अपराध की शिकायत करनी हो, मार्गदर्शन लेना हो, तो इसमें इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। 1930 नंबर है।
1: बिल्कुल, ये हमारे श्रोताओं को, जी ये हमारे श्रोताओं को विशेष रूप से हम एक बार फिर से बताएं,
0: 1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये नंबर जरूर नोट करें। दूसरा जो है, एक ये भारत सरकार का राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, जो cybercrime.gov.in, ये जो पोर्टल है इस पे भी आप शिकायत, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, cybercrime.gov.in। इसको भी आप यूज करें अगर कभी आपको जरूरत लगती है। और क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो मैं जरूर एक बार आपको जो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098-1098, बहुत लोग जानते भी होंगे इस हेल्पलाइन को, तो अगर कोई भी नंबर ना याद हो रहा हो तो 1098 पर, चाइल्ड हेल्पलाइन पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर 112, एक हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन है जो तुरंत खतरे या आपात की स्थिति में पुलिस और आपातकालीन सहायता के लिए है, 112। इस हेल्पलाइन को भी आप लोग अपने पास जरूर याद करके रखें।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर रूप में आपने मतलब एक महत्वपूर्ण विषय को आज यहाँ पर हमसे साझा किया और यकीनन हमारे श्रोताओं को इससे बहुत लाभ मिलेगा। टिंग टोंग जो ट्राई का एक विशेष अभियान है, ये क्या है और किस प्रकार से मतलब ये काम

0: सोचो, शेयर करने से पहले सोचो। तो ये जो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं ऑनलाइन, इसको हमेशा ध्यान कर रखें कि कोई भी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, भरोसा करने से पहले सोचिए। कोई भी लिंक आ रहा है, क्लिक करने से पहले सोचिए। कोई भी अपनी निजी जानकारी है, शेयर करने से पहले सोचिए। तो ऑनलाइन हो तो घंटी ऑन, यही हमारी हेल्पलाइन कह रही है कि इसको आप लोग हमेशा याद रखें।
1: टिंग टोंग से बच्चों को कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ मिलेगा, मुझे लगता है पूरे देश प्रदेश में ही इसका अभियान ही चल रहा है आपका।
0: जी, पूरे देश में चल रहा है। जी,
1: बहुत सुंदर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय साझा किया और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विषयों पर सरल और उपयोगी जानकारी दी। आज की बातचीत से हमें ये समझने में मदद मिली है कि इंटरनेट बच्चों के लिए ज्ञान और मनोरंजन का अच्छा माध्यम है, लेकिन इसके साथ साइबर बुलिंग, फेक प्रोफाइल, अनजान लोगों से बातचीत, अनुचित सामग्री और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे जोखिम भी जुड़े हैं। आपके सुझाव निश्चित रूप से बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और हमारे श्रोताओं को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। हम सभी को ये संदेश याद रखना चाहिए कि सोचें, समझें और फिर क्लिक करें। इसी संदेश के साथ आज के इस जागरूकता कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। एक बार फिर जया जी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडवा भील 90.8 FM। आपरो रेडियो, आपरी बातें।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम
1: આરજે ભાવના આપણ હંગલા ભાઈઓનું ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છીએ આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટેન્ટાવિલ 90.8 એફએમ

0: बहुत बहुत ही प्यारा गीत मैम, थैंक यू सो मच. मैम आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मेरा बचपन से ही संगीत में रुझान रहा है, जिसको देखते हुए मेरे माता पिता ने मुझे अवसर दिया और मैं यहाँ तक पहुंच पाई. जी
0: तो बचपन से ही आप संगीत में जाना चाहते थे, आपका सपना था कि आप गायिका बने. और मैं आपको बहुत बहुत खुशकिस्मत मानूंगा, आपका सौभाग्य है कि आपको वही दिशा आपको दिखाई भी गई, आपके माता पिता ने आपको सहायता दी और आज आप एक संगीत विद्यालय चला रहे हैं. इससे बहुत बढ़िया और बात हो भी कह सकती है. बहुत खूब दोस्तों, तो चलिए फिर एक संगीत विद्यालय को एस्टैब्लिश करने वाली मैम मालविका मैम की ही आवाज में सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा संगीत.

0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया मैम। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि यूं तो अब आप एक संचालिका हैं, टीचर हैं, लेकिन आपके फेवरेट टीचर कौन रहे और क्यों?
1: वैसे तो मेरा शिक्षक शिक्षकों से काफी लगाव रहा है,
0: जी
1: क्योंकि काम के प्रति मैं हमेशा ईमानदार रही हूँ। जहाँ तक पसंदीदा शिक्षकों की बात है तो वो है मेरी माँ।
0: जी
1: माँ है जो पल पल मुझे सलाह देती रहती है।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपनी माँ का नाम हमें बताएं?
1: मेरे माँ का नाम कल्याणी घोष।
0: जी, कल्याणी घोष माँ।
1: जी
0: तो दोस्तों, आपने सुना, सबसे अच्छी टीचर मालविका मैम की जो है वो उनकी माँ है। यूं तो हम सब की टीचर सबसे पहली माँ ही होती है, लेकिन कितनी बार हम अपनी माँ को, माँ दूर भी होती है तो कितनी बार हमने अपना फोन उठाया और माँ को बोला, माँ मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। क्या बात है भाई, वाह, मालविका मैम, आपके कहने से मुझे मेरी माँ याद आ गई। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत जो मैं मालविका मैम की माँ को ही समर्पित करूंगा।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। आगे बढ़ते हुए मैम आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे कौन से तीन शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो आपको सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, आपकी परिभाषा बताते हैं? ऐसे कौन से तीन शब्द आप इस्तेमाल करेंगी अपने को बताने के लिए?
1: जी, मेरे जीवन को जो सबसे अधिक परिभाषित किया वो है लक्ष्य, गोल।
0: जी।
1: दूसरी है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, कड़ी
0: जी,
1: मेहनत। थर्ड वाला है हार्ड वर्क, मेहनत। जी
0: भाई वाह, क्या बात है, बड़ी ही खूबसूरत तरीके से तीन शब्द मालविका मैम ने बताए। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए ना एक गीत भी सुनते हैं मालविका मैम की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, बड़ा ही प्यारा गीत। मैम, अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार कोई भी खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: चलिए, जो सबसे पहले मैं बनाने की बात है तो वो मैंने सबसे पहले चाय बनाई थी, टी, लेकिन चीनी डालना भूल गई थी।
0: अरे वाह, ओके ओके।
1: चाय बने लेकिन चीनी डालना भूल गई थी
0: जी। तो जी, ये कब की बात है मैम?
1: ये मैं स्कूलिंग का टाइम में, तब मम्मी बोली थी एक कप चाय बना के लाओ, सबको खिलाओ
0: अच्छा।
1: तो मैंने बहुत उत्सुकता से बनाई थी। मैं, मेरे पापा ऑयल इंडिया में नौकरी करते थे, तो हम लोग का मतलब ऐसे गैस थे, मतलब लाइन गैस बोलता है, तो उसमें हमने चाय बनाई। फिर बहुत एक्साइटमेंट, मैंने चाय बनाऊंगी, सबको पिलाऊंगी। फिर उसमें मैंने चीनी डाला नहीं, लेकिन सबने पी लिया, बहुत टेस्टी हुआ। बोला बाद में मैं पी के देखी, नहीं तो इसमें तो चीनी है ही
0: नहीं। ओह माय गॉड, कितना अच्छा, अजीब सा लगा होगा, लेकिन मजा हाँ, भी आया होगा। मम्मी पापा ने डांटा भी नहीं होगा कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ऐसा। जी
1: हाँ।
0: जी, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत मैम की ही आवाज में।

0: आपको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए मालविका मैम आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: जहां तक मेरी हॉबीज की बात है तो मैं बताना चाहूंगी कि सुबह उठना
0: जी,
1: बागवानी के देख रेख करना, मैं गार्डनिंग करती हूँ, मेरा शौक है, और खाना बनाना और गाना गुनगुनाना, सारा दिन मैं गाना गुनगुनाती रहती हूँ।
0: बहुत खूब, वेरी नाइस
1: जी,
0: बहुत बढ़िया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं मालविका मैम की ही आवाज में।

0: मैम पूरे दिन में हम लोग सारा काम करते रहते हैं, आप भी करते रहते हैं, सारी दुनिया चलती रहती है। क्या कुछ किसी भी दिन में, डेली रूटीन में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका मूड खराब हो जाए? कौन सी ऐसी चीज होती है जो आपका मूड खराब कर सकती है किसी भी दिन में?
1: मूड खराब ऐसे तो कभी होता नहीं। मूड खराब मैं हमेशा कभी कभी होता है, जैसे कि मैं जब स्टूडेंट स्टूडेंट को सिखाती हूँ,
0: जी
1: स्टूडेंट को लेके बैठती हूँ, तो उन लोग को मैं जब होमवर्क नहीं करता, जैसे कि मैंने बोल दिया आज ये लेसन करके आओ, तुम लोग गा के बताओ, तो कई कई आजकल के बच्चे तो करते ही नहीं बहुत काम, तो तब मेरा मूड बहुत खराब हो जाता है। तो मैं बोलती हूँ मैं आज नहीं सिखाऊंगी, तुम लोग चले जाओ,
0: ओके,
1: उसी में ही मुझे मूड खराब हो जाता है। जी
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं समझ गया आपकी बात।
1: जी
0: सवाल दरअसल बिल्कुल सही था कि ऐसी कौन सी बात होती है जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो जाता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट दिया है वो अगर नहीं होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपने
1: अच्छा नहीं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लगता।
0: ठीक कहा, बहुत खूब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मैम आज तक की जिंदगी में, मतलब टिल टुडे, आपकी जो भी पूरी जिंदगी में सबसे अच्छी अकॉम्प्लिशमेंट, आपको क्या लगता है कि ये सबसे अच्छा मेरे को जिंदगी में मिला, मैंने पा लिया? जैसे कुछ लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का सपना सोचते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज या आर्मी में जाने का, या कोई अवार्ड लेने का, या कोई शील्ड जीतने का, तो ऐसा कौन सा अकॉम्प्लिशमेंट आपको आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा हुआ है, जहां आपको लगा हो बस मेरी जिंदगी का ये सबसे अच्छा दिन है?
1: हाँ, एक समझ गई मैं अभी।
0: जी
1: एक्चुअली मैं जब एक बार मैंने एक बड़ा बड़ा आर्टिस्ट के साथ मैं रिकॉर्डिंग किया था,
0: जी
1: जो हमारे आसाम की जुवेन गार्ड सर से, मैं उनके साथ मैंने एक गाना गाई थी। तब मैं बहुत नर्वस भी थी, तो मैं खुद को भी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं उनके साथ गाना गाने का, मुझे मौका मिला है। तो उसी टाइम उसके बारे में मैं बोल सकती हूँ, गौरवपूर्ण उपलब्धि था मेरा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात है,
1: जी
0: बहुत बढ़िया,
1: जी
0: बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मैम, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सपनों में विश्वास रखते हैं? रात को सोते हुए देखने वाले सपने और खुली आंखों से देखते हुए अपने उन सपनों को पूरा करने वाले सपने?
1: जी जरूर, लेकिन उस सपनों में नहीं जो रात को सोने में आती है वो,
0: जी
1: बल्कि उस सपने में विश्वास करती हूँ जो दिन में दिखे जाए।
0: अरे वाह जी
1: जी,
0: उन सपनों में आप विश्वास रखते हैं, क्यों?
1: जी
0: ऐसा क्यों?
1: रात का सपनों में मैं विश्वास नहीं करती, मतलब सपना में तो सपना तो आते ही रहते कुछ ना कुछ।
0: जी जी जी,
1: लेकिन जो दिन में जो हम लोग का शुरुआत करते हैं दिन का, वो मतलब मैं उसको मैं विश्वास करती हूँ। जो आज मुझे ये करना है वो करना है, जो मैं सोचती हूँ मुझे वही करना है, कैसे काम करना है, कैसे चलना है, वही मैं उसी में मैं विश्वास करती हूँ।
0: ओके बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने सुना कि मालविका मैम उन सपनों में विश्वास रखती हैं जिनको पूरा करने के लिए उनको मेहनत करनी होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए एक प्यारा सा गीत सुना दीजिए। मालविका मैम जी की आवाज में सुनते हैं, आइए दोस्तों ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया मैम, मुझे बताए ना कि आपकी जिंदगी में अभी तक का सबसे अच्छा गिफ्ट आपको क्या मिला है और किसने दिया है?
1: वैसे तो बहुत तोहफा मिला है
0: जी,
1: लेकिन सच्चा तोहफा तो वो है जो एक मित्र बुरे समय में खैरियत पूछे और आश्वासन देते रहे कि घबराना मत, मैं हूं ना।
0: अमेजिंग, बड़ी ही खूबसूरत बात कही आपने, बड़ी ही प्यारी बात कही कि ऐसे समय में जब इस वक्त हम बहुत कभी कभी परेशान महसूस करते हैं, शायद कमजोर भी महसूस करते हैं, कोई हमारा दोस्त, कोई हमारा जानने वाला आपको, आपसे बात करता है, आपको महसूस कराता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, उसी से बहुत ताकत मिल जाती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, फिर एक और प्यारा संगीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मैम, हम अपने प्रोग्राम की उस जगह पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए और जो नए सिंगर्स आ रहे हैं और जो सिंगिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहिए।
1: जी, मैं सबको धन्यवाद कहती हूँ जो मेरा गाना आप लोगों ने सुना है
0: जी।
1: और आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि एक बार सुनने के बाद कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा।
0: बहुत बढ़िया
1: जी।
0: दोस्तों देखिए, बहुत ही छोटा सा बिल्कुल क्रिस्प मैसेज है मालविका मैम का कि सुनने के बाद बताएं जरूर कि कैसा लगा, जिससे कि फीडबैक हो तो हम अपनी प्रतिभा को और सुधार सकें, कोई गलती हुई है तो उसको ठीक कर सकें। ये एक बहुत बड़ा काम होता है। थैंक यू सो मच मालविका मैम हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू
1: थैंक यू थैंक यू।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, आज के कलाकार का एक और बहुत ही खूबसूरत नाजुक सा एपिसोड लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं, जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने नाजुक शब्द क्यों इस्तेमाल किया। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो हैं अंजलि हेला जी। तो अंजलि हेला जी का स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, वेलकम करते हुए मैं अंजलि जी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अंजलि जी, हमारे आज के परिवार, आज का जो, आज के कलाकार का जो परिवार है उसके सामने आइए, उन्हें बताइए आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करती हैं आप।
1: जी नमस्कार सभी सुनने वाले श्रोताओं को, प्यार भरा नमस्कार। मैं हाल फिलहाल मुंबई में रहती हूँ। जन्म कोलकाता में हुआ था, बंगाली फैमिली में। फिर हालांकि सारी बातें एक साथ नहीं कह सकती, अभी फिलहाल 15 साल से मुंबई में रहती हूँ सर।
0: वाओ, तो आप करते क्या हो अंजलि जी?
1: जी मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ सर।
0: ओह माय गॉड, ओके। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आज तो गायकी की ट्रीट है हमारे सामने। वी आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटीफुल इवनिंग, अमेजिंग इवनिंग टुडे। तो चलिए शुरू करें इस प्रोग्राम को अंजलि जी के गाए हुए इन गीतों से, और उसके बाद हम वापस आते हैं अंजलि जी से और बातचीत करने के लिए।
1: जी धन्यवाद।

0: बहुत खूब अंजलि जी, बहुत खूब। अंजलि जी, आपने बताया कि आप एक बंगाली परिवार में पैदा हुई, कोलकाता से हैं, तो जाहिर से बात है बंगाली या बंगला सुनते ही किसी के भी दिमाग में ये विचार आता है कि वो तो संगीत में प्रबुद्ध होगा ही होगा, संगीत में एक्सपर्ट होगा ही होगा, नहीं भी होगा तो लेकिन वो संगीत के आसपास ही रहता होगा। बिकॉज कोलकाता में भी लगातार कई बार जाता रहा हूं, तो रविंद्र संगीत के लिए और संगीत के लिए कोलकाता इज वेरी फेमस।
1: जी सर।
0: तो मुझे ये बताओ अंजलि जी की आपकी जो गायकी है, आपका जो संगीत का सफर है, वो कितना पीछे से चल के आ रहा है? आपने कब से गाना गाना शुरू किया?
1: जी, शुरू से बताऊं तो जो मेरी माता जी थी, जो अभी दुनिया में नहीं है, वो बहुत ही म्यूजिक की शौकीन होने की वजह से वो सुबह से लेके रात का आखिरी प्रोग्राम तक रेडियो चलाती थी घर में, जिसकी वजह से हम सुन सुन के इतने गाने बाय हार्ट हो गए। और संगीत का शौक तो माँ भी गाती रहती थी, और माँ का गला इतना इतना सुंदर था कि आते जाते लोग ऐसे कहते थे कि ये सॉन्ग लता जी बिना म्यूजिक के भी गाई है, समझिए इतना उनका नजदीक था।
0: वाओ,
1: इतना वो ओरिजिनल गाती थी। तो वहीं से थोड़ा सा उनका जो डीएनए आया है मुझ में, तो संगीत का शौक स्कूलिंग के टाइम से, स्कूलों के प्रोग्राम में गाना शुरू कर दी, फिर कॉलेज में गाना शुरू कर दी। यहाँ से जो गाने के कीड़े कहते हैं वो प्रबल होते गए। फिर ऐसा हुआ कि पापा चाहते थे कि डॉक्टरी पढ़ूं, और ग्रेजुएशन जब किया तब मैंने जाहिर किया कि मुझे सिंगर बनना है, तो पापा का गुस्सा वहां पे झेलना पड़ा। वो मना करते गए कि नहीं, सिंगर नहीं बनना है आपको, मैं चाहता हूँ डॉक्टर बनिए। तो वहां से थोड़ा विद्रोह करना पड़ा घर में।
0: उत्तर की ओके
1: विद्रोह ऐसे हुआ कि पापा रिटायर होके जब कोलकाता शिफ्ट हो गए, तो मैं चाहती थी कि सिंगर बनूं, और हमारा बॉर्न ब्रॉटअप गुजरात में हुआ, फादर रेलवे में ऑफिसर थे, तो पूरा हमारा कॉलेज वॉलेज सब गुजरात में हुआ, तो मैं चाहती थी गुजरात में हम यहाँ से सब पहचान के हैं, तो मैं यहीं से शुरू करूं। और वो अचानक हमें कोलकाता शिफ्ट कर गए, तो वहां मैं घबरा गई कि मैं कहाँ से शुरू करूं, समझ नहीं आया। तो यही विद्रोह का ये हुआ कि बड़ी बहन के घर गुजरात आ गई, और फिर यहाँ से मैंने अपनी जर्नी सिंगिंग में शुरू कर दी।
0: ऑलराइट,
1: स्ट्रगलिंग का पीरियड रहा, काफी समय तक स्ट्रगल रहा, उसके बाद पांव जमा दिए।
0: बहुत बढ़िया। देखिए कंसिस्टेंसी तो जरूरी होती है, आप कॉन्टिन्यूअसली लगे रहिए, हार ना मानिए। मैं मानता हूं बहुत परेशानियां भी आ जाएंगी, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहे तो पांव जम ही जाते हैं। बहुत खूब
1: जी सर,
0: ये एक बहुत प्यारा सा लेसन है जो हम सब लोगों को लेना चाहिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अंजलि जी की सधी हुई बिल्कुल प्यारी सी आवाज में हम लोग सुनते हैं ये गीत, और फिर वापस आते हैं अंजलि जी के पास।

0: तो अंजलि जी, आपने बताया कि आप गुजरात में भी रहीं। जाहिर से बात है, गुजरातीज भी संगीत में काफी आगे होते हैं। जब कभी भी नवरात्रों का समय आ जाता है तो वो तो पागल हो जाते हैं एकदम। जैसे आपके यहाँ पर दुर्गा पूजा हो जाती है तो सारे बंगालीज पागल हो जाते हैं। तो संगीत तो गुजरात में भी बहुत है। तो आप कितना समय गुजरात में थी?
1: हमने पूरा शुरू से स्कूलिंग से लेके कॉलेज एवरीथिंग मैंने गुजरात में ही किया।
0: ओह माय गॉड,
1: जिसके वजह से फुल्ली गुजराती बोलती हूँ और गुजराती कल्चर में जो डांडिया वगैरह है वो भी गाती हूँ, यहाँ बंगाली भी गाती हूँ, मराठी भी गाती हूँ। इस तरह से काफी सारे लैंग्वेजेस में गा लेती हूँ।
0: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पर मुझे जो चीज इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये है कि आप गुजरात में रहे और हमारे जो टेक्निकल डायरेक्टर है नितिन जी वो भी गुजरात से हैं, और हम तो गुजराती सिंगर्स के प्रोग्राम बनाने के लिए तड़पते हैं। तो नितिन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे एक गुजराती प्रोग्राम बनाने की भी रिक्वेस्ट करें।
1: क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा,
0: मजा आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी अगर आपकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करें। आपके संगीत को हमने समझ लिया, आपकी पर्सनालिटी को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो संगीत के अलावा आपने बताया आप प्रोफेशनल सिंगर हैं, लेकिन उसके अलावा भी जिंदगी है जो कि संगीत पे ही टिकी हुई है, मैं मानता हूं। तो संगीत के अलावा आपके शौक क्या हैं, कह लो हॉबी क्या है, कह लो मी टाइम क्या है? आप अपना को स्ट्रेस, देखो आप यही कहोगे कि अपने को स्ट्रेस निकालने के लिए मैं गाती हूं, बट ओके, गाने के अलावा क्या?
1: ये नहीं है।
0: जी हाँ, गाने के अलावा क्या?
1: गाने के अलावा मैं स्विमिंग पसंद करती हूँ।
0: क्या बात है
1: जी। हाँ, थोड़ी बहुत पेंटिंग भी करती हूँ और कुकिंग भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर।
0: यार अंजलि, कुकिंग ना यार सबका होता है, 99% लोगों का होता है, मेरा भी है, मेरे बेटे का भी है, मेरी वाइफ का भी है। अगर हम चाय भी बना लेते हैं तो हम कह देते हैं कि हम कुकिंग करते हैं।
1: नहीं, लेकिन स्पेशल डिशेस बनाना, देख देख के यूट्यूब से कुछ खास सीख के बनाना, ये सब भी कर लेती हूँ, एक्सपेरिमेंट टाइप्स।
0: ओके ओके ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो जैसा दोस्तों आपने जाना कि अंजलि जी जो हैं सिंगिंग के अलावा स्विमिंग में बहुत इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने बताया कि वो स्विमिंग के अलावा आपने क्या बताया था, एक चीज और,
1: पेंटिंग।
0: ओ माय गॉड, पेंटिंग जो कि एक बहुत ही सधे हुए हाथों की कला है, आसान काम नहीं है पेंटिंग, नॉट एवरीबडी कैन डू इट। तो और संगीत और उसके बाद कुकिंग, अमेजिंग।
1: तो
0: ये पर्सनालिटी है हमारी अंजलि मैम की प्रोफेशनल सिंगिंग के साथ साथ। चलिए सुनते हैं ये गीत और उसके बाद हम वापस आते हैं अंजलि जी के पास और पूछने के लिए।

0: बहुत खूब अंजलि जी, बहुत खूब। अब अंजलि जी मुझे ये बताइए, आप तो प्रोफेशनल सिंगर हैं।
1: हाँ सर, तो काफी इसके बारे में भी थोड़ा कहूंगी
0: जी
1: कि जब गुजरात में स्टार्ट किया था तब शुरू में तो मुझे काम नहीं मिला था, क्योंकि अचानक से आप किसी फील्ड में जाते हो तो शुरू के एक दो साल तो अच्छे नहीं गुजरते। लेकिन मैंने 6 महीने में ही पहला शो 15 अगस्त का किया था, जिसमें सारे म्यूजिक इंडस्ट्री के जो सिंगर्स थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, वो सब आए हुए थे। और मैंने लता जी का बहुत फेमस गाना ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था, जो सबने सुना तो एकदम से हाथों हाथ सबने लिया कि नई सिंगर आई है और बहुत अच्छी सिंगर आई है। और वहां से मुझे ऐसे प्रोग्राम मिले कि मैं बता नहीं सकती, मेरी पूरी डायरी फुल हो गई थी उस दिन डेट से। तो मेरा पहला कदम ही मैंने इतना शानदार रखा जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, कि वो मेरा शानदार दिन था जो 6 महीने मैंने ट्यूशन करके गुजारा किया था। और ऐसे सोच रही थी कि वापस चली जाऊं, घर चली जाऊं, मैंने गलत शायद कदम ले लिया। वहीं से मैंने एक नया सवेरा देखा, फिर तो मैं यूएस के बहुत सारे टूर की, कनाडा गई, लंदन गई, कई देशों में मैंने शोज किए सर। उसके बाद वहीं से मेरे हस्बैंड मिले मुझे, मनोज जी।
0: okay.
1: मैंने शादी की, मेरी एक बेटी है जी।
0: बहुत खूब।
1: तो अभी से जी
0: जी जी जी तो जाहिर सी बात है, इस पूरी की पूरी स्टोरी में हमें स्ट्रगल और ट्रायम्फ दोनों सुनाई दे रहा है कि भाई किस तरीके से आप मेहनत करते हैं और बस अचानक कोई एक दिन हमारे लक की देवी हमारे तरफ मुस्कुराती है और बस हमारा रास्ता खुल जाता है।
1: एकदम सही जी।
0: चलिए तो आगे बढ़ते हुए ये दो गीत मैं पेश करता हूँ हमारे दोस्तों को, आज के कलाकार फैमिली को, उनको भी इंजॉय करने दीजिए, उनको भी सुनने दीजिए कि किस तरीके से आपकी जर्नी सक्सेसफुल रही।

0: बहुत खूब।
1: अंजलि जी, मुझे ये बताओ कि आपकी पूरी जिंदगी में वो कौन लोग थे, दो या तीन या चार, जिन्होंने आपकी सिंगिंग को हमेशा मोटिवेट किया?

0: आपको बढ़ावा दिया कि आप घबराइए मत, चलते रहिए, हम आपके साथ हैं, यू आर डूइंग गुड, गाइए गाइए गाइए। वो कौन लोग थे?
1: जी सबसे पहली तो माता जी थी मेरी, माँ जो मेरे फादर के अगेंस्ट जाके भी मुझे सपोर्ट की थी कि उसका शौक है तो उसे करने दीजिए, जरूरी नहीं कि सब डॉक्टरी प्रोफेशन में ही सक्सेस होंगे, जरूरी नहीं है ये बात। तो माँ ने चुपके चुपके काफी सपोर्ट किया, जहाँ पापा से चुप के उनको काफी सारे स्टेप लेने पड़े थे मेरे लिए। तो एक तो वो थी और एक मेरी मुझसे बड़ी मेरी सिस्टर है, उसका नाम अनीता है, जो अभी शादीशुदा है, विदेश में रहती है। तो उन्होंने भी इस दौरान मुझे काफी सपोर्ट किया, वो साथ रही, मैं अकेली ना पड़ जाऊं इसलिए अक्सर आके मेरे साथ रहती थी, उनका बहुत सपोर्ट रहा। ये दो व्यक्ति मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है
0: जिन्होंने आपकी सिंगिंग को पूरा सपोर्ट किया।
1: हाँ सर, पूरा पूरी तरह से सपोर्ट किया।
0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया
1: जी सर।
0: इस तरीके के सपोर्टर्स की हमेशा जरूरत हमें रहती है, क्योंकि कोई ना कोई हमें मोटिवेट करे तभी हम। हाँ। सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं लेकिन कई बार हम टूट जाते हैं या थक जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ऐसे समय में ऐसे लोगों की जरूरत होती है
1: जी।
0: चलिए
1: तो, हाँ सर,
0: बहुत खूब। तो हम अगले गीत अंजलि जी के गाए हुए इन्हीं दो लोगों को डेडिकेट कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं ये प्यारे से गीत इन दोनों लोगों के लिए। आइए सुनते हैं।

0: बहुत खूब अंजलि जी, बहुत खूब। और आपके बारे में जाना हमने, आपके शौक जाने, आपकी सिंगिंग हाँ। की यात्रा कहाँ से शुरू हुई वो जाना, आपकी सक्सेस स्टोरी भी हमने सुनी। तो चलिए अब हम उस जगह आ गए जहाँ पर आज की कलाकार की जो फैमिली आज आपसे जुड़ी है उनके लिए कोई सक्सेस मंत्र, कोई टिप्स, कुछ दिल से दिल की बात कह दीजिए, कोई संदेश दे दीजिए।
1: जी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो जो ब्ला ब्ला जो कहते हैं, बस वही मंत्र है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो मेरी अपनी स्टोरी है कि एकदम जीरो से मैंने आके स्टार्ट किया और आज ये है कि काफी सारे देशों में घूम चुकी हूँ और अपना एक घर है मुंबई में और खुद सेटिस्फाइड हूँ कि ठीक है, जो किया अपनी अपनी मर्जी से किया, जो अपना शौक है उसको पूरा किया और उसी को प्रोफेशन बनाया। और अपने मित्रों को यही कहना चाहती हूँ कि जो अपना शौक है उसी को अगर प्रोफेशन आप बनाते हो तो आप उसमें पूरी तरह से डेडिकेट रह सकते हो और उसमें आप जरूर सक्सेस हासिल कर सकते हो।
0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बात। तो दोस्तों, टाइम एंड अगेन हर कलाकार हमें ये मैसेज दे रहा है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लगे रहिए, घबराइए मत और हिम्मत मत तोड़िए,
1: हिम्मत मत हारिए बस।
0: तो चलिए,
1: जिसमें लगे हैं वो करते रहिए।
0: जी बिल्कुल, अमेजिंग, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके गीत सुनकर ही मजा आ गया, वहीं पर हमारा सारा मतलब पूरा प्रोग्राम सफल हो गया हमारा, तो थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर, थैंक यू टू।
0: आप अपना ख्याल रखिएगा और बस यूं ही गाते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, आपको देखकर हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, दैट्स इट।
1: थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, दोस्तों से मिलके। जी
0: प्लेजर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता, हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में।

90.8 FM झाबुआ की आवाज में आपका स्वागत है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन में। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुनते रहें रेडियो टंटिया भील 90.8 FM।